सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आज दिन है रविवार। शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि है आज। तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 50 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी

0: एनएन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का राज केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। आज इस कार्यक्रम में हम जानकारी प्राप्त करेंगे शहरी कूड़े कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए। वाचन स्वर है अनीता तिर्की का।
2: मौजूदा समय में हमारे देश में प्रतिदिन 1.54 लाख मैट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है जिसका हम सही प्रकार से निष्पादन नहीं कर पाते हैं। प्रतिदिन ये जो भारी मात्रा में कूड़ा कचरा निकलता है उसका सही प्रकार से निष्पादन नहीं होने के कारण जगह जगह पर कचरे का ढेर दिखाई देता है जिसके कारण उनके चारों तरफ दुर्गंध फैलता रहता है। इससे पर्यावरण भी गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अतिरिक्त इसमें कीटाणु भी पनपते हैं जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ऐसे स्थानों पर मच्छर मक्खियां चूहे आदि भी पनपते हैं और वर्षा के मौसम में तो कूड़े कचरे के ढेर के चारों तरफ की स्थिति और भी खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इनसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन और बहुत सारी जहरीली सामग्रियां भी बनती है जो पर्यावरण के साथ साथ भू जल को भी दूषित करती है। घर में, घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अभी खाद बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया है। शहर के कूड़े कचरे से जो जैविक खाद बनाई जाती है उसे सिटी कंपोस्ट कहते हैं। सिटी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो नीति बनाई गई है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इस नीति के अंतर्गत 1500 रुपये प्रति टन सिटी कंपोस्ट की बाजार विकास सहायता का प्रावधान किया गया है जिससे इसके उत्पादन और उपयोग में बढ़ोतरी की जा सके। बाजार विकास सहायता किसानों के लिए सिटी कंपोस्ट के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी लाएगी, यानी किसानों को सिटी कंपोस्ट

कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी। सिटी कंपोस्ट से संबंधित इको मार्क मानक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों तक जो सिटी कंपोस्ट पहुंचे वह पर्यावरण के अनुकूल हो। इसका मतलब यह हुआ कि उस सिटी कंपोस्ट से पर्यावरण पर कोई भी खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। शहर के सारे कचरों में जैविक पदार्थ के साथ साथ प्लास्टिक की वस्तुएं, पॉलीथीन, कांच इत्यादि भी पाए जाते हैं। शहर के कुल कचरों का करीबन 50% भाग ही जैविक पदार्थ होता है। इन्हीं जैविक पदार्थों से सिटी कंपोस्ट बनता है। शहर के कचरों से कंपोस्ट बनाने का लाभ जो सबसे पहले दिखाई देगा वो है हमारे शहर की सफाई। हमारा शहर पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ दिखाई देगा क्योंकि कुल कचरे के 50% भाग को या सिटी कंपोस्ट के रूप में बदल डालेगा। शेष 50% कचरे को जमा करने के लिए पहले की तुलना में कम जगह यानी आधी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। शहरी कचरे से खाद तैयार करने में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के साधन भी सृजित होंगे। इतना ही नहीं, खतरनाक ग्रीन हाउस गैस, विशेषकर मीथेन गैस और ऐसी ही जहरीली सामग्री का बनना भी रोका जा सकेगा। जहरीली गैस सामग्रियां जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ भूजल को प्रदूषित करती है, उससे भी बचाव होगा। सिटी कंपोस्ट के स्वास्थ्य सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें उपयोगी मृदा जीवाणु और ह्यूमस शामिल हैं जो मिट्टी में हवा यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। सिटी कंपोस्ट मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, सिटी कंपोस्ट सूखे और जल जमाव दोनों स्थितियों के लिए मिट्टी में प्रतिरोधक क्षमता

आकाशवाणी रांची की प्रस्तुति, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। संकलन एवं वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

0: आत्मविश्वास यानी भीतर का भरोसा, इसकी अलग ही ताकत होती है। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की तलाश में जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर पार कर लंका तो जा सकता हूं, परंतु वहां से लौट आने की क्षमताओं पर मुझे संदेह है। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया और कहा कि आप जाकर सीता जी का पता करिए। उत्साहित हनुमान ने कहा कि मैं अभी लंका जाकर सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि ये कार्य श्री राम स्वयं करेंगे, आप सिर्फ ये कार्य करके लौटिए। इस प्रकार तमाम बाधाओं को पार कर हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर पनपते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को कायम रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतस से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए? वास्तव में आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए संबल प्रदान करती है। प्रायः हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, मगर संदेह की भावना हमें डरा देती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं रहता, तब हम अंतस से दब बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती हैं। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वो इतने कठिन लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास। विजेता और पराजित में सिर्फ इसका ही अंतर रह जाता है।
1: अभी हम सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का।

एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आशा, एक विश्वास, यही तो है श्रोताओं अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभात, आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना में सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

अभी हम सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति रचना। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आते, सिर्फ वही है जो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता है। श्रोताओं, साईं के वचन भी है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, बस जरूरत है उनके नाम को लेने की।

श्रोताओं, ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। बस जरूरत है उन्हें सच्चे मन से पुकारने की।

श्रोताओं, ईश्वर का नाम वो अमृत है जो हर दुख, हर चिंता और हर भय को समाप्त कर देता है।

श्रोताओं, ईश्वर से कभी यह मत कहें कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी से यह कहें कि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है और मेरे साथ हर वक्त खड़ा है।

0: अभी हम सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज। और साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्री राम चरितमानस गान भाग 139।
1: एपिसोड नंबर 139 139।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपनी स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

अभी हम सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कौन कौन से कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब से थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी समाचार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का वक्त होगा 7:05 पर। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता। विषय होगा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर विनीत राज और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुरीली का वक्त होगा 7:15 पर। 7:45 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का वक्त होगा 8:00 और 8:15 पर। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 8:30 पर। 8:45 पर हम सुनेंगे संवेद गान शिक्षा। आज हम सुनेंगे कन्नड़ भाषा में। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन का वक्त होगा 9:00। नौ बजकर 30 मिनट पर हम सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार होंगे अभिराम पाठक। 10:00 का वक्त होगा हमारे बाल श्रोताओं के साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम बाल सभा का। 10:30 का वक्त होगा कार्यक्रम जोहार रांची का। 11:30 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद। हमारी बहनों के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का वक्त होगा 12:00। 12:30 का वक्त होगा आंचलिक लोकगीतों के कार्यक्रम भारत भारती का। आज इसमें हम सुनेंगे विद्यापति संगीत। 12:45 का वक्त होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का। हिंदी और अंग्रेजी समाचार का वक्त होगा 1:00 और 1:05 पर। एक बजकर 10 मिनट का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का वक्त होगा 1:20 पर। 1:45 पर हम सुनेंगे सुगम संगीत। मिड डे न्यूज का वक्त होगा 2:00 और ठीक इसके बाद हम सुनेंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। 2:30 पर हम सुनेंगे जय भारती कार्यक्रम। अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे संस्कृत और हिंदी समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली केंद्र पर।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर के शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर

0: विनीत राज और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है और ऊपर से यदि आपके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान हो तो वह आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है। परंतु अच्छी मुस्कुराहट के लिए दांतों का खूबसूरत होना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपके व्यक्तित्व पर आपका वेशभूषा। यदि आपके दांत चमकीले और व्यवस्थित होंगे तो आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो आपके चांद जैसे मुखड़े पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाएगा। तो आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो कैसे व्यवस्थित करें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज किस प्रकार किया जाता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर विनीत राज। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं छोटे बच्चों को और किसी कारण से दुर्घटना के कारण से दांत आगे निकल आती है, तो क्या कारण है इसका?
2: सही समय पे दांत नहीं टूटने की वजह से दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। बचपन में दांत तीन तरह से हम लोग इस चीज़ को लुकआउट करते हैं, इंटरसेप्टिव, प्रिवेंटिव और करेक्टिव। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि पहले से ही दांत, जैसे बचपन में ही हम बच्चों को ये ख्याल रखें कि उनको कुछ आदत, बुरी आदतें जैसे अंगूठा चूसना, लिप को बाहर निकालना, मुंह खोल कर सोना, बहुत सारे ऐसे आदतें होती हैं जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। बचपन में ही उनका केयर कर लें, जैसे थंब सकिंग है तो उनको कुछ अप्लायंस दे पहनने को कि उनका वो आदत हटे और दांत सही दिशा में आए।
1: बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं,
2: जी
1: जी।
2: दूसरा हो गया प्रिवेंटिव, दांत अपने समय से पहले टूट जाता है किसी भी कारणवश से, जैसे कैविटी लग गया, कीड़े लगने के वजह से, दांत में सड़न आने के वजह से, बहुत सारे रीजन से दांत पहले टूट गया। पहले टूटने के जगह होता है क्या कि उस दांत का जगह दूसरा दांत ले लेता है और जो दांत जिस समय पे आना चाहिए वहाँ पे ना आकर वो दूसरे डायरेक्शन में आता है। समय से पहले टूटता है तो हम लोग वहाँ एक अप्लायंस देते हैं पहनने के लिए जिससे दांत सही दिशा में आए। करेक्टिव हो गया, दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं पूरे, जब टेढ़े मेढ़े हो गए 12-15 साल के बाद उम्र में, फिर दांत आता नहीं, तो उस समय के बाद फिर जो टेढ़े होते हैं तो उनको हम लोग करेक्टिव, मतलब दांत को अप्लायंस के द्वारा सीधा करते हैं, जैसे फिक्स या रिमूवल लगा के करेक्टिव में।
1: तो ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, चाहे वो बचपन से हो गया या किसी कारण से दुर्घटनावश ये दांत निकल आई बाहर, या फिर जैसा आप बता रहे हैं छोटे बच्चों में गलत आदतें हैं अंगूठा चूसने के कारण, लिप्स को मुंह में अंदर लेने के कारण, ऐसे भी दांत जो हैं वो अव्यवस्थित हो जाता है
2: जी।
1: तो इस तरह के दांतों को आप किस प्रकार सुव्यवस्थित करते हैं?
2: 12 साल से पहले जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, तो दूध के दांत को ही हम लोग सही समय पर टूटने के लिए माता पिता होते हैं उनको बताया जाता है कि दांत सही समय पे टूटना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। जिस समय का
1: जो दूध के दांत हैं
2: वो सही समय पे टूटेंगे तो जो ओरिजिनल दांत आएंगे वो सही दिशा में आएंगे।
1: और यदि दांत टेढ़े मेढ़े
2: हो गए
1: तो उसका इलाज किस प्रकार किया
2: जाए? उसका इलाज दो तरह से करते हैं
1: जी,
2: एक पहनने खोला अप्लायंस देकर, एक फिक्स अप्लायंस देकर। फिक्स अप्लायंस में वो ब्रेसेस होते हैं जिनको दांत पे हम लोग फिक्स करते हैं और उसके द्वारा उसको ठीक करते हैं, दो तरह से
1: जी।
2: जिसमें समय लगता है अप्रोक्स 1 साल तक लगता है
1: जी। अच्छा, लंबा वक्त लगता है
2: उसको
1: जी। एक जो छोटा बच्चा है जिसकी दांतें बाहर आ चुकी है 8 या 9 या 10 साल का है, तो ट्रीटमेंट उसी समय शुरू कर देते हैं या जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तब उसका इलाज शुरू होता है?
2: जब बड़ा हो जाता है तब करते हैं कि 12-13 साल तक उनका दूध का ही दांत होता है। दूध के दांत टूटने के बाद हम लोग ये करेक्टिव जो ट्रीटमेंट होता है वो दूध का दांत टूटने के बाद करते हैं।
1: तो इसका निर्धारण किस प्रकार डॉक्टर साहब किया जाता है कि जैसा आपने बताया कि एक तो फ्लेक्सिबल हो गया और एक हो गया कि आप
2: फिक्स हो गया
1: तो इसका निर्धारण किस प्रकार करते हैं और क्या दोनों में अंतर है?
2: अंतर दोनों में है कि बच्चे जो हम लोग फिक्स वाला लगाते हैं वो तो दांत पे फिक्स हो गया। बहुत सारे पेशेंट होते हैं क्या है कि दांत के मूवमेंट की वजह से थोड़े दर्द होते हैं, तो दर्द की वजह से वो निकाल के अप्लायंस को, जो पहनने खोला अप्लायंस होता है उसको वो बहुत देर तक नहीं पहनते हैं, कभी पहने कभी नहीं पहने। दांत को सही दिशा में करने के लिए रेगुलर तरीके से उसको पहनना जरूरी है। तो ये जो पहनने खोलने वाला अप्लायंसेज होता है उसको खोलने का, अगर वो उनको कुछ परेशानी होता है वो खोल के रखते हैं। फिक्स वाला है कि हमेशा वो दांत पे फिक्स रहता है, फिक्स रहने से जल्दी जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उसको हम लोग बोन

0: तो इसमें खर्च कितना, लगभग मिनिमम खर्च की हम बात करें?
1: अगर फिक्स वाला जो हम लगवाते हैं उसमें अप्रोक्स 15 से 20 हज़ार टोटल एक साल के इलाज का चार्जेज लगता है
0: जी।
1: इसमें भी बहुत सारे तरह के ब्रैकेट्स आते हैं जो हम लोग दांत पे फिक्स करते हैं। कुछ कॉस्मेटिक ब्रैकेट्स आते हैं, कुछ टाइटेनियम निकल का ब्रैकेट आता है जो मेटल जैसा दिखता है, एक कॉस्मेटिक ब्रेसेज आता है जो दांत की कलर कराता है। बहुत सारे होते हैं, क्या है कि मुँह पर हम लोग वो दांत पर लगा फिक्स होता है तो उनको बाहर बात करने में किसी किसी करने में दिखता है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान का अलग अलग कॉस्टिंग होता है। जैसे अगर हम लोग जो अगर कॉस्मेटिक ब्रेसेस लगाते हैं तो सिरामिक का ब्रेसेस होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और लिंगुअली ब्रेसेस जो लगाते हैं वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जनरली हम लोग जो जनरल लगता है 15 से 20 हज़ार तक में वो ट्रीटमेंट हो जाता है।
0: जब दांतों में तार लग गई, जैसा आपने बताया ब्रेसेस फिट कर दिया गया, तो किन किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है? खान पान हम किस प्रकार करें?
1: इसमें सबसे पहले हम लोग खान पान ध्यान देंगे, बहुत स्टिकी मतलब चिपकने वाला पदार्थ ना खाएं, कड़ा पदार्थ ना लेना है, क्योंकि जो ब्रैकेट हम लोग बॉन्ड करते हैं तो दांत में चिपकाते हैं उसको टूटने का डर होता है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बहुत चिपकने वाला चीज़ पेशेंट को ना खाने दें, बहुत हार्ड चीज़ ना बताएं कि वो खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स भी मना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो बॉन्डिंग एजेंट होता है वो थोड़ा लूज होता है, उससे खुलने के चांसेस होती है। यही कुछ कुछ चीज़ का हम लोग प्रिकॉशन बताते हैं पेशेंट को
0: जी। शुरुआत में जो रोगी है उसे बोलने में भी तकलीफ होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेसेस मुंह में लगने के बाद थोड़ा उनके उच्चारण में दिक्कत होती है, क्योंकि मुंह में वो लगे रहने के कारण उनका लिप्स बार बार जो टंग होता है जो जीभ होता है वहाँ जाने की वजह से उनके उच्चारण में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कुछ दिन, उसके बाद वो उस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं
0: जी। व्यक्ति का दांत बिल्कुल स्वस्थ हो, चमकीले हो, किन किन बातों के ख्याल रखने की आवश्यकता है?
1: सबसे पहले तो खान पान में ध्यान देना होता है कि वैसा चीज़ ना खाएं जो दांत पे काफ़ी समय तक चिपक के रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोने से पहले ब्रश जरूर करें, और ब्रश सही तरीके से करें। बहुत सारे व्यक्ति जो ब्रश करते हैं उनको पता नहीं होता है कि ब्रश करने का तरीका क्या होता है। सही दिशा में ब्रश करने से और समय पर ब्रश करने से, दांतों को अच्छे से साफ रखने से दांत में परेशानियां नहीं आती।
0: हम सुबह शाम यदि दांतों में ब्रश करते हैं तो दांतों में जो बीमारियां हो जाती हैं वो नहीं होंगी, आपके दांत चमकीले होंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज किस प्रकार करें। डॉक्टर विनीत राज, आप आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, कल एक नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कैसे संभव है। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर विनीत राज, और इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंची नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरी नहीं हूं मैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम सुबह सुरीली। मैं हूं कार्यक्रम की हमसफर सुप्रीता, और आज की इस खूबसूरत सुबह में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सुबह का समय नई उम्मीदों, नए सपनों और नई ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। जब दिन की शुरुआत मधुर संगीत और सकारात्मक विचारों के साथ हो तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है। तो आइए इस सुनहरी सुबह का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म हीर रांझा का यह खूबसूरत सा गाना। शब्द रचना थी कैफी आजमी की और

इस गाने की धुन बनाई थी मदन मोहन कोहली ने। श्रोताओं, जीवन में हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़कर आज को बेहतर बनाने का संदेश। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज हम क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। आइए सुनते हैं अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म ज्वेल थीफ से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजें हैं। शब्द रचना है मजहूर सुल्तानपुरी की और इस गाने की धुन बनाई है एसडी वर्मन ने।

श्रोताओं, संगीत मन को सुकून देता है और जीवन में सकारात्मकता भरता है। कहा भी गया है, मुस्कुराहट वह रोशनी है जो चेहरे से निकलकर दिलों तक पहुंचती है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए सुबह सुरीली। अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजें हैं। इस गाने के बोल लिखे हैं शहीर लुधियानवी ने और संगीत है खयाम का।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम सुबह सुरीली में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की खूबसूरत आवाजें हैं इस गाने के बोल। लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तम जगदीश ने।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की चहचहट और मधुर संगीत, इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है श्रोताओं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों और सकारात्मक प्रयासों से शुरू होती है। लीजिए सुनिए अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म ये वादा रहा से। आशा भोसले और किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजें हैं, शब्द रचना है गुलराम बख्शी की और संगीत दिया है आरडी वर्मन ने।

इसी खूबसूरत गाने के साथ समाप्त होता है हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं पर। कार्यक्रम की हमसफर सुप्रीता लेती है आप सबसे विदा।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुरीली। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे खुला आकाश इस छोटे से विराम के बाद।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। आज हम सुनेंगे इसमें योग, इसकी तकनीक, आसन और इससे मिलने वाले लाभ। डॉक्टर कुसुम से पूजा बोस की बातचीत।
3: नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही प्राचीन विधा की जो हमारे हजारों सालों से जो चला आ रहा है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, योग। भागदौड़, स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम, इन सब के बीच शरीर अकड़ रहा है और मन भटक रहा है। ऐसे में योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एक टूल बन चुका है। आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से शरीर और मन का संतुलन तलाश कर रही है। ऐसे में एक 5000 साल पुरानी विधा फिर से दुनिया की उम्मीद बन रही है। योग कोई जादू नहीं है, बस आपकी सांस से आपके शरीर का वापस जोड़ है। इसकी तकनीक क्या है, आसन क्या है, इससे क्या लाभ हो सकता है, आज इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर कुमारी कुसुमलता जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है रांची यूनिवर्सिटी में, साथ ही चीफ योगा ट्रेनर भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
4: थैंक यू पूजा जी।
3: मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं योग का जो शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, आधुनिक जीवन में योग हमें किस किस से जोड़ता है, शरीर से, मन से या समाज से, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: योग तो हमें शरीर से भी, मन से भी और समाज से भी जोड़ता है। योग तो ऐसी प्रक्रिया है जो हमें शारीरिक और मानसिक संबल देता है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम जीवन के हर परिस्थितियों में खुद को स्ट्रांग रखते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ घंटों कंप्यूटर पे बैठकर स्क्रीन व किताबों के सामने लोग बैठे रहते हैं, उनकी जीवन शैली बहुत ही तनावपूर्ण और गतिहीन हो गई है। ऐसे समय में योग कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। योग संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ ही होता है जुड़ना या मिलाप। यह केवल शरीर को मोड़ने या कुछ व्यायाम करने तक सीमित नहीं रहता पूजा जी, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संतुलन स्थापित करने का विज्ञान है।
3: बिल्कुल, जो श्रोता चाहते हैं मन ही मन में कि वो भी योग करे, वो भी योग से जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम संकोच होता है कि जो वो करना चाह रहे हैं सही कर पाएंगे या गलत हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती है। पहली बार शुरुआत करना चाहता है, योग शुरू करना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहेंगी?
4: मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज की नई शुरुआत में हमें डर लगता है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने मन से डर को निकालना होगा, भय को निकालना होगा। कुछ आसन जो बिल्कुल सहज होते हैं, कुछ प्राणायाम जो बिल्कुल सहज होते हैं, शुरुआत उन्हीं से करने चाहिए। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं ऋतु परिवर्तन आए दिन हो रहा है।
3: बिल्कुल,
4: बारिश होते होते गर्मी हो जाती है, तापमान जो है अप डाउन होता है, ऐसे में भस्त्रिका जरूर करना चाहिए। कैसे करना है? हम अपने पीठ, कमर, मेरुदंड को बिल्कुल सीधी रखेंगे, हाथ हमारी वायु मुद्रा में रहेगी और लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार करेंगे। धीरे धीरे इसे हम बढ़ाएंगे। इसकी दो गति होती है, पहले गति जो होती है धीमी गति होती है, उसके बाद फिर इसको तीव्र गति से किया जा सकता है। बच्चों को ये जरूर करवाना चाहिए क्योंकि बच्चे खेल खेल में कई बार भींग जाते हैं और उनका तापमान रहे, खांसी, सर्दी, बुखार, वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है।
3: कह सकते हैं कि चाहे वो गृहिणी हो, किसान हो या फिर हो विद्यार्थी या फिर कार्यालय जाने वाले लोग, उन सबको कहीं न कहीं योग जरूर करना चाहिए।
4: जहाँ तक आपने इसमें महिलाओं की बात की, तो एक महिला जो है अगर स्ट्रांग होती है तो उसका पूरा परिवार स्ट्रांग होता है। पहले मैं महिलाओं की बात करूंगी। कुछ पोस्चर, आए दिन महिलाओं में कमर दर्द होता है। कमर दर्द से बचाव के लिए और रीढ़ की हड्डी को थोड़ा ठीक रखने के लिए, घुटनों का दर्द को ठीक रखने के लिए हमें भुजंगासन करना चाहिए।
5: बिल्कुल।
4: उसके आगे अगर आप बात करें, तो आपने बात की है किसानों की और बच्चों की, कर्मचारी वर्ग। तो कर्मचारी वर्ग की जहाँ तक आपने बात की है, वो घंटों लैपटॉप के आगे बैठे ही रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको अनुलोम विलोम करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अनुलोम विलोम से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, तनाव रहित रहते हैं और इससे हमारी आयु शक्ति भी बढ़ती है। तो इसे कैसे करना है? पीठ कमर मेरुदंड बिल्कुल अस्थिर रखना है, हाथ हमारी वायु मुद्रा में रहेगी। अपनी तर्जनी को कभी योग में यूज नहीं करना है, योग और पूजा में। तो ये उंगली को हमेशा मोड़ के रखेंगे और हमारा जो है मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर,
5: यानी क्रोध को वश में,
4: हाँ क्रोध को वश में रखना, और ये तीनों जो है हमारा स्ट्रेट होगा। हाथ हमारी वायु मुद्रा, हम बाएं नाक से सांस को लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और दाहिने से छोड़, फिर दाहिने से लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को लगातार करना है।
5: कितने देर तक करना है?
4: अनुलोम विलोम को कम से कम 3 मिनट तो करना ही चाहिए।
5: एक और सवाल है, जैसे आसनों के साथ प्राणायाम को हमेशा जोड़ा जाता है, क्यों?
4: तब तक हम किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से नहीं कर सकते जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। और अपने मन को स्थिर रखने के लिए पूजा जी प्राणायाम हमें जरूर करना चाहिए। इसके लिए कुछ प्राणायाम का मैं नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे अभी भी मैंने बताया भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण, और इसके अलावा एक मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी, अभी जैसे आपने श्रमिकों की बात करी, किसानों की बात करी, महिलाओं की बात करी और इसके अलावा बच्चों की बात करी, तो इन लोगों को अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जरूर करना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए कपालभाति में कि हमारा पेट पूर्ण रूपेण खाली हो, और हम इमेजिन करेंगे कि हमारे नाक के ठीक सीध में एक कैंडल रखा हुआ है। हम लोग कैंडल को कैसे बुझाते हैं? मुंह से फूंक मार के। हमें मुंह से नहीं फूंक मारना, हमें नाक से बुझाना है, 1 सेकंड में एक बार, और सांस को अंदर की ओर खींचना है। इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और शरीर में किसी भी तरह के गांठ होते हैं वो ठीक हो जाते हैं।
5: तो चलिए एक और चीज हमें बता दीजिए कि जैसे लोग कहते हैं कि आयु के अनुसार भी योग का जो स्वरूप है वो अलग अलग होता है।
4: बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इंसान का बॉडी जो है वो थोड़ा गठीला हो जाता है। छोटे बच्चों का शरीर जो होता है वो बहुत लचीला होता है, वो कठिन से कठिन भी योग आराम से कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वही सब आसन करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है करने में। तो इसलिए शुरुआत इसकी आसानी से करने वाले आसनों से करनी चाहिए, जैसे वज्रासन। वज्रासन जिसको इंग्लिश में डायमंड पोज कहते हैं। आजकल लेडीज में पाचन की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे हालत में एक वज्रासन करना चाहिए। पैर को पीछे करके बैठ जाए और हाथ दोनों वायु मुद्रा में अपने थाई के ऊपर रखना है, और यही एक आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, इसलिए इसको डायमंड पोज का नाम दिया गया।
5: इसी के साथ एक और सवाल है, जैसे आपने बताया अभी कि जो वर्किंग लोग हैं दिन भर वो अपने ऑफिस में कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो उस वक्त कैसे वो तय करेंगे कि उनको उस वक्त योगा करना चाहिए? जैसे उन्होंने लंच किया, उसके कितने देर बाद वो कर सकते हैं?
4: लंच करने के 3 घंटे के बाद आसन कर सकते हैं।
5: आज चिंता और अवसाद की समस्याएं बढ़ रही हैं। योग शास्त्रों में मन को शांत करने के लिए किन यौगिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है?
4: मन को शांत करने का और तनाव रहित जीवन जीने में योग को शामिल करना ही है। उसमें कुछ योग को शामिल करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसा प्राणायाम है जो कभी भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा खाने के अंतराल में कहीं भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, आप ड्यूटी में भी कर सकते हैं, आप बच्चों से भी करवा सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। बस ध्यान देना है कि आप खा के तुरंत ना करें, थोड़ा डिफरेंसेस में। ये मन को स्थिर रखता है, मानसिक तनाव दूर रखता है और इससे हमारी आयु भी बढ़ती है। पूजा जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ओम का उच्चारण हर आयु के लोग को करना चाहिए। ओम का उच्चारण से हमें बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है, याददाश्त तेज होती है और सबसे बड़ी बात है कि हमें आंतरिक शांति मिलती है। सूर्य नमस्कार या 12 अलग अलग आसनों का एक अद्भुत समूह है। इसे पुण्य व्यायाम कहा जाता है पूजा जी। यह शरीर के हर जोड़े और मांसपेशी को खुलता है और सुबह के समय इसे करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है।
5: ये भी देखा गया है कि जो योग है, योग के साथ आहार का भी एक बहुत गहरा संबंध है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
4: जैसा कि कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। तो हमें आज के जीवन शैली में फास्ट फूड को छोड़ना होगा। बहुत तेल, घी, बहुत हैवी चीज, चीनी, मैदा, ये सबसे दूर रहना होगा। पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फल, तो इसमें सीजनल फल को अपने दिनचर्या में शामिल करना है, सैलड को शामिल करना है और अपनी जीवन शैली को एक अच्छी गति में लेके जाना है। जैसे सुबह समय से उठें, रात को समय से सोएं। कहा भी गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम किसी भी काम को सुचारू ढंग से अच्छे रूप से पूजा जी तभी कर सकते हैं जब हम खुश होते हैं, और योग के माध्यम से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं।
5: योग को लेकर कई सारी ऐसी भ्रांतियां भी हमें अक्सर सुनने को मिलती है, जैसे लोग कहते हैं कि कई ऐसे आसन हैं जो महिलाओं के लिए बाधित हैं, या फिर कई बार ऐसा भी सुनने मिलता है कि योग सिर्फ लचीले शरीर वालों के लिए है, बूढ़े बुजुर्ग योग से दूर ही रहें तो अच्छा है। और ये भी सुनने को मिला है कि योग से वजन भी नहीं कम होता। कितनी इसमें ये भ्रांतियां हैं, कितना ये सही है?
4: ये बहुत ही गलत भ्रांतियां हैं। योग ही ऐसा माध्यम है पूजा जी जिससे वजन भी कंट्रोल हो सकता है, बेहतर पाचन भी हो सकता है, श्वसन नली में सुधार भी हो सकता है, हमारे रक्त की शुद्धि भी हो सकती है, हमें तनाव से मुक्ति भी मिल सकती है, हम ऊर्जावान भी हो सकते हैं, हमारी एकाग्रता भी बढ़ सकती है, और सबसे अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि इससे प्राकृतिक चमक भी बढ़ती है, झुर्रियां कम होती है, पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं, फालतू खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिससे अगर हम रेगुलर करें तो आप बता नहीं सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है।
5: इलाज भी योग में है।
4: बिल्कुल है। जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं तो तनाव रहित, थकान रहित, एकाग्रता पे फोकस, याददाश्त तेज होना, आंतरिक शांति, कुछ कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसको करने से ये सब महिलाओं में आराम से हो जाएंगे। महिलाओं क्या, सब में हो जाएंगे। और ये बहुत गलत भ्रांति है कि बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते। योग तो सबके लिए है, सबके लिए है। मैं कहती हूँ योगा से होगा, योगा से ही होगा। कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर जाने की, कोई जरूरत नहीं है आपको जिम में जाके पैसे खर्च करने की, कोई जरूरत नहीं है आपको समय बर्बाद करने की। आप प्रकृति का आनंद लें, योग प्रकृति के साथ करें, योग के नियम को फॉलो करें। सुबह सुबह उठें और सबसे पहले उषापान करें। उषापान मतलब गर्म पानी पिए और उसके बाद अपने आप को शुद्ध करें।
5: बिल्कुल।
2: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश, इसके अंतर्गत आज हम सुन रहे थे वार्ता, माफ कीजिए श्रोताओं, भेंट वार्ता। विषय था योग, इसकी तकनीक, आसन और इससे मिलने वाले लाभ। डॉक्टर कुसुम से पूजा बोस की बातचीत हो रही थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली केंद्र पर।
5: भारतीय आज हमें सुन रहे हैं,

से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जल

0: पूर्व मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रधान होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका

0: फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
3: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागही ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है।

0: अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister.

0: research partnerships and funds. India flays lethal action on mariners. Jaishankar raises issue with Rubio, who warns against violations in Hormuz. Headlines The Pioneer. Lieutenant General Dheeraj Seth, appointed next Army Chief, will assume office on 30th of June, informs The Statesman. Rajnath praises rise in women's strength in IAF. Indian Air Force sees the commissioning of its first batch of women officers. Defence Minister says Operation Sindoor showed the forces' capability to destroy enemy infrastructure with precision, cites The Hindu. In The Sun Times informs Anthropic has disabled its two most powerful AI models, Fable 5 and Mythos 5, on a US government order under the headline In a First, AI model pulled offline after US government intervenes. FSS AI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in The Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furnace, some luxe gold watches fail the test of time. The Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का भी समिति करेगी दौरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कार्य। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर होगी बात। मानकों के विपरीत संचालित झारखंड के 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द। नए नामांकन पर रोक। विश्व रक्तदाता दिवस आज। झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में चलाया जाएगा रक्तदान महाअभियान। और राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत। आज से अगले 7 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहे हैं। धनबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा

0: शांति और संवाद के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G7 सम्मेलन में भी भारत शांति, सहयोग और सकारात्मक संदेश के साथ भाग लेगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब भी देने का काम किया है। भारत आग दिखाना जानता है। राष्ट्रीय प्रथम की भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और चाहे विश्व के किसी भी देशों में उनका जाना होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी देश होती है। तो अभी भी जा रहे हैं तो जैसे पहले भी गए हैं तो देश के लिए बात करके देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेकर आए हैं। तो आने वाले समय में भी देश के लिए ही वो और जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है वो कैसे बेहतर हो बात भी करेंगे।
0: सिंहभूम सांसद जोभा मांझी ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया।
2: सीओ साहब की हम लोग बैठक किए, बहुत सारा समस्या को लेकर के बाजार करने वाले दुकानदारों के लिए, साग सब्जी वाले के लिए, पानी के लिए बहुत सारे समस्या था, उन विषय को लेकर के चर्चा हुई, समाधान की ओर हम लोग पहुंचे और निगम के तरफ से इन लोग को हटाया जाता है कभी कभी, फिर बैठाया जाता है, तो उसका अस्थायी समाधान करने के लिए हम इसका रास्ता हम लोग ढूंढ निकाल रहे हैं कि आने वाला समय में इस तरह का कठिनाई नहीं।
0: सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जामताड़ा समाहरणालय सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। इसमें नाला विधानसभा के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा संचालित विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं आधारभूत संरचना की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने एवं समय पर योजनाओं का पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। झारखंड में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द कर दिया गया है। इन कॉलेजों में अब आगामी सत्र 2026-27 में नए एडमिशन नहीं हो सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इन संस्थानों में आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण, योग्य शिक्षकों और शैक्षणिक मानकों से जुड़ी गंभीर कमियां मिलने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित संस्थानों ने निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्तदान को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हेमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित कर इच्छुक रक्तदाताओं का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और ब्लड कलेक्शन कराया जाए। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करे, जीवन बचाए रखी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का भी सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की पहल पर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा समारोह का आयोजन कर झारखंड राज्य निर्माण में जामताड़ा जिले के आंदोलनकारियों को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सम्मानित किया। मौके पर स्पीकर ने कहा कि यह केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों द्वारा किए गए संघर्ष, त्याग, योगदान एवं समर्पण का सम्मान है।
3: उनके बताए हुए मार्ग पर आज भी हम लोग चल रहे हैं और जो काम हम लोग का बाकी है इस झारखंड में को एक संतुलित विकास करके देश के अग्रिम पायदान तक पहुंचाएं पर आज भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में सबसे लंबा आंदोलन चलने वाला आंदोलन अगर कोई था ये झारखंड अलग प्रांत का आंदोलन था।
0: केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में इससे संबंधित गतिविधियां आयोजित हो रही है। केवीके साहिबगंज की प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती कम लागत और सुरक्षित उपज के लिए कारगर उपाय है। वहीं महिला किसानों ने बताया कि इसको सीख कर अपने गाँव के अन्य किसानों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी।
4: हम यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा प्राकृतिक खेती से खेती करने के लिए और गांव जाके हम सभी दीदी को बताएंगे कि प्राकृतिक खेती कैसे करना है और कैसे किया जाता है। के लिए पहले तो हम खुद बदलेंगे प्राकृतिक खेती करने के लिए, के बाद दीदी लोग को जागरूक करेंगे। प्राकृतिक खेती करने से आपका खेत का मिट्टी का उपजा बहुत अच्छा होगा, अच्छा है और बीमारी जो होता है वो भी कम होगा।
0: राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक सभी जिलों में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने असम में विमान हादसा में 5 जवानों के शहीद होने की खबर को सुर्खी बनाई है। इसके अलावा दैनिक जागरण की सुर्खी है अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। हिंदुस्तान ने लिखा है फैसला, अर्धसैनिक बलों के जवान केंद्रों तक पहुंचाएंगे नीट का पेपर। प्रभात खबर के शब्द है महिला T20 विश्व कप भारत पाकिस्तान महामुकाबला आज। दैनिक भास्कर ने फीफा वर्ल्ड कप की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। लिखा है खूखी के हेडर से अंतिम 2 मिनट में कतर ने की वापसी, मैच 1-1 से ड्रॉ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का भी समिति करेगी दौरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कार्य। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर होगी बात। मानकों के विपरीत संचालित झारखंड के 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द, नए नामांकन पर रोक। विश्व रक्तदाता दिवस आज, झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में चलाया जाएगा रक्तदान महाअभियान। और राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत, आज से अगले 7 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी। और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप की नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप कार्यक्रमों में हैं सुप्रीता के साथ।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे संवेद गान शिक्षा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आइए सुनते हैं संवेद गान शिक्षा। आज हम सुनेंगे कन्नड़ भाषा में।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीता पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हारु तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी तो मुगिला
1: यनी तो मुगिला उद्द अगला जी की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे
0: हसीव मरेसी
1: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ?
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नडे। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना?
1: धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: तकी तकी तकी तकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी हम सुन रहे थे संवेद गान शिक्षा कन्नड़ भाषा में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे फिल्म संगीत का रसरंजन थोड़ी ही देर में।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार श्रोताओं, आप हैं सुप्रीता के साथ गीतों के प्रोग्राम रसरंजन में। आज हम बात करेंगे उस अनमोल धरोहर की, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। अगर हम बात करें पर्यावरण की तो पेड़ पौधे नदियां पर्वत हवा मिट्टी और ढेरों जीव जंतु ये सभी मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन और अंधाधुंध विकास के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेवारी है श्रोताओं कि हम सब इस अनमोल पर्यावरण की रक्षा करें, तभी तो कोई भी सफर हमारा होगा वो सुहाना बन जाएगा।

0: श्रोताओं, प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और जीवनदायिनी संसाधन। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि प्रकृति को बदले में हमने क्या दिया? आइए सुनते हैं एक गीत जो प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है, जिसमें पंछी हैं, नदियां हैं और पवन, ये सभी हैं।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम रसरंजन में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं पर्यावरण की। वैसे देखा जाए तो हर साल हम लाखों पेड़ काटते जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित भी हो रही हैं और प्लास्टिक का कचरा धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और किसी भी मौसम का मजा हम नहीं ले पाएंगे।

याद रखिए श्रोताओं, प्रकृति से प्रेम करना स्वयं से प्रेम करने के समान है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सुप्रीता को दीजिए इजाजत।

अभी हम सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं अभिराम पाठक। इनसे आज हम सुनेंगे राग देसी में आलाप और धमार गायन। इनके साथ पखावज पे संगत कर रहे हैं राम बच्चन पाठक।

अभी हम सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे अभिराम पाठक। इनसे आज हम सुन रहे थे राग देसी में आलाप और धमार गायन। इनके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे राम बच्चन पाठक और हारमोनियम पर थी संचाली नाग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी ही देर बाद हम सुनेंगे बाल श्रोताओं का साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम बाल सभा। कार्यक्रम जोहार रांची का वक्त होगा 10:30 पर और ठीक इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद 11:30 पर। हमारी बहनों के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का वक्त होगा 12:00। 12:30 का वक्त होगा आंशिक लोकगीतों के कार्यक्रम भारत भारती का। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, इसका वक्त होगा 12:45 पर। हिंदी और अंग्रेजी समाचार का वक्त होगा 1:05 पर। एक बजकर 10 मिनट का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। 1:20 पर हम सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी। सुगम संगीत का वक्त होगा 1:45 पर। 2:00 हम सुनेंगे मिड डे न्यूज और ठीक इसके बाद हम सुनेंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे बाल सभा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एग्जाम

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए सुनते हैं बाल श्रोताओं का साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम बाल सभा। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे, साथ में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। और बच्चों आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मजेदार बात से। आपको एक बात सच सच बतानी है बच्चों, बिना झिझक के, बिना डरे और बिल्कुल ईमानदारी से,
0: कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं या दिन में जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? क्या आपका मन होता है कि जल्दी से मैदान की ओर भाग जाएं, दोस्तों के साथ खेलें या किताब उठाकर पढ़ाई शुरू कर दे, या फिर सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं? हाँ, और ऐसा हो भी क्यों ना भला, मोबाइल अच्छी चीज है। इससे हम वीडियो देखते हैं, कहानियां सुनते हैं, गाने सुनते हैं, नई नई बातें भी सीखते हैं, जानकारियां मिलती हैं और कभी कभी तो पढ़ाई में भी मदद मिल जाती है।
1: बिल्कुल, मोबाइल ने कई कामों को आसान कर दिया है बच्चों। दूर बैठे लोगों से बात करनी हो या कुछ सीखना हो या कोई जानकारी लेनी हो तो मोबाइल से सब आसान हो जाता है।
0: लेकिन बच्चों समस्या तो तब शुरू होती है जब हम किसी भी चीज का उपयोग जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं। और एक बहुत सरल और सच्ची बात है कि अति किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है।
1: यानी कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बच्चों, अगर उसका उपयोग जरूरत से ज्यादा हो तो नुकसान करती है। और ठीक ऐसे ही बहुत ज्यादा मोबाइल देखने से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं।
0: जैसे बहुत देर तक मोबाइल देखने से आंखों में जलन, थकान, पढ़ाई में ध्यान कम लगना और खेल कूद का समय कम हो जाना, चिड़चिड़ापन, ये सारी परेशानियां होती हैं बच्चों, जो आपके लिए सही नहीं है।
1: हाँ बच्चों, बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा समय होता है। कहा जाए तो बचपन खेलने का, सीखने का और खुश रहने का सबसे सुंदर समय होता है। और खुश रहने का सबसे सरल तरीका क्या है बच्चों? अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना।
0: जैसे समय पर उठना, अपने दिन की सही शुरुआत करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। बच्चों अगर दिन की शुरुआत प्रकृति, पढ़ाई या खेल के साथ हो तो दिन कितना अच्छा लगेगा, है ना?
1: हाँ, और पता है बच्चों, बचपन की सबसे प्यारी यादें मोबाइल में नहीं बल्कि परिवार और दोस्तों की हंसी, खेल कूद और शरारतों में छिपी होती है।
0: लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि मोबाइल बुरी चीज है, आप उसे छोड़ दें। मोबाइल जरूरी तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मोबाइल का सही समय पर सीमित उपयोग करना।
1: जैसे पढ़ाई का समय होता है ना बच्चों, खेलने का समय होता है, ठीक वैसे ही मोबाइल देखने का भी एक समय होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा समय मोबाइल को दें और ज्यादा समय खेल, पढ़ाई और परिवार और दोस्तों को दें तो इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा और मन भी खुश रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल बच्चों, बचपन की सबसे प्यारी यादें यही तो होती हैं, दोस्तों के साथ खेलना, छुपन छुपाई, साइकिल चलाना, कहानी सुनना और परिवार के साथ हंसना, समय बिताना, यही छोटी छोटी बातें जीवन की बड़ी खुशियां बनती हैं।
1: हाँ बच्चों, सच्ची मस्ती स्क्रीन में नहीं है बल्कि अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बिताए गए पलों में है। मोबाइल हमारा सहायक है लेकिन जीवन का विकल्प नहीं।
0: हाँ, मोबाइल पर गेम खेलना आसान लगता है बच्चों, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब दोस्त साथ हों, हंसी हो और खुला मैदान हो। स्क्रीन पर सब कुछ दिखता है बच्चों, लेकिन ताजी हवा, दौड़ और असली मस्ती नहीं होती।
1: हाँ, इसीलिए बच्चों आप जितना कम हो सके उतना कम मोबाइल का उपयोग करें और अधिक से अधिक समय खेल कूद, मस्ती, पढ़ाई और परिवार के साथ बिताएं।
0: याद रखें बच्चों, मोबाइल कम, मस्ती ज्यादा, और इसके लिए आप मोबाइल छोड़कर दोस्तों के साथ लूडो, कैरम, शतरंज खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं,
1: कहानियां पढ़ सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं और दादी नानी के मजेदार किस्से भी सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ गाना, नाटक, नृत्य भी किया जा सकता है, है ना?
0: हाँ, क्योंकि असली मजा खेल कूद और नई नई चीजें सीखने में है बच्चों।
1: और इसके साथ ही साथ बच्चों, हमें जीव जंतुओं से भी प्यार करना चाहिए। बच्चों अभी हमने बातें की कि मोबाइल कम और मस्ती ज्यादा होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो बाहर की दुनिया में है, खेलने में, दोस्तों के साथ हंसने में, पेड़ों की छांव में बैठने से और प्रकृति के करीब रहने में।
0: बिल्कुल, और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे प्यारे पशु पक्षी और जीव जंतु कैसे पीछे रह सकते हैं? कभी छत और पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियां, कभी फुदकती गिलहरी, कभी रंग बिरंगी तितलियां, तो कभी रास्ते में दिखने वाले प्यारे जानवर, ये सब हमारी दुनिया को और भी सुंदर बना देते हैं बच्चों।
1: बच्चों जरा सोचिए, अगर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई न दे, पेड़ों पर पक्षी न दिखे या हमारे आसपास कोई जीव जंतु न हो तो दुनिया कितनी सुनी सुनी लगेगी, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। और बच्चों, ये जीव जंतु सिर्फ हमारी दुनिया को सुंदर ही नहीं बनाते बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। और सबसे खास बात तो ये है बच्चों कि इन्हें भी हमारी तरह प्यार, दया और देखभाल की जरूरत होती है।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चे इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो बच्चों आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से, छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करके। जैसे
0: गर्मी के दिनों में अपने छत, आंगन में या पेड़ के नीचे पक्षियों के लिए एक कटोरी पानी रखकर, थोड़ा दाना रखकर, किसी जानवर को बिना वजह परेशान ना करके, और अगर कोई घायल पशु दिखे तो तुरंत किसी बड़े को बताकर आप उनकी मदद कर सकते हैं बच्चों।
1: हाँ बच्चों, कभी भी किसी जानवर को पत्थर मारना, डराना या उन्हें चोट पहुंचाना, पक्षियों का घोंसला तोड़ देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्यार से बुलाने पर जानवर भी हमारे दोस्त बन जाते हैं और दया प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं होता बच्चों।
0: हाँ, याद रखिए बच्चों, दया और प्रेम वो भाषा है जिसे हर जीव समझता है, चाहे वो बोल ना सके लेकिन प्यार को जरूर महसूस करता है।
1: और जो जीव जंतुओं से प्यार करता है वही सच्चे अर्थों में दयालु इंसान कहलाता है। और ऐसे भी बच्चों, ये धरती सबकी है, सिर्फ हम इंसानों की नहीं है। ये जीव जंतु जो बोल नहीं पाते उनकी मदद करना, उन्हें परेशान न करना, यही दया है और सच्ची इंसानियत भी। इसलिए बच्चों, जीव जंतुओं से हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि जीव जंतु हैं तभी ये धरती भी है। तो बच्चों, हम यही चाहेंगे कि आप जीव जंतुओं से प्यार कीजिए, उनको समझिए, उनको किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो दीदी, बातें तो बहुत हो गई और जानकारी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन जानकारी से पहले अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए।
0: तो चलिए बच्चों को सुनवाते हैं ये बाल गीत।

0: वाह, तो बच्चों कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो दीदी अब बच्चे भी तैयार हैं कुछ सुनाने के लिए।
1: हाँ हाँ,
0: तो चलिए बच्चों से भी सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: मेरा नाम शंभव चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ और आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक रश्मि रथी है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सदुप घाम पानी पत्थर पांडव वाय को चौर निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को।

0: देखो मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति हमारे, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंग धर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर सा दिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देखिया, देख जगत का आदि सिद्धिया, देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुठ्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते है, फिर लौट मुझी में आते है, जिभा से करती ज्वाल से कंसा, सो से पाता जन्म भवन, प्रजाति मेरी ऋषि हंसने लगती है, सृष्टि सर मैं जब ही मूनता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर, मरण बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी ख्याल आया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध नंद गगन, सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, जाचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर ऋण प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान भून से छूटेंगे, वायस श्रीकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सुन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अधाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय जय, धन्यवाद।
1: मेरा नाम शाश्वत चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है याद तुम्हारी आती है। ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस के रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, झरने जब झर झर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर में जाकर कहती है, जब उतार चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, धन्यवाद।
2: वाह, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दी थी, और अब हम बच्चों को क्या बताने वाले हैं, क्या जानकारी है बच्चों के लिए?
3: बच्चों आज हम एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, कोई उसे देखकर घबरा जाता है तो कोई दूर भागने लगता है, और कई बार तो लोग बिना सोचे समझे उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करने लगते हैं।
2: और वो जीव है बच्चों सांप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे देखकर हम इतना डर जाते हैं वही जीव हमारे प्रकृति के लिए कितना जरूरी हो सकता है?
3: हाँ बच्चों, सांप एक ऐसा जीव जो बिना शोर किए प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है ना? ये हैरानी की बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सही और सच्ची है।
2: बच्चों प्रकृति में हर जीव का अपना एक काम होता है, कोई पेड़ पौधों के बीज फैलाने में मदद करता है, कोई फूलों और फलों को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक उसी तरह सांप भी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका का निर्वाह करता है।
3: हाँ बच्चों, आपने खेतों या घरों के आसपास चूहे तो जरूर देखे होंगे। अब जरा सोचिए, अगर चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा?
2: वे खेत की फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, अनाज खराब करेंगे और कई तरह की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है।
3: और हमने तो आपको पहले ही बताया है कि प्रकृति में प्रत्येक जीव का एक निश्चित कार्य होता है। बच्चों, कोई जीव पर्यावरण को संतुलित करता है तो कोई खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बनाए रखने में सहायता करता है।
2: इसी तरह सांप भी प्रकृति में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, वे चूहों और कई छोटे छोटे जीवों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हैं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, और इसी कारण सांप को प्रकृति का रक्षक भी

0: कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, आपको बता दें कि हर सांप जहरीला नहीं होता। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए अगर कभी कहीं सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें।
1: हाँ, सावधानी और समझदारी के साथ काम करें। और समझदारी इसी में है कि सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, उसके पास बिल्कुल न जाएं और किसी बड़े व्यक्ति या वन विभाग को इसकी सूचना दें।
0: प्रकृति एक सुंदर परिवार की तरह है जहाँ हर जीव की अपनी जिम्मेदारी है।
1: और हम सबकी ये जिम्मेदारी है बच्चों कि हम प्रकृति और उसके सभी जीवों का सम्मान करें और उनके महत्व को समझें।
0: और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है और वो है पेड़ पौधे। बच्चों जरा सोचिए, अगर धरती पर पेड़ ही ना हो तो क्या होगा?
1: ना तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, ना छाया मिलेगी और ना ही जीवन संभव हो पाएगा। पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार हैं बच्चों। ये केवल धरती की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जीवन का आधार भी हैं।
0: बिल्कुल, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। वे हवा को साफ रखते हैं और वातावरण को संतुलित रखते हैं।
1: इसके अलावा पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधियाँ और लकड़ी भी प्रदान करते हैं। वे बारिश लाने में भी मदद करते हैं बच्चों।
0: हाँ बच्चों, अगर पेड़ ना हो तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा।
1: आज के समय में पेड़ों की कटाई एक बड़ी समस्या बनती जा रही है बच्चों, जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
0: हमें ये समझना होगा बच्चों कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जितना अधिक पेड़ पौधे हम लगाएंगे हमारा भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा।
1: इसलिए आप सब अपने घर, विद्यालय या आसपास की खाली जमीन पर पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें।
0: याद रखें बच्चों, हरी भरी धरती ही खुशहाल जीवन की पहचान है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे। और अब बारी है बाल कथा की। तो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है लाल मोर। और ये कहानी है तेनालीराम की कहानी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं।
1: विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत और विलक्षण चीजें संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसे ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था ताकि वो चीज महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बन सके और रुपए भी ऐंठ सके।
0: एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वो सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत और अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था, लाल मोर, वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज मंगवाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि इस मोर को मंगवाने में तुम्हें कितना रुपया खर्च करना पड़ा?
1: दरबारी अपनी प्रशंसा सुनी तो वो प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वो राजा से बोला, महाराज, आपके लिए ये अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने दो सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में ये अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपए खर्च किए हैं।
0: उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपए राजकोष से दे दिए जाएं।
1: मंत्री को ये आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, ये तो आपको वो रुपया दिया जाता है जो आपने खर्च किया है, इसके अलावा एक सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।
0: दरबारी को भला और क्या चाहिए था? वो तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा।
1: तेनालीराम ये भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा ये सब अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है।
0: बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था।
1: तेनालीराम चार और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार कराया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 से केवल एक लाल मोर ही मंगवाया था और मैं सिर्फ 50,000 रुपए में उससे भी अधिक सुंदर चार लाल मोर ले आया हूँ।
0: राजा ने देखा सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे।
1: राजा को आज्ञा देनी पड़ी, तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपए फौरन दे दिए जाएं।
0: राजा कृष्णदेव राय की ये आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूँ। ये आदमी एक अनोखा चित्रकार है, ये किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है, इसी ने नीले मोर का रंग लाल करने की कला दिखाई है।
1: अब राजा को सारा गोरखधंधा समझते देर न लगी, वो समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 रुपए लौटाने के साथ ही 5,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया।
0: दरबारी बेचारा क्या करता, वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने की सनक के चक्कर में 5,000 रुपए भी गंवाने पड़े। तो चलिए बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, अच्छी लगी ना? और हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में।
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जब भी वीरता, साहस और देशभक्ति की बात होती है बच्चों, तब सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वो है रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्त्री किसी से कम नहीं होती। उनका जीवन बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बच्चों ये कविता तो आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी, और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। बच्चों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लोग उन्हें प्यार से मनु भी कहा करते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था।
1: मनु बचपन से ही बहुत चंचल, साहसी और बुद्धिमान थी बच्चों। जब वे छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। मनु को गुड़ियों से खेलने की अपेक्षा घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाना अधिक पसंद था।
0: मनु ने बचपन में ही घुड़सवारी में अद्भुत दक्षता प्राप्त कर ली थी बच्चों। उनके प्रिय घोड़े का नाम सारंगी, बादल और पवन बताए जाते हैं। वे घोड़े पर सवार होकर इतनी तेज दौड़ती थीं कि बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित रह जाते थे।
1: सन 1842 में मनु का विवाह गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बनी।
0: रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव को एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही समय बाद चल बसा। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया।
1: इसी बीच अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए कई राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने झांसी पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई।
0: जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से घोषणा की
1: कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था बच्चों, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की पुकार थी। रानी ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना में अनेक वीर सैनिक और वीरांगनाएं शामिल थीं।
0: सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ झांसी की रक्षा की।
1: जब अंग्रेज सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया तब भी रानी ने हार नहीं मानी। वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और युद्ध भूमि में उतर पड़ी। उनकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग रह गए।
0: लगातार संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची। 18 जून 1858 को अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ती रहीं।
1: सिर्फ 29 वर्ष की आयु में उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका ये बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो गया बच्चों, इसलिए प्रत्येक वर्ष 18 जून को उनके बलिदान दिवस पर देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करता है। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और देशभक्ति से अमर स्थान प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और बलिदान से सिद्ध होता है। आज भी जब हम उनका नाम सुनते हैं हमारे मन में वीरता और स्वाभिमान की भावना जाग उठती है।
0: रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सदैव आने वाली पीढ़ियों को साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। और अब दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। तो बच्चों, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। जय हिंद।

अभी हम सुन रहे थे बाल श्रोताओं का साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे जो है रांची, थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त हम खास आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे कुछ ही पलों में।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और इस कार्यक्रम के सफर में आज एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
3: और साथ में सुकृता। दोस्तों कहते हैं ना, ये जिंदगी भी तो तमन्नाओं का गुलदस्ता ही है। कभी महकती है, कभी मुरझाती है, तो कभी चुप सी जाती है।
2: क्या बात है सुप्रीता। और ये तो हम पे निर्भर करता है कि उस गुलदस्ते से हम किस तरह कांटों से अपने हाथों को बचाते हुए सिर्फ फूल ही फूल चुने।
3: और अगर हाथों में कांटे चुभ भी जाए तो ये सिर्फ हमें दर्द ही नहीं देते, बल्कि हमें सचेत करते हैं शिल्पी, और साथ साथ सावधान भी करते हैं कि आगे की तकलीफ से हम कैसे उस दर्द से बच सकें।
2: बिल्कुल। और इन्हीं सुविचारों के साथ बढ़ते हैं आज के सफर पर और कहते हैं
3: जोहार।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। और हर दिन की तरह 14 जून को भी इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। तो आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और इस प्रतियोगिता में जेम्स ब्रेन ने अपना पहला ओपन चैंपियनशिप खिताब जीतकर गोल्फ जगत में नई पहचान बनाई थी।
1: आज ही के दिन सन 1777 में अमेरिकी कांग्रेस ने फिलाडेल्फिया में बैठकर सितारों और पट्टियों वाले नए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इस दिन को अब अमेरिका में फ्लैग डे के रूप में भी मनाया जाता है।
0: सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की सिफारिश पर हुई। सन 1969 में इसे इसरो का नाम दिया गया, और सन 1985 में यूरोप के 5 देशों ने शेंजन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ये देश बिना सीमा जांच के स्वतंत्र रूप से यात्रा करने वाले क्षेत्र बने।
1: सन 1942 में आज ही के दिन प्रसिद्ध यहूदी लड़की एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया, जो बाद में इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी।
0: सन 1982 में अर्जेंटीना की सेना ने यूनाइटेड किंगडम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके साथ ही फॉकलैंड युद्ध की समाप्ति हुई।
1: सन 1949 में आज ही के दिन अल्बर्ट द्वितीय नाम का रीसस बंदर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला दुनिया का पहला बंदर बना।
0: सन 1999 में थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और सन 2004 में पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। और आज ही के दिन सन 2007 में चीन के गोबी रेगिस्तान में पक्षी नुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म भी मिले।
1: सन 2008 में 14 जून को ही केंद्र सरकार ने अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया। सन 2008 में ही राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मेट्रिक टन की सोने की खान का पता चला।
0: बातें अभी और भी होंगी, लेकिन उन बातों से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: آج ہی کے دن کچھ مشہور شخصیتوں نے اس دنیا کو الوداع بھی کہا، جن میں سن 1961 عیسوی میں پرسدھ بھارتیہ بھوتک ویگیانک کاریمانی وکم شری نواس کرشنن کا ندھن ہوا۔
1: के एस कृष्णन भारतीय परमाणु आयोग एवं भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संचालक मंडल के सदस्य थे। सीवी रमण के साथ रमण प्रभाव की खोज में के एस कृष्णन का भी योगदान था।
0: सन 1920 में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और इतिहासकार मैक्स वेबर ने अंतिम सांसें ली थी आज के दिन। वेबर के विचारों ने गहराई से सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक अनुसंधान को प्रभावित किया।
1: सन 2007 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कुर्ते वॉल्ट हाशिम का भी निधन हुआ था। वे ऑस्ट्रेलिया के जाने माने राजनेता थे। एक जासूस ऑफिसर के रूप में इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दी थी।
0: सन 2011 में असद अली खान ने इस दुनिया को अलविदा कहा। असद अली खान को रुद्रवीणा वादक के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। असद अली खां आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। इन्हें वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान और वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है।
1: सन 2020 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का मात्र 34 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने कायपोचे फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई।
0: सन 2016 में आई प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी।
1: शुद्ध देसी रोमांस डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी फिल्मों में सुशांत सिंह राजपूत ने अविस्मरणीय अभिनय किया और अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: सुप्रता, कहते हैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन इस मुस्कान के साथ किसी को नया जीवन मिल जाए तो उससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा है शिल्पी आपने। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे दान की जो न केवल किसी की सांसों को बचाता है बल्कि मानवता को भी मजबूत बनाता है, और ये दान है रक्तदान।
0: जी हाँ, आज यानी 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं।
1: इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 1977 में की गई थी। रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। श्रोताओं,
0: कल्पना कीजिए किसी अस्पताल में एक मरीज जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो, किसी

0: घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत रक्त की आवश्यकता हो, किसी माँ को प्रसव के दौरान रक्त चढ़ाने की आवश्यकता हो या किसी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को रक्त की आवश्यकता हो,
1: ऐसे समय में रक्त की एक यूनिट केवल रक्त नहीं होती बल्कि उम्मीद, विश्वास और जीवन का संदेश होती है। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसमें दाता का कुछ घटता नहीं, लेकिन किसी जरूरतमंद को जीवन जरूर मिल जाता है।
0: आज भी समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां मौजूद हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान से कमजोरी आ जाती है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है,
1: लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं शिल्पी कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा निर्धारित अंतराल पर किया गया रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित होता है। शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा भी कर लेता है, इसलिए डर नहीं, जागरूकता जरूरी है।
0: बिल्कुल, और विश्व रक्तदाता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि रक्त की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पड़ सकती है। आज अगर किसी और को जरूरत है तो कल शायद हमें या हमारे अपनों को हो।
1: तो आइए श्रोताओं, इस विश्व रक्तदाता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि जब भी अवसर मिले हम रक्तदान के महत्व को समझेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे और जरूरत पड़ने पर रक्तदान के लिए आगे भी आएंगे, क्योंकि रक्त की हर एक बूंद में जीवन की धड़कन बसती है और रक्तदान के हर पहल में मानवता मुस्कुराती है।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें मौसम के मिजाज की। तो हम सबने महसूस किया है कि पिछले कुछ एक दिनों की बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट तो आई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। सुप्रीता,
1: बिल्कुल, और आज भी हमारी रांची और आसपास आसमान में बादल छाए रहेंगे शिल्पी जी, और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारे पड़ने की पूरी संभावना है।
0: और अगर बातें करें आज के तापमान की सुप्रीता, तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी रहेंगी, इसलिए कई राज्यों समेत झारखंड में भी मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की संभावना जताई है।
0: इसलिए आज अगर कहीं घूमने की प्लानिंग है तो छतरी जरूर साथ रखें, क्योंकि रांची के मौसम का क्या पता, यहाँ कभी धूप मुस्कुराती है तो कभी बादल बिना बताए मेहमान बनकर आ जाते हैं।
1: जो भी हो, हमारे शहर की फिजाओं में इन दिनों मानसून की दस्तक ने मौसम को बहुत सुहावना कर दिया और दिल बहार ऐसा हो गया है।

0: और अब बातें हमारे देश की अद्भुत संस्कृति की। तो आज आपसे साझा करेंगे नीलगिरी पहाड़ियों की महकती हवाओं के बीच स्थित पहाड़ों की रानी ऊटी में मनाए जाने वाले ऊटी फ्लावर फेस्टिवल की बातें।
1: ये प्रतिष्ठित महोत्सव इन्हीं दिनों मनाया जाता है शिल्पी। इस महोत्सव में ऐसे कई सांस्कृतिक प्रदर्शन और शोज होते हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है।
0: ये रंग बिरंगा उत्सव प्रकृति की बेहतरीन कृतियों का अद्भुत प्रदर्शन है जो कि बॉटनिकल गार्डन में किया जाता है।
1: ऊटी फ्लावर फेस्टिवल की शुरुआत सन 1896 में हुई थी। इसमें लगभग 250 प्रदर्शकों द्वारा प्रदर्शित 150 से भी ज्यादा किस्मों के फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से सबका मन मोह लेते हैं।
0: साथ ही फेस्टिवल के दौरान होने वाले म्यूजिक और डांस इस फेस्टिवल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी ये एक गोल्डन चांस है,
1: जहां इन नाजुक पंखुड़ियों के चटक रंगों की दीदार करने के साथ साथ इनकी शानदार तस्वीरें भी क्लिक की जा सकती है।
0: तो आप चाहे बागवानी के शौकीन हो, फोटोग्राफी के शौकीन हो, या फिर प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती में डूब जाना चाहते हो, ये वार्षिक उत्सव ऊटी के लुभावने नजारों के बीच एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है।
1: क्योंकि यहाँ है सिर्फ खूबसूरत फूलों की बातें जो हर मौसम में जीवंतता और खुशियां भर देते हैं।

0: आपसे अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, आप में से कुछ लोग ऐतिहासिक स्थल पर घूमना पसंद करते हैं तो कुछ आध्यात्मिक। लेकिन हम आपसे कहें कि इतिहास और अध्यात्म दोनों का संगम आपको एक ही स्थान पर मिल जाए तो?
1: और हमारे देश में एक ऐसा ही पर्यटन स्थल भी है शिल्पी जी, पंजाब राज्य का मनमोहक शहर अमृतसर। अमृतसर जिसका अर्थ है अमृत का सरोवर या अमरता का तालाब, जो कि सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के द्वारा बनवाया गया था,
0: और उसी सरोवर के नाम पर शहर का नाम अमृतसर रखा गया। इस शहर को भारत सरकार के हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना कार्यक्रम के लिए विरासत शहरों में से एक के रूप में चुना गया है।
1: अमृतसर का प्रसिद्ध और भव्य स्वर्ण मंदिर यह श्री हरमंदिर साहिब विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए और मत्था टेकने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु सिख और दूसरे पर्यटक भी आते हैं।
0: इस शहर का जालियांवाला बाग अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है, तो दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर आयोजित होने वाले मंत्र मुग्ध कर देने वाले वाघा अटारी बॉर्डर समारोह आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भर देंगे।
1: यहाँ घूमने के लिए कुछ दूसरे भी आकर्षण केंद्र हैं, मसलन अकाल तख्त, दुर्गियाना मंदिर, विभाजन संग्रहालय, गोविंदगढ़ किला, केंद्रीय सिख संग्रहालय, युद्ध स्मारक और संग्रहालय, और गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब।
0: यहाँ के भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम माना जाता है। रामायण के अनुसार माता सीता ने राम तीर्थ आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था।
1: इनके अलावा अमृतसर के पंजाबी व्यंजन आपका दिल जीत लेंगे, स्ट्रीट फूड यहाँ की लस्सी, और सबसे अद्भुत अनुभव यहाँ के स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा का आनंद लेना है।
0: क्या बात है सुब्रता, और जब यहाँ आप जाएं तो यहाँ की खास कलाकृति फुलकारी के कपड़े जरूर खरीदें, सूट साड़ियाँ और बेहतरीन दुपट्टे आपका मन मोह लेंगे। तो अगर आपको भी खरीदारी, जायका, इतिहास और धार्मिक स्थल का आनंद एक ही पैकेज में चाहिए तो चल पड़िए अमृतसर।

0: और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि जब किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान जरूर दें। यही वो चीज है जो देने वाले के लिए सबसे बड़ा धन और पाने वाले के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है।
1: तो क्यों ना हम सब भी प्रेम और खुशियां बांटे ताकि हमसे जुड़ने वाला हर शख्स हमें भुला ना पाए। वैसे यकीन मानिए श्रोताओं, हम तो आपको कभी नहीं भुलाएंगे। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समेटते हैं आज के जोहार राज्य के पन्नों को और कहते हैं जोहार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहले आपको हम सुनवा रहे हैं अनवर सागर का लिखा गीत अलका याग्निक अभिजीत भट्टाचार्य की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है खिलाड़ी। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां और वसीम नूरजहां।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: आपकी पसंद कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की, और इन्होंने सुनना चाहा है आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है शिव हरी ने और फिल्म का नाम है डर।

1, 2 का 4 ये है फिल्म का नाम और आइए सुनते हैं इस फिल्म से लता मंगेशकर और सोनू निगम को। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और धुन बनाई है A.R. रहमान ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा।

अगली फरमाइश हमने ली है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर की। इन्होंने सुनना चाहा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण को। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अगली फरमाइश हमने ली है गोला बाजार बक्सर से। श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की, और इन्होंने सुनना चाहा है राहत फतेह अली खान को पाप फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

राहत फतेह अली खान के गाए इस गीत के साथ ही हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। कार्यक्रम को लेकर आज हमारे साथ हैं माहिज़बीन और खुशबू।

0: नए विचारों से खुद को सजाएं, अच्छे कर्मों से पहचान बनाएं, दुनिया में रोशनी फैलाते जाएं, हर दिल में उम्मीद जगाते जाएं। इन्हीं सकारात्मक सोच के साथ सखियों आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी खुशबू, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
1: और नमस्कार सखियों, मैं महजबीन आपकी रेडियो सखी। और वैसे खुशबू, तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सकारात्मक सोच की शक्ति अपनाते हैं, हम हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं और मन में विश्वास और प्यार रखते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से सज जाता है।
0: बिल्कुल, और सखियों यही हमारे जीवन जीने का आधार भी होना चाहिए। हम ये कोशिश करें कि हम अपने जीवन में दूसरों को कुछ ऐसा दें जो उनके जीवन की मुस्कान बन जाए, और यदि वह रक्तदान हो तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए तो रक्तदान को महादान भी कहा जाता है।
1: और इस महादान से बड़ा कोई दान नहीं होता सखियों। रक्तदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है।
0: और सखियों, रक्त या खून का कोई कृत्रिम या आर्टिफिशियल विकल्प नहीं होता, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर केवल किसी द्वारा दिए गए रक्त या खून से ही दूसरे व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि रक्त दान है तो जीवन दान होता है।
1: हाँ सखियों, दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन या प्रसव के समय कई लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है, और मुश्किल तो यही होती है कि अगर रक्त समय पर ना मिले तो बहुत दिक्कत होती है। इस घड़ी में मरीज को किसी दूसरे व्यक्ति से रक्त मिलता है तो उसका जीवन बच जाता है। सखियों, एक यूनिट खून कई लोगों के इलाज में सहायता पहुंचाता है।
0: और रक्त का निर्माण है ना सखियों, किसी फैक्ट्री या प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, और इसका एकमात्र स्रोत स्वस्थ मनुष्य ही हैं। सखियों, ईश्वर की इस अमूल्य देन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, या यूं कहें कि शरीर के अंदर ही इसका निर्माण होता है। ये अपने आप हमारे खान पान से, यानी कि संतुलित भोजन से बनती है, और कोई भी दूसरे तरीके से हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए सखियों, हमें इसका दान ज़रूर करना चाहिए। और सखियों, इसका एक फ़ायदा खून देने वाले या रक्तदान करने वाले व्यक्ति को भी होता है, क्योंकि रक्तदान के पहले हमारे स्वास्थ्य की नियमित जांच होती है, और एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 3 महीनों के अंतराल पर सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है।
1: बिल्कुल सही खुशबू, तुमने सही कहा, एक स्वस्थ व्यक्ति ही समय समय पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से समाज में सहयोग और मानवता की भावना भी पनपती है। सखियों, रक्त मानव जो शरीर है वो
0: वह व्यवस्था है
1: जो शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन, पोषक तत्व एवं आवश्यक पदार्थ भी पहुंचाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त के बिना खून का
0: या खून के बिना
1: जो खून की कमी है या खून की कल्पना है उसे हम नहीं कर सकते, यानी कि ये रक्त मानव शरीर से ही हमें मिल सकता है, ये वहाँ उपलब्ध है,
0: और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तो कहा जाता है कि रक्तदान एक पुण्य का काम है, हमें रक्तदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। एक छोटी सी पहल किसी के जीवन में नई आशा और खुशियां ला सकती है। इसलिए तो कहा जाता है ना, रक्तदान है तो जीवन दान है।
1: बिल्कुल बहनों, अब समय है आपको हम ले चलते हैं मनोरंजन की ओर, और सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: तस्वीर।
1: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
2: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
1: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
2: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
1: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
2: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बहनों, आपका फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में, और हमें अब खुशबू ले चलती हैं कार्यक्रम में आगे।
9: बिल्कुल सखियों, अब हम आपको सुनाएंगे एक भेंट वार्ता। और आज जैसा कि आप सभी जानती हैं, आज है विश्व रक्तदाता दिवस, तो आज का विषय है रक्तदान करते समय सावधानियां और भ्रांतियां। और इस पर हमें जानकारी दे रही हैं उमा सिन्हा जी, जो कि एक सेवानिवृत्त बाल सेवा पदाधिकारी हैं। तो उनसे बातें हो रही हैं मैजबीन की, क्योंकि रक्तदान एक महान और मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ काम है, और इसके माध्यम से अनेक जरूरतमंदों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन समाज में रक्तदान को लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं, जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय पर बातें हो रही हैं, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
10: बहनों, रक्तदान एक महादान है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। ये 18 से 65 वर्ष के किसी भी व्यक्ति जो अपना रक्तदान कर सकते हैं। बहुत सारी खूबियां हैं रक्तदान करने में, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो हमने आज अपने मेहमान को आमंत्रित किया है, मिलिए आज की मेहमान से। आज की हमारी मेहमान है उमा सिन्हा, सेवानिवृत्त बाल सेवा पदाधिकारी, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा झारखंड सरकार। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
11: नमस्कार महाजवी जी, जोहार, जय झारखंड। आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए मैं आपके सारे लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ।
10: हमारी बहनों और हमारी सभी सुनने वाले श्रोताओं को ये बताएं कि रक्तदान के बारे में, कि रक्तदान कौन कौन कर सकता है, इसके लिए क्या क्या होनी आवश्यक है, किस तरह से वो रक्तदान कर सकते हैं।
11: रक्तदान, जैसा कि आपने बताया कि रक्तदान महादान है, रक्तदान करके हम सिर्फ अपना ही हित नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे की जान भी बचाते हैं। इसलिए ये रक्तदान अपने आप में बहुत बड़ा दान है, और ये आज की जरूरत है। हर किसी को, हर उम्र के 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के हर महिला पुरुष जिनका हेमोग्लोबिन 12.5 है, वो स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष हर महीने कर सकते हैं, महिलाएं 3 महीने के बाद कर सकती हैं।
10: जी,
11: रक्तदान करना में बहुत लोगों को डर लगता है, लोग डरते हैं कि रक्तदान करने से हमें किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, रक्तदान करने का, रक्त लेने का अपना प्रोटोकॉल है, क्राइटेरिया है। हर किसी का हठात ब्लड नहीं लिया जा सकता है। ब्लड, आपका ब्लड लेने के पहले, किसी का भी खून लेने के पहले उसकी व्यापक जांच होती है। एक तो उनका हेमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, दूसरे कि उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि वो शुगर के पेशेंट या BP, जो कि आजकल बिल्कुल ही सामान्य बीमारी है और जिससे लगभग लगभग 65% अभी लोग

0: फायदेमंद होता है, हर लोगों को करनी चाहिए रक्तदान, और इससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है। तो मैम, रक्तदान करने से जो सेहत में और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में बता सकते?
1: रक्तदान करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, एक तो हम दूसरे का भला करते हैं, और दूसरे हमारे शरीर में निरंतर हमारे भोजन के द्वारा हर दिन कुछ न कुछ रक्त बनता रहता है, महीने में रक्त बनता रहता है। तो अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारा सेहत तंदुरुस्त रहता है। किसी तरह की, जैसे अगर रेगुलर, जो लोग रेगुलर ना भी साल भर में एक बार भी रक्तदान करें तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत कम जाती है। उसी तरह रक्त हमारे शरीर में स्वयं निर्मित होते रहता है, तो वो ऐसे बर्बाद ना हो, ऐसे शरीर से जाया ना हो, तो उससे अच्छा है कि हम रक्तदान करें, ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें, कि जिस जिसको इमरजेंसी में जरूरत है, जिनको ऑपरेशन में, डिलीवरी में, किसी भी तरह का ऑपरेशन सीजर होने पर, या किसी भी तरह का डिफिशियंसी, अगर किसी को ब्लड नहीं है और वो ट्रीटमेंट के लिए गया है, पता चला कि इसके बॉडी में हीमोग्लोबिन ब्लड है ही नहीं है, इसको चढ़ाना है, तो अगर हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड देते रहते हैं तो ब्लड उनको चढ़ाना, वहां से उपलब्ध कराना आसान होता है। अन्यथा लोग खून, हीमोग्लोबिन के अभाव में, ब्लड के अभाव में बहुत लोग जान गंवा देते हैं, खास करके एक्सीडेंटल केस में या डिलीवरी के केस में ज्यादातर खून की कमी से मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम रक्तदान करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता रहता है, तो इससे हम बहुत लोगों का जान बचा सकते हैं और ये हमारे शरीर के लिए भी फायदे
0: रक्तदान से, यानी कि कहा जाए तो बहुत सारे हैं। किसी की जान सबसे बड़ी बात है कि आप जान बचा रहे हैं और आप स्वस्थ भी रह रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो मैम, एक मिथ्य भी है कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो जो खून शरीर से निकल जाता है तो उसकी कमी होती है, लोग कहते चक्कर आता है, बहुत सारी बातें हैं कि उन्हें वहम हो जाता है कि मैंने रक्तदान किया है तो मुझे कमजोरी ज्यादा आने लगी है, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है। रक्तदान करने के पहले कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे रक्तदान करने में ब्लड आपके बॉडी से बोतल में जाने या कहीं निकलने तक में 8 से 12 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में ही ब्लड निकाला जा सकता है। आपके शरीर से डॉक्टर या ब्लड लेने वाले अनावश्यक ब्लड आपके बॉडी से नहीं निकाल सकते। आपके बॉडी में 12.5 ग्राम में हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है। तो होता क्या है कि इसके प्रोसेस में कुछ रजिस्ट्रेशन से लेकर के कुछ जांच और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाता है, लगभग 1 घंटा लग जाता है, 45 मिनट। ब्लड देने में तो मुश्किल से 8 से 12 मिनट लग। उसमें होता क्या है कि बहुत लोग पहले से, जो लोग पहली बार रक्तदान कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा, अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है या पहली बार कर रहे हैं, तो उनको एक साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उनके अंदर आ जाता है कि हम ब्लड देने जा रहे हैं तो कहीं हम कमजोर ना हो जाएं। तो अगर मान लीजिए कि ब्लड देने के समय में अगर आपको चक्कर आ रहा है, तो ब्लड लेने वाले तुरंत स्टॉप कर देंगे, वो आपका ब्लड नहीं लेंगे अगर आपको चक्कर आ रहा है। और ब्लड देने के बाद जहां से ब्लड निकाला जाता है वहां पे एक स्टिकर लगाया जाता है, और कुछ उस समय डायरेक्शन दिए जाते हैं कि हाथ को अपवर्ड रखना है, ऊपर करके रखना है, 15 से 20 मिनट लेटना होता है, उसके बाद कुछ हल्का नाश्ता कीजिए या कुछ न्यूट्री से चीज भी ले सकते हैं। बहुत लोग बहुत जल्दी में छेना लेना पसंद करते हैं या दिया जाता है कि जो शुगर है उसका, वो ब्लड में जाके तुरंत ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड देने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या आप बीमार पड़ जाएंगे या आप कमजोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्लड देने के बाद आपको 15 से 20 मिनट लेटना है, आराम करना है, हल्का नाश्ता लेना है, आप छेना ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, जो आपका पसंदीदा चीज है। बट उसमें एक ही ख्याल रखना है कि आप अल्कोहल नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड डोनेट करने के बाद आप चाहेंगे कि हम अल्कोहल ले लें, तो ये नहीं लेना है। الکوہل نہیں.

0: लेना है। और अगले 24 घंटे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि आप कोई भारी सामान ना उठाएं, बहुत हेवी सामान ना उठाएं, आप हार्ड जिम वाला हार्ड एक्सरसाइज ना करें। वो 24 घंटे की थोड़ी सी सावधानी है जिससे आपको 24 घंटे में फिर आपके बॉडी में वो ब्लड रिफॉर्म बन जाता है, वो फिर से बन जाता है और आप नॉर्मल रहते हैं, किसी तरह का कमजोरी या किसी तरह का हानि नहीं होता है।
1: और मैम, रक्तदान के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगी जिससे कि लोग आगे आए, जागरूक हों और इस ओर ध्यान दे कि रक्तदान भी दे करना बहुत जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी की जान बचा सकते हैं क्योंकि रक्त का जो प्रोसेस है, यानी जो रक्त बनने का प्रोसेस है, सिर्फ एक इंसान के शरीर में ही बनता है और इंसान ही उसे दान कर सकता है। तो
0: बिल्कुल, अभी तक हम दुनिया इतना आगे बढ़ गई है लेकिन अभी तक साइंटिस्ट किसी लेबोरेटरी में खून नहीं बना पाए। खून मनुष्य के शरीर में ही बनता है और मनुष्य ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो रक्तदान करने में सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्वस्थ मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिसको कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बात है जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेट करना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सस्ता करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं या समाज सेवा करते हैं, बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, उसी तरह से इन सारे चीजों में ये जो रक्तदान है वो बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि रक्त के अभाव में बहुत जाने जाती हैं, जितना ब्लड बैंक में ब्लड होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए ब्लड बैंक में देखिएगा कि गवर्नमेंट वाला जितना ब्लड बैंक है, चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल हो, सदर अस्पताल का, या रिम्स के पास 2-3 एनजीओ रक्तदान भी है, वहां पे एक नियम है कि आपको ब्लड चाहिए तो ब्लड ले जाइए, लेकिन इसके बदले आपको जितना यूनिट ब्लड आप ले जा रहे हैं इतना यूनिट ब्लड आप दे कर जाइए, व्यवस्था करके जाइए, पैसे के बदले ब्लड नहीं दिया जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पैसा लेकर के आपको जितना यूनिट ब्लड चाहिए वो कोई खरीद लेगा। ब्लड तभी आ सकता है ब्लड बैंक में जब हम ब्लड डोनेट करेंगे, और जब हम रक्त का ब्लड का दान नहीं करेंगे तो आखिर जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा। और ये एक ऐसा डिमांड है जो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही दे सकता है। इसमें भी बहुत विस्तृत अगर हम लोग जाएंगे तो ब्लड का जो ग्रुप है, कौन किसको दे सकता है, कौन ऑलवेज डोनर है, कौन नहीं है, ये सब बातें बहुत विस्तृत। और जो आदमी ब्लड बैंक में या कहां कहीं भी जहां भी ब्लड डोनेट इकट्ठा किया जा रहा है, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो सुरक्षित तरीके से निकाल करके संबंधित ब्लड बैंक में जमा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसी ग्रुप के व्यक्ति को, उसी ग्रुप के पेशेंट को वो ब्लड दिया जाता है। तो ये सबसे समझने वाली बात ये है कि ये जैसे फसल सिर्फ जमीन में उगाया जा सकता है, धान सिर्फ जमीन में उगाया जा सकता है जिससे हम पेट भरते हैं, उसी तरह ये जो खून है, जो ब्लड है, ये सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही बन सकता है। किसी जानवर का खून किसी मनुष्य को नहीं चढ़ाया जा सकता है, जब इंसान का ही खून पर चढ़ाया जा सकता है। इसलिए किसी भी पूजा, किसी भी इबादत, किसी भी यज्ञ, किसी भी हवन, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, किसी भी तरह की अन्य बातों से कहीं महान और बड़ी बात है रक्तदान करना, क्योंकि जब हम रक्तदान करते हैं तो उससे किसी न किसी की जान बचाई जाती है।
1: हम आपको जानकारी दे रहे थे कि रक्तदान महादान है, इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है और इस रक्तदान महादान का आप भी हिस्सा बनिए। बहनों, अभी हमें जानकारी दे रही थी उमा सिन्हा, सेवानिवृत्त बाल सेवा पदाधिकारी, महिला बाल एवं सामाजिक सुरक्षा झारखंड। तो मैम आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया महजीवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वाली हमारे भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिन्हें जब मौका मिले, जब वो महसूस करें कि हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे समाज का भला हो, तो सबसे पहले रक्तदान करने की कृपा करें, कोशिश करें, ताकि हम मनुष्यों के जिंदा रहते कोई दूसरा मनुष्य मर न जाए, उसकी जान हम बचा सकें। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सखियो, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता और विषय था रक्तदान करते समय सावधानियां और भ्रांतियां। और आज की मेहमान थी उमा सिन्हा जी, जो कि सेवानिवृत्त बाल सेवा पदाधिकारी एवं महिला बाल सामाजिक सुरक्षा के पद पर थी। और उनसे बातें हो रही थी मैजबीन की। मैजबीन, अब आगे कार्यक्रम में क्या है?
3: हम अब जानकारी देंगे अपनी बहनों को कि प्रकृति की अद्भुत रचना मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के प्रकृति की सबसे अद्भुत और जटिल रचनाओं में से एक है। यही वो अंग है जो मनुष्य को सोचने, समझने, याद रखने, निर्णय लेने और नई नई खोजें, जो खोज होती है ना, इसी की क्षमता प्रदान करता है। मस्तिष्क के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है।
2: बिल्कुल। और मानव मस्तिष्क है अरबों तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बना होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। यह हमारी भावनाओं, कल्पनाओं, यादों, भाषा और व्यवहार का केंद्र है। मस्तिष्क की सहायता से मनुष्य विज्ञान, कला, साहित्य और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। मस्तिष्क हमारे जीवन का या शरीर का नियंत्रण केंद्र भी है और इसके बिना शरीर का कोई भी अंग सुचारू रूप से काम नहीं करता है। सखियो, आप भी ने भी कभी कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन उसे याद करने में हमारी मदद हमारा मस्तिष्क ही करता है। और शिक्षा, ज्ञान, तर्क शक्ति, रचनात्मकता का विकास भी मस्तिष्क के कारण ही होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन का आधार होता है ना मजबीन?
3: बहनों, इसीलिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और योग, ध्यान तथा सकारात्मक सोच मस्तिष्क को स्वरूप जो इसका जो स्वरूप है ना, उसको सक्रिय बनाए रखते हैं
2: और उसे स्वस्थ भी बनाते हैं।
3: स्वस्थ भी बनाते हैं। तनाव और नशीली पदार्थों से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीधा दिमाग पर भी असर करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो इस पर हम कह सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है कि हम बहुत सारी जानकारी मस्तिष्क पर दे।
2: बिल्कुल।
3: तो ये खुशबू, जैसे कि हम अभी बातें कर रहे थे कि मानव मस्तिष्क प्रकृति का अनुपम उपहार है, तो इसकी अद्भुत क्षमता के कारण ही मनुष्य ने असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी संभव बनाया। यानी कि जो भी आज हम आविष्कार देख रहे हैं, जो भी जितनी सारी डेवलपमेंट हमने देखी है अपने दुनिया में, जितनी भी सारी चीजें रही, तो ये कहाँ की देन है? ये हमारे मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी देन है।
2: बिल्कुल, ये हमारे दिमाग की ही देन है और इसलिए हमें अपने मस्तिष्क का सदुपयोग करना चाहिए और इसे स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दिमाग को जितना खर्च करेंगे उतना दिमाग तेज होता है। वास्तव में मानव मस्तिष्क प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है ना?
3: और बहनों, इसलिए अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अपने बच्चों का जो ख्याल है वो खान पान में ज़्यादा अच्छा रखें, उनको सही भोजन दें, संतुलित भोजन दें, ताकि वो एक अच्छे दिमाग और अच्छी तेज वाले बच्चे हों। तो बहनों, अब समय है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें महजबीन
2: और खुशबू को इजाज़त। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की।
3: नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी। अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विद्यापति संगीत। कलाकार हैं गणेश मिश्रा और साथी।

भारत भारती कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 12:45 होने को है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, वो हर कहीं मिल जाता है। कोई आए न आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार, दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए। हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में, हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सके। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।

एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला, वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे युद्ध की समझ है, और जिससे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया। और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था। जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वे देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था। देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते,
प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है, और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है, और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया और देव से कहा कि उसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे, और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था। तब उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ये समाचार गया। देव टूट गया, उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

0: हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now, alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridi and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected areas of the country. Based on the ED complaint, Bengaluru's Kothanur police registered the case on June 11 under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Unlawful Activities Prevention Act. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatnatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatnatyam dance lesson. The event, organized by Sangamam Global Academy India and Sangamese Lia Sri Lanka, was held at Gale Phase Green in Colombo and brought together thousands of dancers from Sri Lanka, India and several other countries. The event aimed to showcase the timeless tradition of Bharatnatyam while fostering cultural ties across borders. India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to the IMD, conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into some more parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, additional parts of Odisha and parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped 2 clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. And that is the end of this news bulletin.
0: हम
3: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा। रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज। 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे। शहीद जवानों को किया जा रहा याद। दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन। 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रम के तहत पदयात्रा, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण जैसे जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज रांची पहुंचे। उन्होंने तेतर टोली तालाब के समीप आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने तालाब परिसर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कई अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर सेवा दे रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प दोहराया। कहा कि इसके लिए योजनाओं को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, इसमें जन सहभागिता रहेगी।
5: ये वर्षों के अथक परिश्रम का प्रश्न है और ये सरकार की मनोदशा को चिन्हित करने वाली बात है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जन आंदोलन के रूप में, जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है।
4: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है। इधर सिमडेगा में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर सामद ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रक्तदान महादान का संदेश देते हुए समाज को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।
6: आज विश्व रक्तदाता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाई जाती है और खास करके हमारे जो रक्तदाता हैं, जो कि रक्तवीर हैं, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से ये रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। रक्त केंद्र सिमडेगा में इसमें जितने रक्तदाता हमारे सिमडेगा जिले में हैं, उन लोग हम लोग सम्मानित करेंगे।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह आयुष निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को जन आंदोलन बनाने के लिए 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम होंगे। स्कूल, कॉलेज, पार्क, वृद्धाश्रम, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगा अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, पुलिस, एनसीसी कैडेट, आंगनबाड़ी सेविकाएं और आम नागरिक शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: कर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 जून 2019 को कुकुडू हाट में परिसर में नक्सली हमले में एक एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे।
1: नक्सलियों के द्वारा हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए थे। हम लोग दिवस शहीद सम्मान मनाते हैं, जिनमें उनके आश्रितों को हम कुछ सम्मान टोकन स्वरूप देते हैं और इस दिन को याद करते हैं, हमारी स्मृति में रखते हैं, ताकि हमारी आज के और भविष्य के भी जो पुलिस की जो पीढ़ियां हैं वो इनकी कुर्बानी को याद रखे।
0: जमशेदपुर में टाटा स्टील की सुरक्षा टीम ने एक बड़ी चोरी की घटना को विफल करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तांबे की केबल बरामद की गई है, जिसे कथित तौर पर प्लांट परिसर से चोरी कर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। धनबाद जिले में किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। बलियापुर क्षेत्र में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में उर्वरक, बीज और कीटनाशी दुकानों की जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। बिना लाइसेंस चल रही उर्वरक बीज दुकान को कृषि विभाग ने सील किया।
2: मामला सिर्फ इतना है कि जो न्यू दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से कीटनाशी है वो पाया गया है। इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं थी, साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उस व्यवस्था को देखते हुए जो में इनको स्पष्टीकरण, और चूंकि अवैध रूप से ह्यूज अमाउंट में पेस्टिसाइड है जो जहर है और एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, बड़ी मात्रा में पाया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ जिला स्थित सिद्धू कानू मैदान में 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आईजी ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाता है।
3: झारखंड पुलिस का हर साल इवेंट होता है, उसी के अंतर्गत इस बार ये रामगढ़ जिला में हो रहा है। सभी 5 जिला से प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई प्रकार की इवेंट है इसमें। हाँ, ये पुलिस में एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर कि सबसे पहले रेंज लेवल पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें कि सभी जिले पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उनकी रेंज की एक टीम बनेगी जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी।
0: झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में सरायकेला खरसावा में 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा, रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज, 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे, शहीद जवानों को किया जा रहा याद, दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन, 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:21 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ठुमरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी। कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं

0: जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की गाए चंद गीत।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना

0: एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक के गाए गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
1: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की।

0: ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोड़ी पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम

चाहे ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पानीपत फिल्म से कुणाल गांजावाला, दीपांशी नागर और पद्मनाभ गायकवाड़ की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत दिया है अजय अतुल ने।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं नुसरत बद्र का लिखा गीत शान की आवाज में। इस गीत की धुन दी है मोंटी शर्मा ने और फिल्म का नाम है सांवरिया।

0: आइए अब सुनते हैं रजत अरोड़ा का लिखा गीत जावेद बशीर की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा।
1: सुने वो जला है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

आइए सुनते हैं वरुण ग्रोवर का लिखा गीत पेपॉन और रोंकिनी गुप्ता की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है सुई धागा।

आइए अब सुनते हैं पद्मावत फिल्म से नीति मोहन को। इस गीत के बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और धुन बनाई है संजय लीला भंसाली ने।

0: नीति मोहन के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। रांची में 16 जून से शुरू होने वाले झारखंड कृषि व्यापार मेला की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश में कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मेला आयोजन को सार्थक प्रयास बताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य के दौरे पर है। वे रांची में आज कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के अदम्य साहस की सराहना की। श्री राय ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अर्ध सैन्य बलों का योगदान अद्वितीय है। मौके पर सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक पेड़ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही रांची के ओरमांझी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित किया। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबले की बिसात बिछ चुकी है। अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के वैतरणी पार करने की कवायद में जुटे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही जीत को लेकर आशान्वित हैं। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा संख्याबल और समीकरण को लेकर सक्रिय है। पार्टी के प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक भी आज रांची पहुंच रहे हैं। परिमल नाथवानी भी फिलहाल रांची में समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद में हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज रांची स्थित योगदा आश्रम में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर आश्रम के स्वामी

0: ईश्वरानंद गिरी ने लोगों को ध्यान और योग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है।
1: मानव के जो तीन पहलू हैं, मानव का एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, इन तीनों पहलुओं का एक सामंजस्यपूर्ण विकास करने की विधि हम लोग सिखाते हैं। हमारे पास शक्ति संचार व्यायाम है जिनके अभ्यास से शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहता है। इस साल भी हमारे सभी जो ध्यान केंद्र हैं पूरे भारत में 250 से लेकर 300 ध्यान केंद्र ध्यान मंडलियां हैं, तो उन सब में विशेष कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार जैसे आज हुआ है
0: विश्व रक्तदान दिवस पर आज राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भी इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रक्तदाताओं ने रक्तदान के लिए प्रेरित किया।
2: मैं फर्स्ट टाइम अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ब्लड डोनेट हर एक को करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से आदमी स्वस्थ रहता है और दूसरा का भी भलाई होता है। जिसको खून का नीड होता है वो पूरा होता है, एक तरह से समाज सेवा है और अपना भी शरीर का इसमें शुद्धि होता है। आप आइए डोनेट कीजिए, बढ़ चढ़ के ये रक्तदान शिविर में हिस्सा लीजिए।
0: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम का चयन ट्रायल 22 जून को रांची में होगा। ट्रायल सुबह 9 बजे से मोरहाबादी स्थित मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा, जिसमें 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को आधार कार्ड, हॉकी इंडिया आईडी कार्ड और नगर निगम या पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, वरना चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: संगठनों स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आक्रोश फिल्म का गीत अनुपम अमोद की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज आने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन, हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूं वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में

0: एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का, फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहानात पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रहीं। लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रहीं। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट चुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
1: जी,
0: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे। और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे। यानी कि एक तालबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था। अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर MS वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर AN धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए MPhil और PhD में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से MPhil भी किया, PhD भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया, और जब मैं इंग्लिश में मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजात मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह, मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा। लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा।
1: प्रोफेसर शौक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय ह्यूमन बीइंग, वेयर फ्रॉम दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन हैज ओरिजिनेटेड? तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन व्हेन आई थिंक हाउ डिड आई राइट एंड व्हाई डिड आई राइट। इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness. Jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna vagera aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्वड है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है। फॉर इंस्टेंस फॉर मी, वेदर आई राइट इन इंग्लिश और कश्मीरी और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट आई एम इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग। आई एम द फर्स्ट रीडर ऑफ माई राइटिंग, answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नवीस को ये देखना है कि इज इट सेटिस्फाइंग द क्रिएटर्स ओन इंस्टिंक्ट टू क्रिएट और नॉट। इफ इट डज नॉट, देन इट नीड नॉट बी मेड पब्लिक।
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि एज ए राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग

0: अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें, दुनिया के सबसे अजीम, बस मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है। सब उसका नाम जानते हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम
1: विलियम शेक्सपियर को उनके नाम को नहीं जानते।
0: उसके काम को कौन पढ़ा है? बहुत सारे लोग, उसके इतने दर्जनों ड्रामाज हैं, उनको किसने पढ़ा है? किसी एक ने एक प्ले पढ़ा, किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, किसी ने एक का सीन पढ़ा, कुछ डायलॉग्स याद किए, इतना ही मिल गया उसको। और शेक्सपियर को खुद क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा एज राइटर? आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूँ, किसी जगह रहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूँ, फिर अपने मुल्क में रहता हूँ, अपने रियासत में रहता हूँ, और इस दुनिया में रहता हूँ, 21वीं सदी में रहता हूँ। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ, रिश्ता है वही रिश्ता। उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपनी एगनीज और अपनी पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एगनी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जाने 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे? वो सब के सब इस जहाँ पानी से चले गए हैं। तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें, वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे। कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़्म पूरी मिलेगी तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज? आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ऑल्सो, विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाई फाई साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं, या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे, वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, जरूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अ लॉट। क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे, उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली
0: इसी तरह लिटरेचर में भी, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम से कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर्स की बात न करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम से कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी,

0: लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है।
1: प्रोफेसर अशोक साहब, द अमाउंट ऑफ टाइम कैन से द आवर्स मंथ्स लाइफ यू हैव स्पेंट ऑन राइटिंग्स इन एकेडमिक्स, हाउ द पीपल अराउंड यू, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड हु आर एसोसिएटेड विद यू, यू वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनीबॉडी?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:25 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज प्रोग्राम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: స్వయం ఈ కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: आकाशवाणी रांची पर वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम रांची मेलोडीज कहते हैं, और आज की रांची मेलोडीज अपने सुरों और एहसासों के साथ समर्पित है एक ऐसे कलाकार को जिनकी मुस्कान में मासूमियत थी, आंखों में अनगिनत सपने थे और अभिनय में एक अद्भुत सच्चाई थी. अभिनय की ऐसी सच्चाई जिसमें भावनाएं पर्दे पर जीवन सी हो जाती थी. आज की रांची मेलोडीज समर्पित है एक ऐसे कलाकार को जिनके टेलीविजन से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर प्रेरणा, मेहनत और जुनून की कहानी है. जी हाँ, ये सरल, सौम्य और दिल को छू लेने वाले शख्स हैं सुशांत सिंह राजपूत. फिल्म काई पोचे के साथ एक नए अभिनेता ने बॉलीवुड में कदम रखा. क्रिकेट कोच ईशान के किरदार में सुशांत ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक सशक्त अभिनेता है. ये उनकी पहली फिल्म थी और इसी ने उनके फिल्मी सफर की मजबूत नींव रखी, और इसी फिल्म के साथ उन्होंने अपने सपनों को उड़ान देकर आसमान छूने का हौसला कर लिया और साथ में कर लिया अपने दमदार करियर का शुभारंभ.

सुशांत उन कलाकारों में से एक थे जो अपनी उम्र से नहीं अपने सपनों से पहचाने जाते थे। कुछ कलाकार पर्दे पर किरदार निभाते हैं और कुछ अपने किरदारों से लाखों दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। काई पोचे के बाद सुशांत की फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस, जो कि रिश्ते को नए नजरिए से देखने की कहानी थी। सुशांत ने अपने सहज अभिनय से इस फिल्म से भी युवाओं के दिलों में खास जगह बना ली।

कभी कभी जिंदगी में तय किए गए कुछ ही कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। फिल्म पीके में सुशांत का एक ऐसा ही किरदार था। बेशक उनकी भूमिका इस फिल्म में बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये किरदार कहानी की आत्मा से जुड़ा हुआ था।

वर्ष 2016 में आई फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। महेंद्र सिंह धोनी के किरदार में उन्होंने खुद को इस तरह ढाला कि दर्शक अभिनेता नहीं धोनी को देखने लगे। सचमुच सुशांत ने अपने आप को पूरी तरह से धोनी के किरदार में ढाल लिया था। ये उनके सबसे चर्चित और प्रशंसित अभिनय में से एक फिल्म मानी जाती है।

सपनों को पाने की बेचैनी और उन्हें सच करने का जुनून, यही तो था सुशांत का असली परिचय। फिल्म केदारनाथ में सुशांत ने मंसूर का किरदार निभाया। एक सरल, संवेदनशील और प्रेम से भरे इंसान का ये चरित्र दर्शकों के दिलों में उतर गया। पहाड़ों की वादियों में गूंजता प्रेम और आस्था का संगीत और उसके बीच मंसूर की मासूमियत।

छोरे जिसने सिखाया जिंदगी हारने का नहीं जीने का नाम है। छिछोरे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नजरिया थी। फिल्म में सुशांत का किरदार अन्नी हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है। ये फिल्म आज भी युवाओं को प्रेरित करती है।

सिर्फ मंजिल नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। शायद यही संदेश सुशांत हमें दे गए। उनकी आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका मैनी का किरदार जीवन को खुलकर जीने की सीख देता है।

सिखाया कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े आसमान छुए जा सकते हैं। उनका फिल्मी सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी यादें, उनके किरदार, उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज की रांची मेलोडीज के मेलोडियस दिनों का सफर बस यहीं तक। अगली बार कुछ और खूबसूरत गीतों और किस्सों के साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और ये वक्त है प्रादेशिक मुख्य समाचार का।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। श्री राय ने राजधानी के निकट और मांझी स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पड़ गई है। इन 2 सीटों के लिए झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों प्रत्याशी जीत के आंकड़ों को जुटाने में जुटे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 18 जून को मतदान होगा। पाकुड़ जिले के सोनजड़ी स्थित बंद पत्थर खदान में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने मृतक के शव को खदान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जामताड़ा जिले के नाला वन क्षेत्र के भेलान डंगाल मोड़ के पास गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने एक मालवाहक वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 18 वोटा लकड़ी जब्त किया है। प्रधान वनरक्षी ने बताया कि वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक और लकड़ी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिमडेगा में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया गया। रैली में शामिल ENM स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य प्रतिभागियों ने लोगों को बताया कि रक्तदान महादान है, जिससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने स्वस्थ लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के प्रोग्राम बाल सभा का। बाल सभा कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे। साथ में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। और बच्चों आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मजेदार बात से। आपको एक बात सच सच बतानी है बच्चों, बिना झिझक के, बिना डरे और बिल्कुल ईमानदारी से,
0: कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं या दिन में जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? क्या आपका मन होता है कि जल्दी से मैदान की ओर भाग जाएं, दोस्तों के साथ खेलें या किताब उठाकर पढ़ाई शुरू कर दे, या फिर सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं? हाँ, और ऐसा हो भी क्यों ना भला, मोबाइल अच्छी चीज है। इससे हम वीडियो देखते हैं, कहानियां सुनते हैं, गाने सुनते हैं, नई नई बातें भी सीखते हैं, जानकारियां मिलती हैं और कभी कभी तो पढ़ाई में भी मदद मिल जाती है।
1: बिल्कुल, मोबाइल ने कई कामों को आसान कर दिया है बच्चों। दूर बैठे लोगों से बात करनी हो या कुछ सीखना हो या कोई जानकारी लेनी हो तो मोबाइल से सब आसान हो जाता है।
0: लेकिन बच्चों समस्या तो तब शुरू होती है जब हम किसी भी चीज का उपयोग जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं। और एक बहुत सरल और सच्ची बात है कि अति किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है।
1: यानी कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बच्चों, अगर उसका उपयोग जरूरत से ज्यादा हो तो नुकसान करती है। और ठीक ऐसे ही बहुत ज्यादा मोबाइल देखने से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं।
0: जैसे बहुत देर तक मोबाइल देखने से आंखों में जलन, थकान, पढ़ाई में ध्यान कम लगना और खेल कूद का समय कम हो जाना, चिड़चिड़ापन, ये सारी परेशानियां होती हैं बच्चों, जो आपके लिए सही नहीं है।
1: हाँ बच्चों, बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा समय होता है। कहा जाए तो बचपन खेलने का, सीखने का और खुश रहने का सबसे सुंदर समय होता है। और खुश रहने का सबसे सरल तरीका क्या है बच्चों? अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना।
0: जैसे समय पर उठना, अपने दिन की सही शुरुआत करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। बच्चों अगर दिन की शुरुआत प्रकृति, पढ़ाई या खेल के साथ हो तो दिन कितना अच्छा लगेगा, है ना?
1: हाँ, और पता है बच्चों, बचपन की सबसे प्यारी यादें मोबाइल में नहीं बल्कि परिवार और दोस्तों की हंसी, खेल कूद और शरारतों में छिपी होती है।
0: लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि मोबाइल बुरी चीज है, आप उसे छोड़ दें। मोबाइल जरूरी तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मोबाइल का सही समय पर सीमित उपयोग करना।
1: जैसे पढ़ाई का समय होता है ना बच्चों, खेलने का समय होता है, ठीक वैसे ही मोबाइल देखने का भी एक समय होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा समय मोबाइल को दें और ज्यादा समय खेल, पढ़ाई और परिवार और दोस्तों को दें तो इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा और मन भी खुश रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल बच्चों, बचपन की सबसे प्यारी यादें यही तो होती हैं, दोस्तों के साथ खेलना, छुपन छुपाई, साइकिल चलाना, कहानी सुनना और परिवार के साथ हंसना, समय बिताना, यही छोटी छोटी बातें जीवन की बड़ी खुशियां बनती हैं।
1: हाँ बच्चों, सच्ची मस्ती स्क्रीन में नहीं है बल्कि अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बिताए गए पलों में है। मोबाइल हमारा सहायक है लेकिन जीवन का विकल्प नहीं।
0: हाँ, मोबाइल पर गेम खेलना आसान लगता है बच्चों, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब दोस्त साथ हो, हंसी हो और खुला मैदान हो। स्क्रीन पर सब कुछ दिखता है बच्चों, लेकिन ताजी हवा, दौड़ और असली मस्ती नहीं होती।
1: हाँ, इसीलिए बच्चों आप जितना कम हो सके उतना कम मोबाइल का उपयोग करें और अधिक से अधिक समय खेल कूद, मस्ती, पढ़ाई और परिवार के साथ बिताएं।
0: याद रखें बच्चों, मोबाइल कम, मस्ती ज्यादा, और इसके लिए आप मोबाइल छोड़कर दोस्तों के साथ लूडो, कैरम, शतरंज खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं,
1: कहानियां पढ़ सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं और दादी नानी के मजेदार किस्से भी सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ गाना, नाटक, नृत्य भी किया जा सकता है, है ना?
0: हाँ, क्योंकि असली मजा खेल कूद और नई नई चीजें सीखने में है बच्चों।
1: और इसके साथ ही साथ बच्चों, हमें जीव जंतुओं से भी प्यार करना चाहिए। बच्चों अभी हमने बातें की कि मोबाइल कम और मस्ती ज्यादा होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो बाहर की दुनिया में है, खेलने में, दोस्तों के साथ हंसने में, पेड़ों की छांव में बैठने से और प्रकृति के करीब रहने में।
0: बिल्कुल। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे प्यारे पशु पक्षी और जीव जंतु कैसे पीछे रह सकते हैं। कभी छत और पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियाँ, कभी फुदकती गिलहरी, कभी रंग बिरंगी तितलियाँ, तो कभी रास्ते में दिखने वाले प्यारे जानवर, ये सब हमारी दुनिया को और भी सुंदर बना देते हैं। बच्चों
1: जरा सोचिए, अगर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई न दे, पेड़ों पर पक्षी न दिखे या हमारे आसपास कोई जीव जंतु न हो तो दुनिया कितनी सुनी सुनी लगेगी, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। और बच्चों, ये जीव जंतु सिर्फ हमारी दुनिया को सुंदर ही नहीं बनाते बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। और सबसे खास बात तो ये है बच्चों कि इन्हें भी हमारी तरह प्यार, दया और देखभाल की जरूरत होती है।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चे इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो बच्चों आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से, छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करके। जैसे
0: गर्मी के दिनों में अपने छत आंगन में या पेड़ के नीचे पक्षियों के लिए एक कटोरी पानी रखकर, थोड़ा दाना रखकर, किसी जानवर को बिना वजह परेशान ना करके, और अगर कोई घायल पशु दिखे तो तुरंत किसी बड़े को बताकर आप उनकी मदद कर सकते हैं बच्चों।
1: हाँ बच्चों, कभी भी किसी जानवर को पत्थर मारना, डराना या उन्हें चोट पहुँचाना, पक्षियों का घोंसला तोड़ देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्यार से बुलाने पर जानवर भी हमारे दोस्त बन जाते हैं और दया प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं होता बच्चों।
0: हाँ याद रखिए बच्चों, दया और प्रेम वो भाषा है जिसे हर जीव समझता है, चाहे वो बोल ना सके लेकिन प्यार को जरूर महसूस करता है।
1: और जो जीव जंतुओं से प्यार करता है वही सच्चे अर्थों में दयालु इंसान कहलाता है। और ऐसे भी बच्चों, ये धरती सबकी है, सिर्फ हम इंसानों की नहीं है। ये जीव जंतु जो बोल नहीं पाते उनकी मदद करना, उन्हें परेशान न करना, यही दया है और सच्ची इंसानियत भी। इसलिए बच्चों, जीव जंतुओं से हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि जीव जंतु हैं तभी ये धरती भी है। तो बच्चों, हम यही चाहेंगे कि आप जीव जंतुओं से प्यार कीजिए, उनको समझिए, उनको किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो दीदी, बातें तो बहुत हो गई और जानकारी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन जानकारी से पहले अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए।
0: तो चलिए बच्चों को सुनवाते हैं ये बाल गीत।

0: वाह, तो बच्चों कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो दीदी अब बच्चे भी तैयार हैं कुछ सुनाने के लिए,
1: हाँ हाँ
0: तो चलिए बच्चों से भी सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: मेरा नाम शांभव चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ और आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक रश्मि रथी है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सदुप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीमा उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर भराकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें उद्याचल मेरा दिव्य भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज पर दिबंध को घेरे है मैनाक मेरु पग मेरे है दिख्य जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर दीर्घ तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा मही सतकोटि विष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंग धर लोकपाल जंजीर बड़ा कर साध ने हाँ हाँ दुर्योधन बांधने भूलो कतल पाताल देख गत और अनागत काल देखिए देख जगत का आदिश देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुठ्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते है फिर लौट मुझी में आते है जिभा से करती ज्वाल से गंसा सो से पाता जन्म पर जाती मेरी ऋषि हंसने।

0: आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सुन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अधाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय जय। धन्यवाद।
1: मेरा नाम शाश्वत चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है याद तुम्हारी आती है। ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, है जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस के रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झर झर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर में जाकर कहती है, जब उतार चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद।
2: वाह, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दी थी। और अब हम बच्चों को क्या बताने वाले हैं, क्या जानकारी है बच्चों के लिए?
3: बच्चों, आज हम एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। कोई उसे देखकर घबरा जाता है तो कोई दूर भागने लगता है, और कई बार तो लोग बिना सोचे समझे उसे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करने लगते हैं।
2: और वो जीव है बच्चों, सांप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे देखकर हम इतना डर जाते हैं, वही जीव हमारे प्रकृति के लिए कितना जरूरी हो सकता है?
3: हाँ बच्चों, सांप एक ऐसा जीव जो बिना शोर किए प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, है ना? ये हैरानी की बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सही और सच्ची है।
2: बच्चों, प्रकृति में हर जीव का अपना एक काम होता है। कोई पेड़ पौधों के बीज फैलाने में मदद करता है, कोई फूलों और फलों को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक उसी तरह सांप भी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका का निर्वाह करता है।
3: हाँ बच्चों, आपने खेतों या घरों के आसपास चूहे तो जरूर देखे होंगे। अब जरा सोचिए, अगर चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा?
2: वे खेत की फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, अनाज खराब करेंगे और कई तरह की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है।
3: और हमने तो आपको पहले ही बताया है कि प्रकृति में प्रत्येक जीव का एक निश्चित कार्य होता है। बच्चों, कोई जीव पर्यावरण को संतुलित करता है तो कोई खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बनाए रखने में सहायता करता है।
2: इसी तरह सांप भी प्रकृति में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे चूहों और कई छोटे छोटे जीवों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हैं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, और इसी कारण सांप को प्रकृति का रक्षक भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, आपको बता दें कि हर सांप जहरीला नहीं होता। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए अगर कभी कहीं सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं, और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें।
3: हाँ, सावधानी और समझदारी के साथ काम करें। और समझदारी इसी में है कि सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, उसके पास बिल्कुल न जाए और किसी बड़े व्यक्ति या वन विभाग को इसकी सूचना दे।
2: प्रकृति एक सुंदर परिवार की तरह है जहाँ हर जीव की अपनी जिम्मेदारी है,
3: और हम सबकी ये जिम्मेदारी है बच्चों कि हम प्रकृति और उसके सभी जीवों का सम्मान करें और उनके महत्व को समझें।
2: और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है, और वो है पेड़ पौधे। बच्चों जरा सोचिए, अगर धरती पर पेड़ ही ना हो तो क्या होगा?
3: ना तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, ना छाया मिलेगी, और ना ही जीवन संभव हो पाएगा। पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार हैं बच्चों। ये केवल धरती की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जीवन का आधार भी हैं।
2: बिल्कुल, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। वे हवा को साफ रखते हैं और वातावरण को संतुलित रखते हैं।
3: इसके अलावा पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधियाँ और लकड़ी भी प्रदान करते हैं। वे बारिश लाने में भी मदद करते हैं बच्चों।
2: हाँ बच्चों, अगर पेड़ ना हो तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा।
3: आज के समय में पेड़ों की कटाई एक बड़ी समस्या बनती जा रही है बच्चों, जो हमारे पर्यावरण के लिए

0: हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
1: हमें ये समझना होगा बच्चों कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जितना अधिक पेड़ पौधे हम लगाएंगे, हमारा भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा।
0: इसलिए आप सब अपने घर, विद्यालय या आसपास की खाली जमीन पर पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें।
1: याद रखें बच्चों, हरी भरी धरती ही खुशहाल जीवन की पहचान है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे। और अब बारी है बाल कथा की। तो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है लाल मोर। और ये कहानी है तेनालीराम की कहानी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं।
0: विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत और विलक्षण चीजें संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसे ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था, ताकि वो चीज महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बन सके और रुपए भी ऐंठ सके।
1: एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वो सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत और अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर, वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज मंगवाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि इस मोर को मंगवाने में तुम्हें कितना रुपया खर्च करना पड़ा?
0: दरबारी अपनी प्रशंसा सुनी तो वो प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वो राजा से बोला, महाराज, आपके लिए ये अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने दो सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में ये अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपए खर्च किए हैं।
1: उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपए राजकोष से दे दिए जाएं।
0: मंत्री को ये आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, ये तो आपको वो रुपया दिया जाता है जो आपने खर्च किया है। इसके अलावा एक सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।
1: दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वो तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा।
0: तेनालीराम ये भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा, ये सब अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है।
1: बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था।
0: तेनालीराम चार और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार कराया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 से केवल एक लाल मोर ही मंगवाया था और मैं सिर्फ 50,000 रुपए में उससे भी अधिक सुंदर चार लाल मोर ले आया हूँ।
1: राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे।
0: राजा को आज्ञा देनी पड़ी, तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपए फौरन दे दिए जाएं।
1: राजा कृष्णदेव राय की ये आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूँ। ये आदमी एक अनोखा चित्रकार है। ये किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोर का रंग लाल करने की कला दिखाई है।
0: अब राजा को सारा गोरखधंधा समझते देर न लगी। वो समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 रुपए लौटाने के साथ ही 5,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया।
1: दरबारी बेचारा क्या करता, वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने की सनक के चक्कर में 5,000 रुपए भी गंवाने पड़े। तो चलिए बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, अच्छी लगी ना? और हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में।
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जब भी वीरता, साहस और देशभक्ति की बात होती है बच्चों, तब सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वो है रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से ये सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्त्री किसी से कम नहीं होती। उनका जीवन बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: बच्चों ये कविता तो आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी, और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। बच्चों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लोग उन्हें प्यार से मनु भी कहा करते थे। उनके पिता का नाम मोरोपन तांबे और माता का नाम भागीरथी भाई था।
0: मनु बचपन से ही बहुत चंचल, साहसी और बुद्धिमान थी। बच्चों जब वे छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। मनु को गुड़ियों से खेलने की अपेक्षा घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाना अधिक पसंद था।
1: मनु ने बचपन में ही घुड़सवारी में अद्भुत दक्षता प्राप्त कर ली थी। बच्चों उनके प्रिय घोड़े का नाम सारंगी, बादल और पवन बताए जाते हैं। वे घोड़े पर सवार होकर इतनी तेज दौड़ती थीं कि बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित रह जाते थे।
0: सन 1842 में मनु का विवाह गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बनी।
1: रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव को एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही समय बाद चल बसा। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया।
0: इसी बीच अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए कई राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने झांसी पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई।
1: जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से घोषणा की
0: कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था बच्चों, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की पुकार थी। रानी ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना में अनेक वीर सैनिक और वीरांगनाएं शामिल थीं।
1: सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। बच्चों रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ झांसी की रक्षा की।
0: जब अंग्रेज सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया तब भी रानी ने हार नहीं मानी। वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और युद्ध भूमि में उतर पड़ी। उनकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग रह गए।
1: लगातार संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची। 18 जून 1858 को अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ती रहीं।
0: सिर्फ 29 वर्ष की आयु में उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका ये बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो गया बच्चों। इसलिए प्रत्येक वर्ष 18 जून को उनके बलिदान दिवस पर देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करता है। बच्चों रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और देशभक्ति से अमर स्थान प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और बलिदान से सिद्ध होता है। आज भी जब हम उनका नाम सुनते हैं हमारे मन में वीरता और स्वाभिमान की भावना जाग उठती है।
1: रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सदैव आने वाली पीढ़ियों को साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। और अब दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। तो बच्चों अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद।

बाल सभा, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

शाम 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। युववाणी ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:02 से। श्रमिक लोग सुनिए 5:30 से। प्रादेशिक मुख्य समाचार एक बार पुनः सुनिए 6:00 से। खेतीबाड़ी इस कार्यक्रम का वक्त होगा 6:02 का। सुनिए कार्यक्रम हमारी दुनिया 6:30 से।

दोस्तों हम आपको बता दें, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एस्बेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे 6:32 से हमारे दिल्ली केंद्र से।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा हैदराबाद के ए श्रेणी के कलाकार जे एस श्रीराम का कर्नाटक गायन आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए रात्रि 11 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से।

शांत सरगम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। तो बताइए दोस्तों, बारिश का इंतजार था आपको तो बारिश हुई और झूम कर हुई। कितनी वफादार लगती है बारिश, मानो उसे अंदाजा हो हम किससे उकताए हुए हैं। बह रहा है हमने भी देखा दरियाए फरात, फिर पुरानी प्यास का लगता है अफसाना बने। रह गुजारे आरजू पर इसलिए ठहरा हूं मैं, काश ये दिल भी तेरी महफिल का नजराना बने।

सिर्फ बिनाई नहीं, आँखों में पानी चाहिए, झील दरिया हो तो सकती है, रवानी चाहिए। जिसको दुनिया याद रखे वो कहानी चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की तजुर्मानी चाहिए। कर लिया इकरार दिल ने, कह दिया आँखों ने हाँ, हमको लेकिन फैसला तुमसे जुबानी चाहिए।

पत्थरों का शहर, पत्थरों की जुबां, तुमको पूछें कहां, तुमको ढूंढे कहां, तुमको देखा तो सौ सौ बहारें खिलीं, तुम हो जाने गजल या कोई कहकशां, हर अदा पर तुम्हारे हुए हम फदा, है कसम अब न लो तुम मेरा इम्तहां, हम तरसते रहेंगे यूं ही प्यार को, इस जहां उस जहां और जाने कहां।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तेरा मेरा रिश्ता क्या, तूने अब तक सोचा क्या, हम तुम चांद नदी कश्ती, सच होता हर सपना क्या, वाकिफ हूँ मैं सीरत से, अब सूरत पे पर्दा क्या।

सब कुछ चुभती रही मेरी आवारगी, मुझ में सबसे भली मेरी आवारगी। वक्त ने यूं तो मुझसे बहुत कुछ लिया, जाने क्यों छोड़ दी मेरी आवारगी। धूप में, धुंध में, तेज बरसात में, कब थमी कब रुकी मेरी आवारगी।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का, सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। श्री राय ने राजधानी के निकट उरमांझ स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया है कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जामताड़ा जिले में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। मौके पर 8 जून को आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने की प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की ताकि विषम परिस्थिति में किसी की जान बचाया जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की खड़ी में 5:02 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम युववाणी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं रिया और अंकिता।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रिया।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसकी कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती, लेकिन जिसे देकर किसी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है।
1: जी दोस्तों, सोचिए एक परिवार अस्पताल के बाहर खड़ा है, किसी की माँ आईसीयू में है, किसी के पिता का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बच्चा गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है और वो है खून।
0: और सबसे खास बात ये है कि दुनिया की कोई फैक्ट्री, कोई मशीन, कोई लैब आज तक इंसानी खून नहीं बना पाई है। इसका एक ही स्रोत है हम और आप।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हीरो केवल फिल्म्स में होते हैं, लेकिन असली हीरो तो वो है जो चुपचाप ब्लड डोनेट करके किसी अनजान इंसान की जिंदगी बचा लेता है।
0: क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो सिर्फ खून नहीं देते, आप किसी की माँ को उसका बेटा वापस देते हैं, किसी बच्चे को उसका पिता और किसी परिवार को फिर से मुस्कुराने की वजह।
1: बिल्कुल दोस्तों, शायद आपको याद ना हो कि आपने कब किसी की मदद की होगी, लेकिन जिस इंसान की जान आपके रक्त से बची होगी वो आपको शायद पूरी जिंदगी कभी ना भूल पाए और दुआओं में हमेशा याद रखेगा।
0: और दोस्तों, रक्तदान से जुड़ी कई गलत फहमियां भी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इससे कमजोरी आती है, जबकि डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित तरीके से रक्तदान कर सकता है और शरीर कुछ ही समय में इसकी भरपाई भी कर देता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस हमें यही याद दिलाता है कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप वही है जब हम बिना किसी पहचान, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें।
0: क्योंकि हो सकता है आज किसी और को खून की जरूरत हो और कल हमें या हमारे किसी अपने को।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं, तो एक बार जरूर सोचिए, आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। रक्तदान करें, जीवन दान करें।
0: बिल्कुल जी दोस्तों, जीवन एक कहानी है और हर कहानी में कुछ गीत छिपे होते हैं। कभी माँ की लोरी एक मधुर गीत बन जाती है, कभी दोस्तों की हंसी एक सुरीली धुन। जब हम खुश होते हैं तो गीत हमारे साथ मुस्कुराते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो वही गीत हमें संभालते हैं। गीत केवल सुर और शब्द नहीं होते, वे हमारी भावनाओं की आवाज होते हैं। हर गीत अपने साथ कोई याद, कोई सपना या कोई संदेश लेकर आता है। जब जीवन की राह कठिन लगती है तब एक मधुर गीत हौसला बन जाता है, और जब खुशियां मिलती है तो वही गीत जश्न का रंग भर देता है। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: अंकिता, जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि सही समय आने पर मदद भी कर देते हैं।
8: बिल्कुल रिया, और आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जिन्होंने रक्तदान करके ना सिर्फ अपना फर्ज निभाया बल्कि किसी अनजान इंसान के लिए उम्मीद की किरण भी बने।
7: दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे है, अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत खून की जरूरत है, परिवार के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है।
8: और तभी कोई युवा सामने आता है जो उस मरीज को जानता भी नहीं, जिसका कोई रिश्ता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कहता है अगर मेरा खून से किसी की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। दोस्तों, यही है असली इंसानियत।
7: बिल्कुल अंकिता, आज के दौर में जहाँ लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, वहीं हमारे कई युवा ऐसे भी हैं जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पहचान की उम्मीद के रक्तदान कर रहे हैं।
8: और सच कहें तो रक्तदान सिर्फ खून देना नहीं है या किसी माँ की दुआ लेना है, किसी पिता की उम्मीद बचाना है, किसी बहन की मुस्कान लौटाना है और किसी बच्चे को फिर से जीने का मौका देना है।
7: मुझे एक बात हमेशा याद आती है, जब भी अस्पतालों में रक्त की कमी होती है तब सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवार वालों को होती है जो पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जब कोई रक्तदाता मदद के लिए आगे आता है तो उसी चेहरे पर वापस उम्मीद लौट आती है।
8: बिल्कुल, और रिया कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़े, पैसों या नाम से नहीं होती, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है।
7: जी बिल्कुल, और रक्तदान ऐसा ही कर्म है जो सीधे किसी की जिंदगी से जुड़ा होता है। हम सभी अपने जन्मदिन पर केक जरूर काटते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, नई चीजें भी खरीदते हैं, लेकिन सोचिए अगर उसी दिन आप रक्तदान करके किसी को उसकी जिंदगी का तोहफा दे तो शायद उससे बड़ा जश्न हो ही नहीं सकता।
8: सही कहा, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्तदान करने से न केवल किसी की मदद होती है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है।
7: जरूरत है हम रक्तदान को सिर्फ एक अभियान न समझे बल्कि इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा भी बनाएं, क्योंकि दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, गंभीर बीमारियां, ये सब कभी भी किसी के साथ हो सकती है और उस समय खून का कोई विकल्प ही नहीं होता।
8: दोस्तों, शायद हम सब किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक छोटा सा कदम जरूर उठा सकते हैं और रक्तदान ऐसा ही कदम है।
7: बिल्कुल दोस्तों, आपके कुछ मिनट किसी की पूरी लाइफ बन सकती है। आपकी एक यूनिट रक्त किसी परिवार की खुशियां वापस ला सकती है।
8: तो दोस्तों, याद रखिए, खून का रंग सभी का एक जैसा होता है और यही हमें इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश देता है।
7: तो दोस्तों, रक्तदान करें और जीवन बचाएं और इंसानियत को और मजबूत बनाएं। दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। वो दिल के उन जज्बातों को आवाज देते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जुदाई की कसक हो, यादों की महक हो या किसी अपने का एहसास, कुछ धुनें सीधे दिल तक पहुंच जाती है। तो आइए इन सुरों के साथ दिल की बात महसूस करते हैं।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, कभी कभी कोई एहसास दिल पर इतना धीरे धीरे छा जाता है कि पता ही नहीं चलता कब वो आदत बन गया, कब वो मुस्कान बन गया। और जब प्यार का यही नशा दिल में उतरता है तो बस एक ही बात जुबा पर आती है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।

0: तो दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अपनी दोस्त रिया
1: और अपनी दोस्त अंकिता
0: को इजाजत।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे रिया और अंकिता के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम श्रमिक लोक का। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं पूजा और श्वेता।

0: सभी को जोहार नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोक और मैं हूँ आज आपके साथ पूजा और मेरे साथ है
1: श्वेता। मेरा भी प्यार भरा नमस्कार साथियों। और आज आपके हमारे जो कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियों के साथ और मनोरंजन के साथ हाजिर हैं।
0: बिल्कुल, तो सफर की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से मौसम जो है लगातार करवट ले रहा है, कभी जोरों की बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी, बिल्कुल धूप का आलम इस तरह का है कि आप अपनी खिड़की से भी बाहर झांकने के लिए तैयार नहीं है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि इस बार बार बदलते मौसम में अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वक्त है जिसमें अगर आप जरा सा भी असावधानी बरतेंगे, लापरवाही करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, और बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले ये जाने कि आपको कैसे ठीक रहना है, आपको क्या क्या खाना है, किस तरह से आपका जो जीवन है वो सही से चलेगा। इसके बावजूद भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं जहां आपका आना जाना होता है उनसे ज़रूर संपर्क करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि हर बार जब मौसम चेंज होता है तो आपकी जो ये फिलहाल जो तबीयत जो खराब नासूर कह सकते हैं ना हो जाती है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आज एक बहुत ही खास दिन है, इस पर भी हम चर्चा जरूर कर लेते हैं। आज है रक्तदान, बहुत जो कहते हैं रक्तदान महादान जिसकी हम बात करते हैं, एक बूंद इंसानियत की, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और क्यों है खास आज का दिन ये बताएंगे हमें श्वेता।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज हम सब विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं, यानी कि हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित मुख्य थीम था मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं।
0: बिल्कुल, इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं ये एक जागरूकता है जहाँ पे हमें और एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं वो प्रेम, वो जीवन का जो एक्चुअली जो सार है इंसानियत, उसे जगाने के लिए आज का दिन है। यानी अगर आप निःशुल्क रक्तदान करते हैं, ऐसा तो निःशुल्क रक्तदान ही है लेकिन कई जगह पे इसका भी कुछ ना कुछ कहीं सुनने को मिलता है, लेकिन ये निःशुल्क होता है जहाँ पर आप रक्तदान करते हैं। और एक नहीं, आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप एक बार ब्लड देते हैं तो उसे 3 जिंदगियां बचती है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि जब कभी भी मौका मिले तो अपने जीवन में रक्तदान जरूर करें।
0: बिल्कुल, और आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम उनको जो हमारे जो जिनके लिए आज का दिन शुरू हुआ है।
1: बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि यह दिन ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
0: बिल्कुल, आज का दिन उन्हें हम याद भी करते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी इंसानियत की जो हम बात करते हैं, इंसानियत की उस एक बूंद की जो बात करेंगे कि जो कैसे एक पूरी कह सकते हैं दुनिया को अपने में समेटे हुए है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम सब ने जो सुना है कि रक्तदान महादान है, लेकिन जिस तरह मंदिर और अन्य स्थानों पर दिया गया दान पुण्य देता है, उसी तरह ब्लड बैंक में दिया गया दान किसी को उसका कल देता है, उसकी जिंदगी देता है।
0: बिल्कुल, हर 2 सेकंड में हमारे देश में किसी को भी खून की जरूरत पड़ सकती है और दुख की बात है उस वक्त अगर खून दिया नहीं गया हो तो उस मरीज को खून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम सब तो यही सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हमारी जो भी बीमारियां वो ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है कोई इंसान, तो उसे बचाने का जो सबसे कह सकते हैं जो उस वक्त क्या होता है ना, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, चोट लग जाती है, ब्लड लॉस होता है। और अगर आप जिस अस्पताल पे जा रहे हैं अगर वहाँ पे खून की कमी है, अगर हम और आप दान नहीं करेंगे तो ब्लड तो कहीं से ऐसी कोई कृत्रिम चीज़ तो है नहीं जो डॉक्टर्स उसे वैज्ञानिक तौर पर बना लें ये दवाइयों की तरह, तो वो हमारे और आपके शरीर से ही निकलता है। और अगर हम जब दान करते हैं तो हम ऐसी कई सारी जिंदगियों को बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा पूजा, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिलीवरी केस है जिसमें कि जो माँ है उसे गर्भावस्था में उसे खून की जरूरत पड़ सकती है, ऑपरेशन के समय उसे खून की जरूरत पड़ सकती है। कई सारे ऐसे मरीज हैं जैसे थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खून की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें खून की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति कभी ना कभी खून दिया हो, दान किया हो, अगर रेगुलर, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब 2 सेकंड में किसी को खून की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन देने वालों की संख्या उसकी तुलना में बहुत कम होती है।
0: आप बिल्कुल इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 75% ही खून है, जबकि ये 100% होना चाहिए था। अगर हम और आप नहीं डोनेट करेंगे खून तो ये जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका सिर्फ 15 मिनट और 350 ml खून, यानी कि 1 यूनिट खून, जिससे कि 3 जिंदगियां बच सकती हैं। सोचिए आप, आपने बस मन बनाया और कहीं जाकर के ब्लड डोनेट किया स्वैच्छिक रूप से, क्योंकि ये तो स्वैच्छिक रक्तदान होता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए। और ऐसे में आपका दिया हुआ जो खून है वो किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा दान हो सकता है, बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है।
0: बिल्कुल, यानी आपके द्वारा दिया गया हुआ ब्लड, आप तो चले गए, 15 मिनट का वक्त आपने निकाला, आपने खून दिया और आप मजे से घर चले गए,
1: कुछ नहीं गया।
0: इवन ये भी माना गया है और साइंटिफिकली देखा भी गया है, जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, अदर लोगों के हिसाब से वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। तो सोचिए जब आप घर चले गए, आपको पता भी नहीं चला, आपने 3 घरों के चूल्हे जलते रहने दिए और आपने 3 माओं के, कह सकते हैं, सुहाग को भी बचाया, और उस तरह से देखे तो 3 कह सकते हैं कोक को भी आपने बचाया। यानी ऐसे मल्टीप्लाई अगर आप कर ले तो सोच लिया आपने कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों की जान बचा ली।
1: बिल्कुल सही कहा पूजा। और कई बार लोगों के मन में कई सारे बहाने होते हैं कि मैं तो पतला हूं, या फिर मुझे कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर मैं हो सकता खून दूंगा
0: और पतला,
1: हो सकता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा।
0: मोटे और पतले की बात कही आपने, तो मुझे लगता है जितने लोग पतले होते हैं ना उनमें ब्लड भी ज्यादा होता है और वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं मोटे के मुकाबले में।
1: लेकिन ये बात सच है कि बस खाली सोचना जो है, आपकी जो सोच है वो किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। बस एक स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 65 साल का कोई भी स्वस्थ इंसान जिसका वजन 45 किलो से ज्यादा है वो रक्तदान कर सकता है। लेकिन और भी कई सारी ऐसे ऐसे हमारे मन में जो प्रश्न हैं, जो खून देना भी चाहते हैं तो उन्हें पता नहीं है कि हम दे सकते
0: तो
1: हैं नहीं
0: बिल्कुल,
1: दे सकते।
0: बिल्कुल, मैं ये आज इस कार्यक्रम में हमने और भी बहुत सारी चीजें शामिल की है। आज हमने एक भेंटवार्ता रखी है जिसमें रक्तदान से जुड़े जो भी मिथ हैं और जो भी सच्चाई है उसके बारे में आज हम बहुत गहरी बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, और उनसे बात करिए हमारी श्वेता आर्या।
1: ब्लड डोनेशन आप सबों ने सुना होगा, कई बार अपने जीवन में आपने किसी भी मजबूरी में या किसी की जरूरत के लिए कभी ब्लड डोनेट किया भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जब जरूरत होता है रक्त का, उस समय उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता सही समय पर, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं कि रक्तदान करना क्यों जरूरी है, हमारा रक्त कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, कि हम दे सकते हैं कि नहीं, या फिर और भी बहुत सारी बातें। तो इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति शर्मा। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान है क्या?
2: देखिए, रक्तदान एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आपको खुद से जाकर के अपने रक्त का दान करना होता है, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने रक्त का दान कर सकता है और ये जरूरतमंदों को जरूरत के समय में बहुत ही उपयोगी होता है। कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं जैसे थैलेसीमिया, इस सब की उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, और रक्त एक ऐसा चीज़ है जो कि आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता है, उसे आपको मनुष्य से ही लेकर के मनुष्य को देना होगा, इसीलिए ये महादान कहलाता है।
1: मैडम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रक्त एक ऐसा अवयव है जिसे बनाया नहीं जा सकता, किसी भी मैकेनिज्म के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। जब भी ज़रूरत पड़ता है खून की तो ये उसी कंडीशन में आपको मिल सकता है जब किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा। कौन ब्लड डोनेट कर सकता है?
2: ब्लड कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र का, जो स्वस्थ रहे, कोई भी बीमारी से ग्रसित ना रहे, प्रेग्नेंट ना रहे, लैक्टेटिंग महिला ना रहे, महिला भी डोनेट कर सकती है। लेकिन उसमें सबसे पहले जब भी रक्तदान करना होता है, आपका ब्लड का कंप्लीट एनालिसिस होता है, आप कोई भी गंभीर तरह के इन्फेक्शन से नहीं गुजर रहे हों, आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। लड़कियों में वो 12 माना जाता है और लड़कों में 13, क्योंकि लड़कियों को हर महीने रक्तस्राव हो रहा होता है, तो उनका अगर हीमोग्लोबिन लेवल 12 है तो वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं, और पुरुष में ये 13 हीमोग्लोबिन का लेवल माना जाता है जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। थोड़ा सा भी बीमार या कुछ इस तरह का कंडीशन होता है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं।
1: दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्लड डोनेट से पहले आपके जो भी ब्लड से जुड़े या फिर आपकी बीमारियों से जुड़े अगर कोई भी जांच होती है तो वो आसानी से हो जाएगा। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आप में कोई बीमारी है या नहीं।
2: हाँ सही बात है, ये रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं वो हर समय जैसे HIV हेपेटाइटिस ये सबका जांच किया जाता है जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं, तो ये आपके अपने लिए भी अच्छा रहता है कि मुफ्त में सारा जांच हो गया।
1: जी बिल्कुल। अच्छा मैडम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि पुरुष और महिला जो हैं वो कितने कितने महीने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
2: देखिए ब्लड डोनेशन का मेन जो ये रहता है जो रक्त कोशिकाएं रहती हैं RBC जिसको बोलते हैं उसका जो लाइफ रहता है वो 120 दिन का रहता है, 120 दिन में वो अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जो नया फॉर्मेशन होता है अगर आप रक्तदान कर देते हैं ये बोन मैरो यानी कि हड्डी की जो मज्जा सेंट्रल पॉइंट रहता है वहां से रक्त बन रहा होता है तो इसको बनने में जो है ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपने ब्लड डोनेट किया हुआ तो मैक्सिमम आप 4 वीक्स मान के चल सकते हैं, बहुत बार तो 4 से 5 दिन भी कहते हैं लेकिन आप 4 वीक्स लेकर के चलिए। एक बार अगर आपने ब्लड डोनेट कर दिया है इट्स बेटर कि 4 से 6 सप्ताह आप इंतजार करिए ताकि ब्लड का लेवल आपका फिर से बन जाए, और ब्लड डोनेट करने से कोई आपको कमी नहीं हो जाएगी, रेदर ये आपको बहुत सारी चीजों में फायदा करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसमें क्या होता है आयरन की कोशिका आयरन जो रहता है उसमें बढ़ने लगता है, आयरन जब बढ़ेगा तो वो थिक हो जाता है तो जो हार्ट अटैक ये सब का जो चांसेस रहता है वो बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि रक्तदान करने से ये घट जाएगा, उसके और भी कई कारण रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई शक नहीं है कि इससे हृदय को आपके फायदा होता है, आयरन का जो कंसंट्रेशन रहता है वो मेंटेन रहता है जो रेगुलर हमेशा करते रहते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो 6 सप्ताह में 2 महीने में आप ब्लड डोनेट हमेशा कर सकते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति हैं।
1: दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी के लिए खून दान करके उसके जीवन के लिए तो भला काम कर ही सकते हैं, आप अपने लिए भी यानी कि खुद की भी भलाई अपने शरीर की सफाई एक तरह से कर सकते हैं। आपका खून किसी के काम आ जाएगा और आपको अंदर एक खुशी भी मिलेगी कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया।
2: आप सही कह रही है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो है ब्लड डोनेशन का बहुत अच्छा होता है। कोई आदमी अगर डिप्रेशन में है और उसे अगर ब्लड डोनेट करवा लीजिए तो आप उसको बहुत अच्छा फील होगा कि उसने किसी को जिंदगी दी, क्योंकि जो रक्त की से जूझ रहे होते हैं किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, थैलेसीमिया के छोटे छोटे बच्चों से मिलिए, रेडियो में लगातार ऐड आ रहा होता है जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे रोड पर चलते हुए लोगों को बोलते हैं थैंक यू आपने ब्लड डोनेट किया, जिसमें बहुत व्यक्ति ये कहते हैं मैंने तो आज तक किया नहीं, तो बोलती है कोई बात नहीं आगे कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत रेगुलर इंटरवल पे जरूरत पड़ती है। कोई कैंसर के मरीज हैं तो ये सब पेशेंट से आप पूछिए कि अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करिएगा तो उनका क्या होगा, तो ब्लड डोनेशन तो करना ही चाहिए। आपका अपना फायदा से ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट इतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा कि मैंने किसी का भला किया।
1: अब बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो है ही कि जितने लोगों को जरूरत है खून की देने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जागरूक हों और जब भी कोई इस तरह का कोई कैंप लगता है कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो ऐसे में आप एक्टिव होकर के रक्तदान कीजिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और दान तो वैसे भी हर तरह से अच्छा ही माना जाता है। मैडम रक्तदान करने वाले लोगों को रक्तदान के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
2: रक्तदान लेने के बाद बहुत ज्यादा फ्लूइड लेना चाहिए, कोई आपको अगर थोड़ी सी कमजोरी लग रही है तो आप थोड़ा आराम करें और लिक्विड फ्लूइड को बहुत ज्यादा लें। जब आप अधिकतर देखेंगे जब होता है तो लोगों को प्रोटीन जैसे रसगुल्ला और फ्रूटी या जो कोल्ड ड्रिंक जैसा चीज रहता है वो दिया जाता है, तो फ्लूइड के ऊपर उस दिन इनटेक पे देना है और बहुत स्ट्रेनियस काम आपको नहीं करना है कि कोई मेहनत वाला काम आप उठ कर करके मजदूरी करने चले जाइए या उस तरह का चीज करो, उस चीज को अवॉइड करना होगा उस दिन के लिए।
1: थोड़ा रेस्ट लेना होगा और थोड़ा खाने पर थोड़ा ध्यान
2: खाने के ऊपर ध्यान देना, खाने पर लिक्विड फ्लूइड आपको ज्यादा लेना है, ऐसा नहीं कि आपको कमजोरी हो जाएगा लेकिन लिक्विड की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक बार में आप मान के चलिए कि 300 से 400 ml का ब्लड निकल जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ पूरा लिक्विड नहीं निकाल के सिर्फ प्लेटलेट निकाल रहे होते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग जरूरत होती है, किसी लोगों को रक्त की सिर्फ ब्लड की जरूरत होती है, किसी को दूसरे पार्ट की जरूरत होती है, तो बहुत बार फुल ब्लड निकाल के उसको अलग सेपरेट किया जाता है, कभी कभी निकाला ही सिर्फ प्लेटलेट फॉर्म में जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कब रिक्वायरमेंट किस तरह का हो रहा है।
1: यानी कि आपने जो एक यूनिट ब्लड डोनेट किया ये 2-3 लोगों को काम आ सकता है।
2: काम आ सकता है बिल्कुल। अगर उसको डिवीजन करके कर रहे हैं तो हर समय जरूरी नहीं कि फुल ब्लड आपको जरूरत पड़े। बहुत बार सिर्फ प्लेटलेट की कमी रहती है बहुत बीमारियों में, तो सिर्फ प्लेटलेट ट्रांसफर किया जाता है उस कंडीशन में, तो वो आपके ब्लड से ही ट्रांसफर होकर के जाएगा। आर्टिफिशियली तो ये बन नहीं सकता।
1: बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक यूनिट ब्लड डोनेट किया लेकिन इसके बदले में 3 लोग कम से कम आपको दुआ देंगे।
2: हाँ।
1: तो दोस्तों ब्लड डोनेट करने के लिए अगर कहीं भी आपको इस तरह का मौका मिले तो इससे आप चूके नहीं, आप कम से कम 6 महीने साल भर में एक बार जरूर ब्लड डोनेट करें।
2: हाँ।
1: क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिससे आपको मन की भी शांति मिलेगी आपको, और आप किसी के लिए बहुत अच्छा भला भी कर सकेंगे। मैडम चलते चलते आप हमारे साथियों को ये बात बता दें कि यदि कोई व्यक्ति नशा पान करता है तो ऐसे में वो ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए?
2: नहीं, ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि जो अधिकतर नशा पान करने वाले लोग रहते हैं उनमें आयरन की कमी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी लो रहता है जो बहुत रेगुलरली कर रहे होते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि लो लेवल पे अल्कोहल ले रहे होते हैं पर डाइट को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, पर जो नशेरी टाइप का जो ग्रुप हो जाता है जो बहुत रेगुलर ले रहा होता है उसमें निश्चित तौर पे हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो वो इस तरह से जाकर के नहीं दे सकते। पहले तो ब्लड टेस्ट करवा के आपको अपना आयरन लेवल हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराना होगा तभी दे सकते हैं। पुरुष में जो मैंने कहा कि 13 से वो ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं सभी ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो नशे वाली चीज़ें हैं उसको आप बंद कर दें। अल्कोहल जो है किसी भी फॉर्म में, अगर आप शौकिया भी पीते हैं या आप उसके आदि भी हो गए हैं, दोनों ही कंडीशन में वो बहुत बुरा है, किसी भी तरह से आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। अगर आप किसी आप सोच के देखिए, आपके किसी अपने करीबी को रक्त की ज़रूरत हो गई और आपका ब्लड ग्रुप मैच कर गया है लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं दे पाए, आपको इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि आप नशा करते थे और इसके कारण आपके खून का जो ब्लड का लेवल है, हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो बहुत लो हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत दुख की बात होगी। तो नशा पे तो हमेशा ही कंट्रोल करना चाहिए, इसका कोई भी फायदा नहीं।
1: हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथियों को इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: तो चलिए ये ढेर सारी जानकारियां अभी हमने आपको दिलाई। आज की हमारी गेस्ट थी श्वेता ने बात की थी स्वाति शर्मा से, जो हमारी विशेषज्ञ थी, जिन्होंने बताया रक्तदान से जुड़े जो भी मिथक हैं और क्या क्या जो अच्छे है जो सच है उनके बारे में बताया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आज का दिन ऐसे भी बहुत खास है भाई, हम सबको सिनेमा देखना पसंद है, हम सबको मूवी जाना पसंद है और आज ये बात मूवी की ही करने वाले हैं। सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं होता है, कभी कभी वो ताजमहल भी बना जाता है, और जब बात भव्यता की हो तो एक नाम हम कह सकते हैं खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है जिनका नाम है के आसिफ।
1: बिल्कुल पूजा, सन 1922 में उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे करीमुद्दीन आसिफ खान, दुनिया ने जिन्हें के आसिफ के नाम से जाना, एक ऐसा जुनूनी फिल्मकार जिसके लिए सिनेमा समझौता नहीं इबादत थी।
0: बिल्कुल।
1: और के आसिफ सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, ये वो सपने बुनते थे और उन सपनों को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे।
0: बिल्कुल, अगर बात करें हम फुल 1945 की जब उन्होंने पहली फिल्में बनाई थी, उसके बाद उन्होंने हूल जूल 1951 से शुरुआत की थी, लेकिन उनका दिल ना इतने में ही अटकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। आसिफ का दिल जो था ना वो शहंशाहों की जो कह सकते हैं शोहरत, वो हर कुछ बड़े पर्दे पे दिखाने का जो जज्बा था, और कह सकते हैं उनको कि उनका जो फिल्म को एक अलग एंगल देने का जो उनका दिल से इच्छा थी, वो इंतज़ार तब जाके ख़त्म हुआ, पता है कब? जिस फिल्म के बारे में जब हम आज भी बात करते हैं और उसकी जो पिक्चराइजेशन की बात करते हैं तो उसके सामने कोई भी नजर नहीं आता, यानी मुगले आजम।
1: बिल्कुल, ये फिल्म वर्ष 1960 में भव्यता की पराकाष्ठा, स्क्रीन पर सीस महल, युद्ध के सीन, अनारकली का नृत्य,
0: बिल्कुल
1: 9 साल 1.5 करोड़ रुपए उस दौर में जब सोना 100 रुपए तोला था।
0: बिल्कुल, एक गाना है, एक गाने में प्यार किया तो डरना क्या। हाँ। वो जो सॉन्ग है क्या, क्योंकि वो उस गाने को जो फिल्माया गया और जो उस गाने को जो शूट किया गया उस दौर में, और उस दौर में जो सीस महल बनवाया गया था बेल्जियम से, उसे असली जो आईने होते ना वहां से मंगवाए गए थे, और लता जी ने पता है ये गाना कहाँ पे गाया था?
1: कहाँ
0: स्टूडियो में नहीं बल्कि बाथरूम में गाया था, क्योंकि उन्हें जो हमारे फिल्मकार थे उन्हें चाहिए था कि जो आवाज निकल के आए वो आवाज में गूंज होनी चाहिए
1: ताकि लगे कि वो शीश महल के अंदर
0: गा रही है। शीश महल बहुत बड़ा सा सीन हमने देखा भी है और इसलिए वो चाहते थे कि वो जो गाना हो वो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह पे वो वाइब्रेशन आए जो सुनने में बहुत अच्छा लगा, और वैसा हुआ भी। और ये फिल्म नहीं थी, ये 9 साल की तपस्या थी, नतीजा आज कह सकते हैं 64 ईयर्स बीत चुके हैं और उसके बाद भी मुगले आजम का नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल। और दोस्तों आपने इसके बारे में इतना कुछ जाना तो क्यों ना इस गाने को सुन भी लिया जाए।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं। और ये भी बता दें कि ये जो पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसे रंगीन किया गया था, तो चलिए एक बार इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं।

0: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
4: चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कभी कभी ना हम भी थक जाते हैं। मेहनत की जिंदगी में शरीर थकता है, पर मन का थकना उससे भी भारी पड़ जाता है। श्रमिकों के लिए ध्यान और प्राणायाम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिना पैसे के कभी भी कहीं भी सुकून दे जाता है।
5: बिल्कुल सही कहा पूजा। हमारे शरीर में थकान होती है जब दिन भर आप काम करने में खुद को जब थोड़ा भी आराम नहीं देते, इसलिए भारी काम के बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। कम से कम 10 मिनट करने से नींद बेहतर आती है और अगले दिन की एनर्जी बनी रहती है।
4: बिल्कुल, मानसिक शांति की अगर हम बात करें तो लगातार शोर, धूप, टेंशन में काम से थकता तो शरीर है, लेकिन उससे ज्यादा थकता है हमारा मन। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी भी यूं ही किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये जो बिहेवियर चेंजेस है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो तनाव भरा जिंदगी है, कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। इसलिए जरूरी है 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही सही खुद के लिए निकालिए।
5: बिल्कुल, क्योंकि आपके मन के अंदर जो होगा वही आप सामने दूसरे लोगों पर आप दिखाएंगे।
4: आपने देखा होगा कि जब कोई हंसता है तो हम उसे देख के हंसते हैं, पता नहीं होता है रीजन, लेकिन हंसते हैं। और अगर कोई रो रहा होता है तो उसे देख के रोना आता है।
5: बिल्कुल,
4: तो यही वाली फीलिंग है। अगर कोई स्वस्थ आपके पास है और आप अगर बीमार महसूस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए योग कीजिए, हमेशा खुश रहिएगा।
5: बिल्कुल, और दोस्तों बस ये कहने की बात नहीं है, आपको अपने पूरी दिनचर्या में सुबह का 10 मिनट जरूर निकालना होगा। और प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं और ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, मशीन या निर्माण कार्य में एकाग्रता मतलब दुर्घटना का खतरा कम।
4: बिल्कुल, ये बात बहुत सही है कि अगर हम एकाग्र होंगे तो सभी काम बढ़िया से कर पाएंगे। फिलहाल अभी एकाग्र होने की जरूरत है क्योंकि हमारा जो वक्त है वो कह रहा है टाटा बाय बाय, तो हमें भी इसी के साथ साथ हो लेना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट अभी हमने कहा था मुस्कुराता चेहरा मुस्कुराहट देता है, जाने का सिग्नल है तो जाना पड़ेगा।
5: बिल्कुल, तो दोस्तों दीजिए अपनी दोस्त श्वेता और
4: पूजा को इजाजत।
5: नमस्कार, नमस्कार।

0: कार्यक्रम श्रमिक लोक अभी आप सुन रहे थे पूजा और श्वेता के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। दोस्तों, ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान राजधानी के प्रोजेक्ट स्थित झारखंड मंत्रालय में इस राज्यव्यापी अभियान को लेकर प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के गिद्दी में बंद पड़े कोयला खदान में मृतक युवकों के परिजनों से मुलाकात की और सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर श्री मरांडी ने जिला और पुलिस प्रशासन को इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की गई होती और राहत बचाव कार्य में तत्परता दिखाई गई होती तो चारों युवाओं की जान बचाई जा सकती थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। खेल मंत्रालय और अस्मिता खेलो इंडिया की ओर से आज धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विधायक राज सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भवानी बंगोपाध्याय ने बताया कि बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम खेती बाड़ी का।

0: गाछ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, खेती बारी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के सुनेना बहन बटले जमे जमा जोहार। और रिंकी बहन राउर के हूँ जोहार।
1: सब सुनो या भाई बहन मन के जोहार और सुनेना बहन राउर के भी जोहार।
0: एकदम का हालचाल है? बहुत दिन बाद भेटा ही नहीं।
1: एकदम सही कह ली, बहुत दिन बाद भेटा ही। और कहूँ का हालचाल है, घर दूरा घर बार
0: खेती बारी बेस। खेती तो मैं कहूँ तो लागले है नहीं हमेशा, लेकिन देखा थी एकदम रर बैग में तो एकदम रसे रस दिशा थे। कहाँ रस है पता नहीं चला फिर।
1: अरे भाई का कहूँ, आई जा रही है गांव में तो वहाँ मधुमक्खी पालन करत रहे तो
0: बहुत
1: एकदम ताजा ताजा मधु का रस निकालत रहे। तो हम सोचे भाई एकर से बेस तो कुछ मिली नहीं,
0: मिली नहीं सही बात है,
1: कीन लेवल जाए।
0: बहुत मुश्किल से भेटा लेने ऐसे ओरिजिनल चीज एकदम नहीं तो जाने जाता नहीं, फटा हुआ टाइप का,
1: फटा हुआ।
0: लेकिन गांव देहात जाल पीछे नहीं एकदम बढ़िया
1: बढ़िया भेटाला। और मैंने कहूँ कि एगो मैंने औषधि भी है और ऐसे भी खाए में बढ़िया लागेला।
0: कोनो भी तरह खाओ, नहीं गर्म पानी में सुसुम पानी में भी ले घोर के पी के बिहान के पियो, और नहीं तो फिर रोटी मन से भी खा सके, ऐसा खा सके,
1: छुआ मन के भी पसंद।
0: हाँ छुआ मन के भी पसंद। और देखो ना ये तो औषधि का भी काम करेला, नहीं तो सेला एकदम हर तरह से पौष्टिक है।
1: बिल्कुल सही बात कह ली।
0: देखो ना मधुमक्खी पालन एगो बहुत ही लाभदायक और कम लागत वाला कृषि आधारित व्यवसाय लागे। और इकर से शहद यानी कि मधु के अलावा मोम पराग और रॉयल जेली जैसन उत्पाद भेटाला। और इके कोई भी किसान भाई मन आसानी से शुरू कर सके।
1: सही बात करी, मैंने खेती बाड़ी कर संगे संगे इकर में भी अपन ध्यान उमन लगाए
0: सके। बिल्कुल।
1: और सबसे वैसे कि कर ले साफ सुथरा जगह चाहिए तो खेती बाड़ी कर रहे थे तो वहाँ तो जगह ठाव रहबे करे एकदम।
0: बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले हमरे के जाने कर दरकार है कि हमरे मधुमक्खी पालन कैसे शुरू करब सके। नहीं तब तो सबसे पहले जरूरी है कि हमरे मन सही प्रजाति का चुनाव करब। ऐसे भी भारत में 4 प्रकार का मधुमक्खी पालल जाएला नहीं।
1: एकर में जी हाँ, एकर में है एपीएस मेलेफिरा, इटालियन मक्खी है जो कि व्यावसायिक उत्पादन ले काफी बढ़िया है और लोकप्रिय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एपीएस सेरोना इंडिका ई एगो भारतीय नस्ल लागे जेके सामान्य तापमान वाला क्षेत्र में पालल जाएला। और
1: एकर ले जरूरी कुछ उपकरण भी होत होई
0: एकदम। और ई व्यवसाय के शुरू करे के लिए हमरे मन के खास उपकरण का जरूरत होवेला, जैसे कि लकड़ी का बक्सा,
1: छाता बनाए के लिए जरूरी है।
0: और सुरक्षा उपकरण का भी हमरे के जरूरत पड़ेगा। देखो मधुमक्खी कर डंक से बचे के लिए हमरे मन के फेस मास्क, दस्ताना और सादा कोट चाहे गमछा मन कर जरूरी होवेला।
1: ये बात तो सही कहली सुनैना भाई कि मैंने मधुमक्खी पालन करे थी तो बेस बात है, लेकिन उकर में सावधानी भी बरते है उकर से तनी मनी हानि भी हो जाएला। और उकर ले साफ सुथरा जगह चुने के चाहिए। मधुमक्खी का जो डब्बा है उकर देखभाल भी सही तरीका से करे,
0: बक्सा कर स्थान कैसन है उके भी हमने
1: उके भी चुनाव करे चाहिए। हाँ, ताकि उकर में से समय समय पर अगर जो शहद जमा थे तो उके निकाल भी सके हम
0: एकदम
1: ऐसा व्यवस्था करे चाहिए
0: तब। लेकिन ये सबसे जरूरी है एक प्रशिक्षण लेवे का,
1: प्रशिक्षण भी। और
0: जब, बात जब तक हमरे के जानकारी नहीं हुई तो हमरे कैसे बढ़िया से।
1: अरे वो ये और भी बात कहती सुनैना बहन कि जैसे अगर जो मधुमक्खी है उसका सही तरीके से देखभाल भी करे जरूरी है। जैसे कि खेत खलिहान का देखभाल करी लेना भाई की बढ़िया उपज, हाँ तो बढ़िया मधु हमरे मन के प्राप्त हो तो वास्ते मधुमक्खी का देखभाल भी सही तरीका से होवे चाहिए।
0: एकदम सुपट कहते एकदम। लेकिन ये मधुमक्खी कर जो प्रजाति जो हम कहते चार तरह कर तो दो हमरे जान लिए से तेरे एपिस इंडिका भी है, एपिस मेलिफेरा भी है।
1: नहीं एकदम सही बात कह ली। तो खेती कर संगे संगे मधुमक्खी पालन करके भी बगरा आमदनी कमाए सकेला। आजकल बगरा कर जरूरत बहुत रहल।
0: बगरा नहीं रही तो घर परिवार कैसे चली। आजकल महंगाई में नहीं बहुत जरूरी है कि एकदम कुछ ना कुछ हमरे के करके है काल के। अगर हमरे तो कैसे हमरे कर उम्र हुआ थे और कैसे हमरे तो पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन आज कल कर छुआ पुता मन के हमरे के पढ़ाई बहुत जरूरी है।
1: और पहले ये भी रहना सुने बहन की कुछ काम न के तो खेती बाड़ी हमरे मन करे थे, लेकिन आजकल पढ़ लिख के भी बहुत आदमी मन एकर में अग्रसर है, खेती बाड़ी करे थे और बढ़िया प्रशिक्षण प्राप्त करके
0: बिल्कुल
1: काम के करे थे और अपन मने पीढ़ी दर पीढ़ी के आगे और बगड़ा बढ़ाते जाते हैं।
0: ऐसे भी कहा जाए ना कि भारत कृषि प्रधान
1: देश है, तो हर तरह का कृषि कर यहाँ जरिया है और हर तरह का कृषक बढ़िया से बढ़िया एकदम कृषक है यहाँ, जैसे देश तरक्की करत है।
0: देश दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गेलक है कि नहीं। एक ठो है नी नारा जे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय किसान भी आ गेलक बीच में,
1: विज्ञान भी, विज्ञान कर संगे संगे किसान कर में, और दोनों कर अगर प्रगति हुआ थे अगर सर हुआ थे तो देश भी आगे बढ़े।
0: बिल्कुल देखो नहीं, मधुमक्खी पालन व्यवसाय प्राचीन काले से एकदम अस्तित्व में रही है, लेकिन वर्तमान में एकदम भिन्न जानी लेके। सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में लानाड्रप नामक अमेरिकन वैज्ञानिक कृत्रिम छत्ता कर आविष्कार कर रहे ने,
1: ओकर में के बनाए रहे।
0: हाँ, और भारत में मधुमक्खी पालन कर शुरुआत ट्रावणकोर में 1917 ईस्वी में और कर्नाटक में 1925 ईस्वी में हो रहे, और के कुटीर उद्योग कर रूप में प्रांतीय स्तर में कर विस्तार
1: तो बहुत जगह में बहुत बढ़िया तरीका से बनाए बनाए के आदमी मन भेजत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सुनना बहन बात तो
0: हमरे करनी
1: खत्म नहीं हुई, और अरे तो बुझाती बहुत तरह कर गोइट लाइन, लेकिन आज के कार्यक्रम कर काका जुगाड़ है तो एक भी बता देवल जाए
0: एकदम। चलो हमरे और करीला एगो कृषि गीत से है निजी के गाय है मुकुंद नायक और संगी मन,
1: तो चलो सुनीला
0: नागपुरी में।
2: सुनो किसान भैया।

0: तो बहुत नगद गीत रहे मुकुंद नायक और संगीमन कर गावल। और अब एगो जानकारी कर बेरा है तो हाँ। चलो हमरे मन जानकारी करी ले कि पशु में होए वाला जो बीमारी है उकर घरेलू चिकित्सा कातरी हमरे मन कर सकीला, तो इकर बारे में हमरे मन के बतावे हैं डॉक्टर विशाखा सिंह और इनकर से बातचीत करें हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: किसान साथियों नमस्कार जोहार। जैसा कि हम जानते हैं कि पशुधन हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ है। अक्सर देखा गया है कि पशुओं में अचानक कोई बीमारी या छोटी मोटी तकलीफ होने पर अस्पताल दूर होने या रात का समय होने के कारण तुरंत डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती। ऐसे में हमारे पूर्वजों के समय से चले आ रहे पारंपरिक और घरेलू नुस्खे किसी संजीवनी से कम नहीं होते। रसोई में मौजूद हल्दी, अजवाइन, काला नमक और आसपास मिलने वाले औषधीय पौधे कैसे हमारे मवेशियों की जान बचा सकते हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज इस विषय पर गहराई से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, सह प्राध्यापक रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची। डॉक्टर विशाखा आपको नमस्कार है।
2: नमस्कार।
1: आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को ये बताएं पशुओं में होने वाली बीमारियों की घरेलू चिकित्सा क्यों जरूरी है।
2: देखिए जैसा आपने शुरुआत में ही कह दिया कि ये कई तरह की औषधियां हमारे रसोई में होती हैं।
1: जी।
2: कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो झारखंड में बहुतायत से हैं और हम नहीं जानते कि उनमें क्या औषधीय गुण है, लेकिन सभी गुणों की खान है। हर किसी पेड़ पौधे का, उसकी पत्तियों का या फल का किसी न किसी रूप में औषधीय उपयोग हम कर सकते हैं। और चूंकि ये चिकित्सा काफी सेफ है, कहने का मतलब है कि इसका पशुओं के स्वास्थ्य पे ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही चूंकि आसानी से उपलब्ध हैं तो इसलिए इन पे खर्च भी नहीं आता, तो वैसे पशु चिकित्सक जिनकी आय का साधन कम है और जो एक सेफ तरीके से अपने पशुओं की चिकित्सा करना चाहते हैं, उनसे रोगों की रोकथाम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर उपाय है कि आसपास उपलब्ध अपने पेड़ पौधों और रसोई घर में जो भी मसाले हैं उनका उपयोग करके हम पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें।
1: जी, तो गाय या भैंस को पेट फूलने पर क्या घरेलू उपचार देना चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: जी, जैसे गाय भैंसों में पेट फूलना मतलब है कि उसमें गैस बन रहा है पेट के अंदर।
1: जी।
2: तो इसलिए हम ऐसी दवाइयां यूज कर सकते हैं, ऐसे औषधि यूज कर सकते हैं जिनसे गैस बनने को कम किया जा सके। जैसे हमारे सभी के घरों में उपलब्ध है वो, जैसे अजवाइन। अजवाइन को या तो आप उबाल करके जानवर को उसका पानी पिला दें या अजवाइन को पीस करके उसका पाउडर बना करके दे दें। इसके साथ ही आप सौंठ या अदरक भी दे सकते हैं, थोड़ा सा हल्का गुड़ मिला दे तो पशु से और चाव से खा लेगा। तो इन तरीकों से पशुओं में हम गैस का उपाय कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसमें सरसों तेल और पानी करीब करीब आधी मात्रा में 250-250 ग्राम दोनों को लेकर के मिलाकर और पशु को पिला दें, तो इससे गैस से काफी हद तक और बहुत जल्दी आराम मिलता है।
1: पशुओं को दस्त डायरिया होने पर कौन सा घरेलू उपचार किया जाता है।
2: इसका बहुत ही आसान उपाय है, हमारे सभी के घरों में मौजूद है वो पेड़ जिसे अमरूद कहते हैं। अमरूद की पत्तियों को अगर पशुओं को ऐसे ही खिला दें आप तो देखेंगे कि उनका दस्त रुक जाता है।
1: जी।
2: और भी जल्दी फायदा चाहते हैं तो आधा किलो के करीब पत्ती लेकर के और उसको पानी में उबाल करके उस पानी को पशु को पिला दें जब वो पानी आधा रह जाए। इसके अलावे शरीफा की पत्तियां उपयोग में लाई जा सकती हैं और जामुन के पेड़ की पत्तियां भी हम दे सकते हैं दस्त रोकने के लिए। और इसके साथ एक चीज जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दस्त के कारण पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो करीब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच चीनी मिला करके पशु को देने से उसके शरीर में पानी की कमी दूर होती है। और दस्त जो होता है वो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में होता है जानवरों में, जबकि हरा चारा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हरा चारा ना देकर पशु को सूखा चारा दिया जाए जब उसे दस्त हो। तो इन उपायों से दस्त ठीक किया जा सकता है, उसे होने से रोका भी जा सकता है।
1: सर्दी खांसी जुकाम का घरेलू उपचार क्या है।
2: जैसा हम सभी जानते हैं सर्दी होने पे हम तुलसी के पत्ते उपयोग में लाते हैं, तो यही चीज़ें हम अपने पशुओं को भी दे सकते हैं। तुलसी के 8-10 पत्ते लेकर के उसे पानी में उबाल लें, उसी में 8-10 काली मिर्च कूट करके डाल दें, और इसके साथ ही साथ गिलोय का जो तना होता है उसको भी आप अच्छे से उसको कूच करके उसका रस उसमें डाल दें, और जब पानी आधा रह जाए तब पशु को पिला दें। अच्छा, कई जगहों पे होता है कि तुलसी का पत्ता अगर नहीं उपलब्ध है तो हमारे झारखंड में बहुत प्रचुरता से मिलता है बाकस का पत्ता।
1: बाकस का पत्ता,
2: बाकस का पत्ता इस ये भी तुलसी ही की तरह एक रामबाण औषधि है सर्दी जुकाम और खांसी में, तो इसका भी काढ़ा बना करके पशु को आप दे सकते हैं, ये काफी जल्दी फायदा करता है।
1: पशुओं में कभी कभी घाव हो जाता है, तो घाव होने पर कौन सा घरेलू लेप लगाना चाहिए?
2: देखिए, पशुओं में घाव कई तरह से हो सकते हैं। कुछ घाव संक्रामक होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह के संक्रमण से होते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे कट गया या जल गया उसके कारण भी घाव बनते हैं। तो इन सभी तरह के घावों में, चाहे वो संक्रमण से हुए हो या कटने छिलने से हुए हो, नीम जो है वो सबसे सर्वोत्तम

0: जिसको मैगोट कहते हैं, वो उस घाव में घुस जाते हैं और उसको भरने नहीं देते हैं। तो वहां पे तारपीन का तेल बहुत अच्छा काम करता है। तारपीन के तेल को अगर आप उस घाव में डालेंगे तो कीड़े निकल जाते हैं और घाव जल्दी भरता है। और इसके साथ ही साथ आप गंधक भी डाल सकते हैं, तारपीन के तेल या करंज के तेल में गंधक मिला करके डालने से भी घाव जो है वो जल्दी भरता है।
1: पशुओं में अक्सर देखा जाता है कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो पशुओं के पेट में कीड़े होने पर क्या घरेलू उपचार किया जाना चाहिए?
0: जी देखिए, कीड़ों के लिए जो बहुत अच्छी औषधि है वो है मूली के पत्ते।
1: जी
0: मूली के पत्तों को करीब आधा किलो पत्ता लेकर के और 250 ग्राम प्याज का रस में मिला देना है और उसको पशु को खिला देना है। जब ये आप खिलाइएगा तो आप देखिएगा कि पेट के कीड़े बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा है नीम। चूंकि नीम जो है वो गुणों की खान है, नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं, ये परजीवियों को भी दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो नीम को अगर 8 से 10 पत्ते, कोमल पत्तियां नीम की अगर खिला दें, अगर जानवर खाना नहीं चाह रहा है तो उसको उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पिला दें, तो भी देखते हैं कि पेट के कीड़े निकलते हैं। और इसके साथ तुलसी भी बहुत अच्छा एक हमारे पास एक साधन है जिससे पेट के कीड़ों से निजात दिलाई जा सकती है पशुओं को।
1: जी, पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, तो दूध की कमी क्या किसी बीमारी होने पर होता है या कैसे होता है, और इसके लिए हम दूध की कमी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, दूध की कमी जो होती है पशुओं में वो उसके, आपने सही कहा, उसके कई कारण हो सकते हैं। पशु में अगर कमजोरी है तो भी दूध कम होगा। कई बार देखा जाता है कि पशु को खुरहा चपका हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया लेकिन उसका दूध नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें पशु का खान पान कम हो जाए, पशु को भूख कम हो जाए, तो उसके दूध उत्पादन पे प्रतिकूल असर पड़ता है, दूध उत्पादन घटता ही है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी औषधि है वो है शतावर। शतावर का जो जड़ होता है उसको जब चूर्ण बना करके और चारे के साथ भी आप दे सकते हैं या उबाल करके दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसके जड़ को दिन में 2 बार देना है और कम से कम इसको 1 से 2 महीने तक देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि पशुओं के दूध में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है दूध बढ़ाने में।
1: पशुओं को अक्सर कभी कभी बुखार आ जाता है, तो बुखार आने पर कौन सा घरेलू उपचार करना चाहिए?
0: देखिए, बुखार के लिए जो सबसे अच्छा काम करने वाला चीज़ है वो है गिलोय।
1: गिलोय
0: जी, जैसा हम सभी ने देखा कोरोना के टाइम पे गिलोय जो बहुत प्रचलित था, ऐसा इसलिए क्योंकि गिलोय जो है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बुखार बहुत जल्दी उतारता है। तो अगर आपके पास दवा नहीं है, पशु को बुखार हो गया है, तेज ज्वर है, तो गिलोय का काढ़ा बना दें और उसमें कुछ पत्तियां तुलसी की और कुछ काली मिर्च जिसको गोलकी कहते हैं उसको कूट करके अगर डाल के और पशु को इसको पिलाएंगे तो बुखार बहुत जल्दी उतरता है।
1: जी,
0: एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि चिरैता भी बुखार में बहुत अच्छा काम करता है। चिरैता देने से भी बुखार उतरता है।
1: जी, जैसे बुखार आ गया या पेट में कीड़ा हो गया या किसी भी कारण से बीमारियों से पशुओं में कमजोरी हो जाती है, तो कमजोरी दूर करने के लिए क्या घरेलू उपाय किया जा सकता है?
0: देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली तो कि पशु के चारे को हमेशा संतुलित रखना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे उसमें कितना मात्रा में हमको हरा चारा देना है, कितना सूखा चारा देना है, कितना दर्रा देना है, ये सब जो मात्रा है वो निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कम दे दिए, कुछ ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि मिनरल मिक्सचर पशु को जरूर देना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो सहजन की पत्तियाँ होती हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखता है सहजन का पेड़, उसकी पत्तियाँ जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं और लीवर को ताकत देती हैं, जिसके कारण आप देखिएगा कि जो कमज़ोर पशु हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं। इसके अलावे शतावर भी खिला सकते हैं दुधारू पशुओं में, वो भी ताकत बढ़ाता है। और साथ ही एलोवेरा, अगर चारे में आप काट काट करके एलोवेरा के टुकड़े दें तो आप देखेंगे कि पशु की पाचन क्षमता बढ़ती है और उसकी वृद्धि अच्छी होती है और दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। तो इन चीज़ों को अगर चारे में साथ में मिला करके दें और संतुलित मात्रा में हरा चारा भी दें तो पशुओं में वृद्धि अच्छी देखी जाती है, दूध उत्पादन भी बढ़ता है और रोगों से लड़ने की

0: क्षमता भी बढ़ती है।
1: जी, तो डॉक्टर विशाखा, आपने हमें बहुत ही सरल और सटीक जानकारी दी कि कैसे हम घरेलू उपचार के माध्यम से अपने पशुओं की चिकित्सा कर सकते हैं। विशेषकर खुरपका, मुंहपका या आफरा जैसे स्थितियों में ये नुस्खे कितने कारगर हैं, यह जानना हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमारे जानकारी करत रही पशु मन में होवे वाला बीमारी का घरेलू चिकित्सा, घरेलू उपचार कातर करल जा सके, इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह और इनकर से बातचीत कर रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। तो चलो एखन बेरा है तो एक ठो और एगो कृषि गीत सुन लेवे ला हमरे मन पचपरगरिया में है
3: आज रे गीत सुने तो मन में तो गीते सुनल छे तो चलो सुनिए।
2: हां, पचपरगरिया में जे के गाए हैं सुभाष कोइरी और संगी मन।

0: तो बहुत नगद गीत रहे सुभाष कोरी और संगी मनकर गावल पंच परगनिया में, सुनैना बहिन
1: तो, लागत रहे कि सुनते रहते रहे नहीं, लेकिन हमरे कर तो खेती बाड़ी कर भी रहे जगह सिरात है बहिन, तो कह चाहब कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर, तो चलो तब
0: तो चलो अब एक संगे सब सुनवे भाई बहिमन के जोहार
1: जोहार।

खेती बारी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एस्बेस्टन बर्मिंघम में भारत और

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज़ को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत MM करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गजवाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। दो सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड दौरे के क्रम में रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री राय ने ओरमांझी के कुच्चू में

0: स्थित भारत संकल्प सम्मेलन प्रबुद्ध नागरिक से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किसान खुशहाल हुए हैं और गरीब कल्याण को नया आयाम मिला है। श्री राय ने कहा कि देश के सतत विकास को लेकर कई पहल हुए हैं और देश की सुरक्षा अभेद्य है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के लिए गौरव का कार्यकाल रहा है। इसमें गरीबों का घर बना, 81 करोड़ परिवार को आज मुफ्त का अनाज मिल रहा है, 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से हो रहा है, आज प्रत्येक किसान भाइयों के घर में खुशहाली है किसी न किसी रूप में, आज विकास का दर बढ़ा है और दुनिया में हम 4थी अर्थव्यवस्था है।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं।
2: अपने देश के 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए भविष्य का भारत को बनाने के लिए लंबे कालखंड तक भारत एक सशक्त राष्ट्र बन करके लगातार दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी के अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को बनाए रखे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सोरेन राजधानी के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय से इस राज्यव्यापी अभियान को लेकर प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के अरगड्डा में अवैध कोयला खदान में मृतक युवकों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि बंद पड़ी खदान में एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसे बचाने गए 4 लोगों की दम घुटने से मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का परिणाम है। श्री मरांडी ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर आशान्वित है। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेसवार्ता में बताया कि पार्टी के दोनों विधायक इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन के दौरान नोटिस मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। श्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है।
3: 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कोलकाता शहर में होने जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी उसमें सहभागी होंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे।
0: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की रांची में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसोसिएशन के झारखंड इकाई के अध्यक्ष सानंद दास ने बताया कि बैठक में बैंक अधिकारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने पर विचार विमर्श किया गया।
4: एथिस बैंकिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग एंड वर्सुइंग एंड फाइटिंग विद द मैनेजमेंट। अभी आज के सिचुएशन ये है कि इवन इन द हॉलीडेज संडे में भी ऑफिसर के काम के लिए उनको बुलाया जाता है। यार हम ऑर्गेनाइज करके इसी केस में मैनेजमेंट के ऊपर फाइट करें और एक सशक्त प्रतिरोध हम मैनेजमेंट के तरीके से कर सके ताकि वर्क कल्चर है वो हम सुधार पाए।
0: विश्व रक्तदाता दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। कोडरमा के रितेश माधव 45 वर्ष की आयु में अब तक 87 बार रक्तदान कर लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है।
5: अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके नए ब्लड बनते हैं और वो तेजी से बनता है। शरीर की एक सीमा होती है कि इतना ही ब्लड शरीर को चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, ब्लड दिन पर दिन शरीर में बढ़ता जाएगा, उसकी एक लिमिटेशन होती है।
0: खेल मंत्रालय और अस्मिता खेलो इंडिया की ओर से आज धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विधायक राज सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भवानी बंगोपाध्याय ने बताया कि बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए।
6: ये पार्टिसिपेंट में जितना प्रतिभागी भाग लेंगे तो उसको उतना ही आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्रालय का और अस्मिता खेलो इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए ये धनबाद जिला साइकिल एसोसिएशन ने ये कदम उठाए हैं। इसमें अभी करीब 150 से बच्चियां पार्टिसिपेट की है। हम लोग सबको शुभकामना देता हूँ।
0: संथाल और कोल्हान प्रमंडल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के कुछ अन्य जिलों में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। केंद्र के अनुसार राज्य में 20 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: खो गया इंतजाम।
8: किसका?
7: गुड्डी की फीस का।
8: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
9: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
10: RBI कहता है,
11: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
12: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में इस बार बड़े पैमाने पर आम की पैदावार हुई है। लोग आम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आम बाजार का शुभारंभ दीदी कैफे परिसर में किया गया है। यहाँ जिले में उत्पादित विभिन्न किस्म के आमों की बिक्री की जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने बताया कि आम बाजार लगाने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह पहल किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह को सीधे बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: नरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो आम के पौधे लगाए गए थे, उन लोगों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने दीदी कैफे के सामने आम मेला का आयोजन किया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो किसान हम लोगों के गांव के हैं, उन लोगों को बेहतर बाजार मिल सके बिना किसी बिचौलिए के, वो लोग यहाँ पे आकर के अपने आमों की बिक्री कर सकते हैं।
1: लोहरदगा जिला में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन सांसद सुखदेव भगत के द्वारा किया गया। मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है, जो प्रकृति के हमारे सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बक्सीडीपा में यह जैव विविधता पार्क लोहरदगा की पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा करना हम सबों का दायित्व है, सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं चलने को है। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: आज ये पार्क खुला, और ये पार्क जरूर ये फॉरेस्ट विभाग क्षेत्र में खुला है, लेकिन ये लोहरदगा की जनता का है। इसको स्वच्छ रखना है, और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक जो चीजें हैं उनका प्रयोग कम से कम करें।
1: अपराधों में कमी लाने एवं पुलिस एवं जनता के बीच के संबंध को और सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से लोहरदगा के SP सादिक अनवर रिजवी के द्वारा लोहरदगा जिला के कुड़ू थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। मौके पर SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: बहुत से मामले जो मुख्यालय में भी मेरे पास आते हैं, उसमें बहुत सा छोटे मोटे विवाद के कारण भी लोग आते हैं। एक बड़ी जो बाधक है वो जमीन विवाद से संबंधित है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसी में एक दूसरे पर झूठी प्राथमिकी के लिए भी आवेदन देते हैं। उन सब को दूर करते हुए और भी जो इनके यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है, कानून से संबंधित, थाना से संबंधित या किसी प्राथमिकी से संबंधित, उसकी जानकारी लेने के लिए आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है।
1: लोहरदगा जिला में मॉनसून बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं कृषि विभाग भी विभिन्न तरह के बीजों के वितरण की तैयारी कर रहा है, ताकि किसान सही समय पर खेती कार्य कर सकें। लोहरदगा में दिशा की बैठक में सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारें। सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वह समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का काम है, और इस काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: drives this one towards mid-on and runs down in the search of a single which Smriti Mandhana thought was non-existent, and hence Mandhana said no. She sent Jemima back from halfway down the pitch. Jemima makes it safely home and after that holds her hand up in apology. She had punched this one straight to mid-on and Smriti Mandhana did not see the need to run.
1: आए हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय

सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे, इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना, सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो, युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुट सकते हैं, तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम। जी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह

जी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हो? ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
3: न्योता?
1: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: हा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो गिरवी डाल ही चुके होंगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाकों चने चबवा दूंगा।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टेम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
1: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
3: अच्छा,
1: राम राम।
3: अच्छा राम राम, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
3: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले जाते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा।
2: अरे तुम यहाँ खड़े, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम फूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है।
3: क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है।
3: हाँ?
2: भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ,
1: अरे मंगरू मंगरू
3: तो क्या बात है माधो।
1: अरे चौधरी जी आ गए हैं।
3: चौधरी जी? हाँ देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ।
3: हाँ मैं अभी आता हूँ।
1: ठीक है
3: मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त भी आया। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, अब पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना।
3: जी
4: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
4: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
3: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
4: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए, और अब तुम्हारी बच्ची।
3: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पिपाई चुका दूंगा धर्म से, धर्म से।
4: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
3: चौधरी जी मालिक

0: मालिक,
1: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है। आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला
0: दूंगा। नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, कुछ भी दया कीजिए, दया कीजिए।
1: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो। तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
2: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3,000।
2: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
2: हाँ हाँ, मैं मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की।
2: अच्छा भैया, जय राम जी की।
0: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
2: तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
2: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
2: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: वो क्या पटवारी जी है?
2: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
0: पर गलती उसी की, गलती उसी की पटवारी जी।
2: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम।
3: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
5: धन्यवाद।
4: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
5: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
4: जी।
5: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
4: जी।
5: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
4: जी।
5: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में तीन चार या दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
4: जी,
5: तो हमारे युवा मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
4: जी,
5: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी दो ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन, हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
4: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
5: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
4: बिल्कुल
5: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
4: उसकी मात्रा भी सर कम है,
5: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे, उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
4: जी।
5: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
4: जी,
5: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है, तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही, और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, सोडियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा, जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है, तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
4: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
5: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
4: जी।
5: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है, अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
4: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
5: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
4: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
5: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर के सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
4: जी।
5: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, जो

0: उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेनिसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं।
0: अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही है, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें
0: तो? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए।

0: यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं और साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे,
1: बिल्कुल सर,
0: यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके, और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब
2: सब्जी लेते वक्त भाव करते हो ना, और क्लोथ्स लेते वक्त बार्गेनिंग भी, फिर मेडिसिन पे सिर्फ 10% पे सेटल क्यों? नेटमेड्स पे रोज मिलता है 24% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, वो भी 0 प्लेटफॉर्म चार्जेस और हैंडलिंग फी के साथ, तो फिर समझदारी दिखाओ, नेटमेड्स पे आओ।
0: 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
4: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
5: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution? Developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
6: Thank you for having me.
5: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
6: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with, say, something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
5: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true because now almost every pin code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So yes, that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
6: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees because school system is very large. We have 10.5 lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases. But in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new

0: to fair to good to great and allowed a chalang and done it even in one decade. It's a journey. Even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading. Reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course we can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
1: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
0: My pleasure. Thank you for having me.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you are listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हो रहे हैं। दोस्तों, समाचार संध्या के लिए आइए आपको दिल्ली ले चलते हैं।
4: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा मिले हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
0: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट।
4: इस संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास।
4: इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
5: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
6: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
4: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
7: The world seeks trusted and reliable partners.
8: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
7: And a scale that few can match.
4: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
9: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारत

0: भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolus at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के 16 हलाक हो गए। ओमान हमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों

0: सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कार्बन रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ रابطہ है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबायसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवन पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उथनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाव से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक क्लास में ग्रुप F1 के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला

0: نہیں کیا ہے جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے۔ عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: brought about with the change of regime. A few months ago, Wahab Riaz took over, saying that we need to galvanize the way we bat in T20I cricket. He summoned some youngsters into the team, and since then we have seen this approach. Currently, Muniba Ali batting on 25 and Aisha Zafar batting on 12. The only two Pakistani batters who have scored centuries in women T20Is are in the middle, and the drinks break has now come to a conclusion. Deepti Sharma once again has the ball in her hand, the only successful bowler for India so far. She begins the 7th over, delivers this one from over the wicket on a drivable length, and in a very measured manner Muniba Ali gets onto the front foot, square drives it towards the fielder at deep cover, who runs to her right and then cleans it up. In the drinks break, we saw animated conversation from India's bowling coach Avishkar Salvi, who was on the park having a conversation in the team huddle. And we hope that the words of wisdom that he gave would work, and we will see its effects soon. Deepti Sharma meanwhile delivers this one from around the wicket to the right-hander, and Aisha Zafar nudges the ball back to the bowler. 53 for 1 after 6.2.
2: 53 ایک وکٹ کے نقصان پر۔ ایک بار پھر سے اراؤنڈ دا وکٹ، وہاں پر دیپتی شرما اور گیند کو سویپ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر فائن لیگ پر فیلڈر موجود، کوئی کوتاہی نہیں، بہت ہی صفائی کے ساتھ اس کیچ کو مکمل کر لیا، اور یہاں پر پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگتا ہوا۔ عائشہ ظفر، جن سے کافی امیدیں پاکستان کی ٹیم کو نشچت روپ سے رہی ہوگی، زمبابوے کے خلاف گھریلو شرنکھلا میں انہوں نے شاندار پردرشن کیا تھا، شتک لگایا تھا، لیکن یہاں پر دیپتی شرما نے انہیں واپس پویلین چلتا کر دیا ہے ماتر 12 کے ویکتیگت سکور پر۔ اس گیند کو جیسے ہی انہوں نے اپنا موقع تاڑنے کی کوشش کی، سویپ کیا تھا، لیکن فائن لیگ جو کہ 25 گز کے دائرے کے اندر وہاں پر موجود تھا، کوئی غلطی وہاں پر نہیں ہوئی، اور اس طرح سے اس کیچ کو مکمل کر لیا گیا۔ تو ایک اور جھٹکا پاکستان کی ٹیم کے لیے۔ سمرتی ماندھنا نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آگے کی طرف ڈائیو لگاتے ہوئے اس گیند کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا، اور یہ کامیابی بھارت کی جھولی میں ڈال دی۔
1: وکٹ ونس اگین فار دیپتی شرما، شی ڈیلیورز ایوری ٹائم انڈیا نیڈز ہر ٹو۔ وین شی واز انٹروڈیوسڈ انٹو دی اٹیک، واٹ ڈیڈ وی سے، ان ٹربل کال دیپتی، and she has delivered with not just one but two wickets now. Two wickets in her 1.3 overs. Saira Jabeen now. Saira Jabeen and Muniba Ali in the middle. Pakistan still needing 117 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket, is witnessing another iconic match, because both the teams are tussling it out there. Deepti Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length, slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short fine leg for which she had to fling herself forward and grab it inches from the ground, produced that wicket of the bowling of Deepti Sharma. Meanwhile, the next delivery, Deepti beats the bat. Good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body. The ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length. In a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan moved to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा?
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: अपना पांचवा T20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण, तो दो ओवर में कोई मेडल नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और 2 सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से मुनीबा का स्कोर हुआ 28 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहां पर श्री चरनी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल की हैं। शानदार प्रदर्शन रहा है चरनी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर 1 रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस 1 रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुँचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चरनी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज़्यादा गति नहीं दे रही हैं अपनी गेंदों को। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस 1 रन की मदद से मुनीबा पहुंची हैं अब 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चरनी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चरनी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही है, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजबेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। और सायरा जबीन ने जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को 3रा झटका लग चुका है और तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करते हुए, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी। मजे की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
5: राइट, सो थर्ड विकेट डाउन नाउ, नटालिया परवेज मेक्स हर वे टू द मिडल एंड श्री चरनी प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर इंडिया। Left arm spinner, the preferred left arm spinner, should I say? Why did I say that? We'll tell you after this ball. Around the wicket, she comes in to deliver what will be the 5th ball of the 8th over. This one, an attempted slog sweep from Natalia Parvez, which lands in the vacant region at mid on before Kranti Gaur can run in from long on pick the ball up and hurl it back towards the 22-yard strip. A comfortable single will be taken.

0: also not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder. She can bat a bit too. However, Team India prefers Sri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also, she doesn't have that kind of batting credentials either, yet she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the 8th over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the 8th, 59 for 3 are Pakistan. And they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Sri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire clear Paulo Sag? This one was delivered from around the wicket. Pretty much in line with the stumps, at least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep there, did the batter and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS and Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
1: तो भारत के लिए यहाँ पर एक और अवसर है. हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने. अंपायर क्लेयर पोलोसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहाँ पर दीप्ति शर्मा, विकेट कीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी. और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो डीआरएस के लिए जाएंगे. तो देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहाँ पर क्या निर्णय आता है. निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं. जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नज़र आ रही थी, और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज एक रन बनाकर खेल रही हैं, इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी.
0: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not. Because remember, Deepti Sharma went around the wicket to the right-handed batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not. And Ultra Edge tells us, according to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds. Pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
1: So, Natalia Parvez abhi bhi beech गेंद ड्रिफ्ट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी और अंपायर्स कॉल थी वो वहां पर, जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहां पर. इसी बीच रनआउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेजी के साथ. दीप्ति ने वहां पर थ्रो किया था ऋचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी थी. देखना है कि क्या इस अवसर पर ये टीवी अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं. लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर. तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले पर स्टांस लेने के साथ तैयार और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा. और इस बार मिडल ओवर स्टंप की इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज. और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 60-3 विकेट के नुकसान.

0: मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर। ओवर द विकेट मुनीबा के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद जो कि ऑफसम से काफी ज्यादा बाहर थी अपनी जगह खड़े होकर बल्ले को बिल्कुल आड़ा करते हुए किसी तरीके से इस गेंद को धकेलने में कामयाबी हासिल की। कवर क्षेत्र की तरफ आसानी के साथ एक रन और जुटा लेंगे। इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 तीन विकेट के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं अराउंड द विकेट। और इस बार इस गेंद को सेव करने के अंदाज में खेला लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पांचवी गेंद पर और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का तीन विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद का आना बाकी है। पिछली तीन गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने। अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी। ओवर द विकेट मुनीबा के लिए और फ्रंट फुट पे आकर हल्के से गेंद को पुश किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62 तीन विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Pakistan need 109 more runs in the remaining 11 overs. Sri Charani begins a fresh over, delivers this one on a very full length. Natalia Parvez wanted to step out of her crease. However, she had to abort the plan in between because to squeeze it back to the bowler. Deepti Sharma, before this, delivered her third over. Now that is interesting. That is interesting. Why? We'll tell you after this ball. Sri Charani runs in to deliver the next delivery. Delivers this one outside the off stump. And excellent bit of fielding from Harmanpreet Kaur. Might have produced another wicket for India. However, we will wait. We will wait for the umpire to make a signal. And Claire Polosak looks like is not very interested. Harmanpreet Kaur is celebrating. Radha Yadav, Smriti Mandhana and Deepti Sharma have run to her, hugged her. She has started celebrating but the umpire has not given it out. That is interesting. This one was pushed towards the extra cover region. Harmanpreet dived towards her right, picked it up and hurled a flat throw towards Richa Ghosh, who collected the ball, whipped the bails off. However, with an excellent dive, Muniba Ali had made her ground and Claire Polosak has not... Technology, she says, I've got eagle eyes, I've seen it with my own eyes, it is not out. Excellent bit of umpiring. The replay suggests that her decision was correct. Next delivery flighted outside the off stump, chipped towards Kranti Gaur at long off, who fumbles and therefore allows two runs to the Pakistani batters. But excellent bit of umpiring that, Ashish.
0: बिल्कुल तारीफ करनी होगी वहां पर क्लियर पोलोसैक की, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वो निर्णय लिया। और टेक्नोलॉजी का भी जब हमने उपयोग देखा स्क्रीन पर होते हुए तो लगा कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर। इसी बीच अगली गेंद और गेंद को वहां पर खेल दिया खूबसूरती के साथ।
6: ये लगा आभा का चौक
0: ने इस अवसर पर और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई चार रनों के लिए बाहर चली गई। श्री चरणी जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और पहला अपना विश्व कप खेल रही हैं। 2025 के बाद दर्पण अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए अगर किसी गेंदबाज ने बटोरे हैं तो वो श्री चरणी हैं।
5: That is why Radha Yadav has been kept out of the side. Next delivery lofts this one over extra cover. Does Muniba Ali, the leaping fielder at the edge of the 25-yard circle, will not be able to get to it. And hence a couple of runs will be taken. That takes Pakistan's score to 71 for 3 in 9.5 overs. This one was delivered from over the wicket, outside off by Sri Charani. One ball remaining in the 10th over. And Pakistan... thus far seem like they are on their 10th over. Next delivery induces the edge, does Sri Charani, but there is no slip in place and the run out opportunity, if at all there was any, has been squandered to

0: because Richa Ghosh has not been able to collect this one cleanly. It was delivered outside off on a length. Muniba Ali went for the drive, got a thickish outside edge. The ball went towards Shefali Verma, who was stationed at short third, who picked it up, hurled a flat throw towards the Indian wicketkeeper, who could not quite collect it cleanly. The single was taken. Pakistan end the 10th over with their score reading 72 for 3. Just going back on the point of Deepti Sharma, her 3 overs have been used, and Ashish, she's the designated death bowler in this Indian team. But Harmanpreet realized that the need of the hour is give her the extra over, which means they could be troubled when it comes to death.
1: जी हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद हरमनप्रीत की मंशा ये हो कि उस स्टेज तक उस मैच को जाने ही ना दिया जाए और पहले ही पाकिस्तान की पारी को समेट लिया जाए. और मुझे लगता है कि उन्होंने सही कप्तानी की है वहाँ पर, लगातार दीप्ति शर्मा को 3 ओवर करा के. श्री चरनी का ये ओवर महंगा ज़रूर साबित हुआ, 10 रन उनके इस ओवर में आए, 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, 1 सफलता उनको भी मिली है, कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने दिए हैं. और श्री चरनी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व कप खेल रही हैं और इनसे भविष्य में भी भारत को बहुत आशाएं हैं. फिलहाल पाकिस्तान 72 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, और 10 ओवर के बाद भारत की पारी की जो स्थिति थी वो ये कि भारत ने 65 रन बनाए थे और 2 खिलाड़ी भारत के आउट हुए थे. तो 7 रन पाकिस्तान ज़्यादा बना चुका है, लेकिन 1 विकेट भी उसने ज़्यादा गंवाया.
0: Shreyanka Patil begins a fresh over and some on a length, and Muniba pushed it towards the left of her. Shreyanka Patil wanted to gather the ball, however the non-striker came in the way and Shreyanka was not able. Looks at the umpire and says that this is delivery, delivered on a good length at the stumps, goes down on a knee as Natalia Parvez, and slog sweeps it towards the fielder on the leg side boundary. Jemima Rodrigues collects it and hurls a throw at the non-striker's end, which Shreyanka Patil has not been able to collect cleanly, and she has copped one in the groin region and she's currently on the floor.
1: या थोड़ी बहुत पीड़ा में ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द खेल एक बार फिर से शुरू होगा. और पाकिस्तान की टीम की शुरुआत, जैसा कि हमने कहा, कि अच्छी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद भारतीय गेंदबाजों को सफलताएं मिली. 2 विकेट अब तक दीप्ति शर्मा चटका चुकी हैं, 1 विकेट श्री चरनी ने अपने स्पेल में हासिल अब तक किया है. श्रियंका पाटिल का ये दूसरा स्पेल है, हालांकि पहले स्पेल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी. मुनीबा अली की बात करें तो उन्होंने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 40 रन अब तक उन्होंने बना डाले हैं 34 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 5 चौके शामिल हैं और लगभग 117 का स्ट्राइक रेट है. और बाकी के बल्लेबाज आया राम गया राम की तर्ज पर नज़र आए. पाकिस्तान की टीम की जहां तक सवाल है, गुल फिरोज़ा की बात करें, आयशा जफ़र की बात करें या साइरा जबीन की बात करें, तो ये खिलाड़ी बहुत कम योगदान देकर वापस पवेलियन लौटते हुए नज़र आए. लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की दरकार है, जबकि भारत नहीं चाहेगा कि एक बड़ी साझेदारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को एज वेस्टर्न पर मिले.
0: Meanwhile, the team physio is out in the middle attending Shreyanka Patil. She's been given some water and some moments to breathe hard and collect her breath back. Renuka Thakur, one of the reserve players, is also out there in the middle. It is interesting that India have kept Renuka Thakur out, because remember, back in 2022, when the Commonwealth Games were held at this very ground, every match was played at this very ground during that competition, Renuka Thakur was super impressive. She picked up 11 wickets in that tournament, which was the highest not just for India but in the entire tournament. Rather, they preferred Kranti Gaur and Arundhati Reddy as the seamers over Renuka Thakur. Anyhow, Shreyanka is good to go. Around the wicket, she runs in to deliver what will be the third delivery of the 11th over. Delivers this one on a good length, in line with the middle and leg pole. Muniba Ali gets a healthy stride out and then uses her wrist to deftly turn it away towards mid-wicket. Picks up a comfortable single that takes Pakistan's score to 75 for 3. They need 96 more in the remaining 57 balls.
1: श्रियंका पाटिल ने 14 महीनों की इंजरी के बाद वापसी की थी और WPL में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था. अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को खेल दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ

0: समाप्त कर दिया। पाकिस्तान 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75-3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है। दो गेंदों का आना बाकी है। शंका पाटिल एक बार फिर से और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा जरूर दे बैठी, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास। सीधा थ्रो वहां पर स्टंप्स पर आया स्ट्राइकिंग एंड के तरफ। क्या भारत के लिए ये रनआउट के रूप में एक और सफलता आ सकती है? जैकलिन विलियम्स ने टीवी अंपायर को रेफर किया है, काफी नजदीकी मामला हो सकता है तरपर।
1: गेस हू द फील्डर इज, दीप्ति शर्मा कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंडिया। The replay on our monitor is up and it suggests that the batter is short. Natalia Parvez got an outside edge. She wanted the single. However, Muniba Ali denied it and hence she had to turn back and go towards safety. Looks like she hasn't been able to ground her bat, or is it Muniba Ali who has been run out? We'll find out in just a second. However, it is Deepti Sharma's golden arm which has produced another wicket. Beg your pardon, it is Muniba Ali who failed to make her ground at the striker's end, and therefore another wicket produced for India. Pakistan are 75 for 4.
0: Kya satik nishana tha? Kis tarah se क्रिकेट की और राह पकड़ी थी दीप्ति शर्मा ने। एक मैदान पर जबकि खेल हो रहा था, उनके भाई वहां पर खेल रहे थे और गेंद उनके पास पहुंची थी और बड़े कैजुअल अंदाज में उन्होंने गेंद को फेंका और वो सीधा जाकर स्टंप पर टकराई और वहां पर जो यूपी के चीफ सेलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वहां से उनको अपनी छत्रछाया में ले लिया और आज भी उन्होंने वैसे ही कमोवेश कारनामा करके दिखाया है।
1: शी वॉज बॉर्न विद इट, इजंट इट? शी वॉज बॉर्न विद इट, द टैलेंट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय मदर नेचर। Anyhow, responsibility now on the shoulders of Pakistan skipper Fatima Sana, who now makes her way to the middle. Pakistan are 75 for 4 and have just lost the wicket of Muniba Ali, who has been their top scorer so far. 41 of 35 is what Muniba managed. She hit 5 boundaries in that innings of hers. And Shreyanka Patil's over has produced a wicket finally. Remember, 2 drop catches of her bowling. This doesn't go into her account, this run out, but it produces a wicket for India and another drop catch. Looks like this was a cotton bowled opportunity which Shreyanka Patil has spilled herself on her length in line with the stumps. Fatima Sana pushed it with hard hands. The ball went uppishly back to the bowler who failed to hold on to it in her follow through. 75 for 4.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: तो पिछला ओवर भारत के लिए सफलता लेकर के आया जब दीप्ति शर्मा ने रन आउट करवा दिया था मुनीबा अली को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिसकी वजह से मुनीबा अली 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर हुई थी। इधर श्री चरनी के स्थान पर अब शफाली वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर है, जो कि दाएं हाथ से ऑफब्रेक गेंदबाजी करती हैं और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अक्सर भारतीय आक्रमण की शुरुआत उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन आज उनसे आक्रमण की शुरुआत तो नहीं कराई गई, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर शेफाली वर्मा नजर आ रही हैं। बल्लेबाजी में मात्र 6 रन बनाए एक छक्के की मदद से। देखना यह है कि गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं। अगली गेंद, और इस बार फातिमा सना ने इस गेंद को खेला लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर। कोई रन नहीं बनेगा। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फातिमा एक बार फिर से तैयार। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, निश्चित रूप से वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा। इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत 77-4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 4 अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप अब तक पाकिस्तान की टीम को दिए जा चुके हैं भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। शेफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार।

0: दाएं हाथ से ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को लपक लिया आसानी से जेमिमा रॉड्रिक, स्मृति थी वहां पर दरअसल, उन्होंने गेंद को लपका और इस तरह से पारी समाप्त कर दी है वहां पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा सना की। खाता भी अपना नहीं खोल पाई, शून्य के स्कोर पर छह गेंदों का सामना करने के बाद वापस पवेलियन लौट रही है। धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहती थी, लेकिन वहां पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने पंजों पर उचकते हुए उस गेंद को, कैच को मुकम्मल किया और पारी को समाप्त कर दिया पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए।
1: Get Shefali to bowl a little bit more. Do you or do you not remember the World Cup final from the last year when she produced a couple of wickets? Here again she has produced the goods for India. Shefali Verma with the wicket of Fatima Sana has pushed Pakistan on the back foot, 77 for 5. Meanwhile, I need to make a correction. The last ball of the previous over, I said Shreyanka Patil dropped a catch. However, the replays that appeared a little bit late on our monitor suggested that the ball had fallen just short of Shreyanka Patil. So she collected it on a half volley, or rather fumbled in the collection, but it was on a half volley. Alia Riaz, meanwhile, has now come out to the middle. She is the most A lot of eyebrows were raised when Fatima Sana was appointed as the skipper, because Alia Riaz is far more experienced. Why was she not given the captaincy? But that is another matter. Currently, she needs to bat Pakistan out of trouble. A delivery on a full length near the off stump, which has been squeezed along the carpet towards cover. Alia Riaz faces a dot ball to begin her innings. Next delivery, again on a full length, once again gets forward as Alia Riaz, and this time knocks it towards long off. A comfortable single will be taken. That gets Alia Riaz off the mark, and Pakistan's score moves to 78 for 5 with a ball remaining in Shefali Verma's first over. Runs in the Shefali. Once again, a full-length delivery outside the off-stump. Natalia crouches and then heaves it towards deep mid-wicket, where Radha Yadav does the mop-up job. A comfortable single has been taken, but singles won't hurt India anymore because they are in ascendancy with the score reading 79 for 5 at the end of the 12th over. Pakistan need 92 more runs in just 8 overs. Safe to say that India Now are in the driver's seat.
0: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और स्मृति मानधना की भी तारीफ करनी होगी। 68 रनों की बेहतरीन पारी और उसके बाद दो शानदार कैच उन्होंने जो लपके हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी वो एक प्रबल दावेदार इस मुकाबले में नजर आ रही हैं दर्पण।
1: Absolutely, catches win matches, the odds, the old saying. Shri Charni with a change of ends produces another wicket. Harmanpreet Kaur takes the catch at extra cover. Natalia Parvez has to say goodbye. India get another wicket. Pakistan are collapsing. Pakistan are crumbling. India on top. They were 75 for 3 and now they have been reduced to 79 for 6. This was a floated up delivery at the off stump on a very full length. Natalia stayed beside the line. Tried to go inside out over extra cover, but could not find the desired elevation. Stretched her arms upward, did the Indian captain, and the ball stuck to the middle of her palms like a bug in a cobweb. Out for 7 of 13 balls, without scoring any boundaries, is Natalia Parvez. Pakistan down in the...
0: 20 run banate banate, Pakistan ne apne... 5 विकेट गवा दिए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है इस मुकाबले में भारत के खिलाफ। और भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी की यदि हम तारीफ बात करें, तो दर्पण ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन, तेज़ गेंदबाजी को लेकर चिंताएं पहले भी थीं और आज भी इस मुकाबले में हमने देखा कि चाहे क्रांति गौड़ हों या फिर अरुंधति रेड्डी, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। नए ओवर की शुरुआत, बल्कि श्री चरणी वहां पर अपने ओवर को जारी रखती हुई, पहली गेंद पर सफलता उनको मिल चुकी है, और इस समय शमीम वहां पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं। रमीन शमीम

0: देखना है कि यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा पाती हैं। पाकिस्तान की टीम इस समय खासी मुश्किलों में नज़र आ रही है। श्री चरनी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन एज बेस्टन पर
1: near the off stump and it was pushed towards long on for a single by Shamim who gets off the mark. The next delivery comes around the wicket, does Sri Charani delivers this one to Alia Riaz, once again near the off stump. Alia Riaz with a little bit of a misfield allows two runs and hence Alia Riaz takes herself to three. Pakistan 82 for 6. Next delivery of Sri Charani is over on a good length around the off stump, 78 kilometers per hour or thereabouts. Riaz has to adjust into a defensive push.
0: 44 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को और 4 विकेट मात्र सुरक्षित है पाकिस्तान की टीम के। अगली गेंद श्री चरनी की और इस बार अराउंड द विकेट आते हुए अंपायर उस स्टंप के बीच से निकलकर ये गेंद फ्लाइटेड थी, बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास किया लेकिन सीधा 25 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पॉइंट क्षेत्र में पहुँचती हुई बिना किसी रन के। पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है आलिया को और देखना यह है कि आलिया रियाज और रमीन शमीम मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को और कितना दूर ले जा सकती है। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नज़दीक पहुँचकर गेंद को ड्राइव किया, वाइड एश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद फील्ड हो रही है लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने एक रन के लिए छोर बदल लिया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब हो गया है पाकिस्तान का 83 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 42 गेंदों में 88 रन, पाकिस्तान को जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए लेकिन शफाली वर्मा की पहली गेंद को वहां पर स्वीप करने की कोशिश कामयाबी मिली लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके एक रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर पाकिस्तान की टीम का बढ़ करके अब 84-6 विकेट के नुकसान पर। शफाली वर्मा को पिछले ओवर के दौरान सफलता मिली थी, क्या इस ओवर में भी वो भारतीय टीम के खाते में एक और सफलता दे पाएंगी? ऐसा कर पाती हैं तो भारत के लिए जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल मंत्रणा चलती हुई ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम के साथ शफाली वर्मा की। 13.1 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर 84 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली को अगर छोड़ दें दर्पण तो बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम के। शफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से बाएं हाथ के बल्लेबाज रमीन शमीम के लिए और इस बार इस गेंद को स्वीप किया है लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे एक रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन की मदद से 85-6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद पक्ष में इस समय पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद आलिया के लिए और आलिया ने इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया लेकिन बहुत ताकत से लगा हुआ स्ट्रोक नहीं था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्वतः ही जाकर के रुक गई थी। हालांकि एक दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर वहां पर दीप्ति शर्मा ने थ्रो किया लेकिन तब तक 2 रनों का फासला तय कर चुके थे आलिया रियाज और रमीम शमीम। इन 2 रनों की मदद से आलिया रियाज पहुंची 7 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87-6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शफाली वर्मा इस बार ओवर द विकेट और इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहती थी, ऋचा घोष के पास अवसर था, अगर सीधा थ्रो उनका स्टंप्स की तरफ लगा होता तो गेंद स्टंप्स पर लगने के साथ ही बैटर आलिया रियाज को वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था। हालांकि रिव्यू वहां पर जरूर लिया है,
1: Two things happened there. First of all, there was an appeal for LBW because Shefali thinks that her ball spun enough to beat the inside edge of the bat and hit Alia Riaz on the pads. After hitting the pad, the ball trickled away towards the onside and Riaz wandered out of her crease in order to search for a non-existent run. Richa Ghosh ran towards her left, picked the ball up and then attempted to hit a direct hit, score a direct hit at the keeper's end, but she was not able to. So Riaz survived the run out scare. However, for the LBW appeal, which was denied by umpire Jacqueline Williams, India have posed a challenge. Harmanpreet Kaur has shown the T signal, which calls for DRS. The first replay is on our monitors and it's a complicated replay because the bat and pad are close together. There is a definite spike on the graph of ultra edge. However, the bat and pad are super duper close. So we do not know whether that spike is due to the ball hitting the bat or it is due to the bat hitting the pad. And therefore, the wisdom of umpire Alois Sheridan, who is in the chair of TV Empire right now, matters a lot. It is her judgment which will decide whether or not we go to the ball tracking replay. Only if she decides that the ball is hitting pad first, we will go to the ball tracking replay, and thereby the question of whether it was in line, whether it would have gone on to hit the stumps will arise. But the first question is whether it has hit the pad first or the bat first. Looks like umpire Sheridan has decided that it has hit bat first, which means India will lose a review and Alia Riaz will survive.
0: काफी नजदीकी मामला था क्योंकि बैट और पैड जैसा कि दर्पण आपने बताया बिल्कुल साथ थे और वहां पर टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई बहुत आसान निर्णय नहीं था लेकिन फैसला अंततः बल्लेबाज के पक्ष में रहा और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87 विकेट के नुकसान पर.
1: And that is why, Ashish, we need umpires. People say, do away with them, leave everything to technology. No, we need umpires. This is the reason.
0: जी हाँ, हर मशीन के पीछे एक मानव जरूर होता है और यहाँ भी हमने वैसे ही देखा. फिलहाल इजाफा 88 विकेट के नुकसान पर. लक्ष्य है पाकिस्तान की टीम के सामने 171 रनों का, यानी बची हुई 37 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता है और ये लक्ष्य जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है. और अगर यही स्थिति अगले 2-3 ओवर तक बनी रही तो मैं कहूंगा दर्पण फिर ये मैच जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाएगा. और जो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर है, बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद की जानी कि वो यहाँ पर 36 गेंदों में 82 रन बनाएंगे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा.
1: Absolutely, it's a mountain to climb. A single to end the 14th over, which was played down to long on by Ramin Shamim, and that calls for a drinks break. The final one of this particular match, Pakistan are 89 for 6 and need 82 more runs in the remaining 6 overs. India have plenty of flexibility going to excellent overs delivered by Shefali Verma, who, as we have been saying, should be getting more and more opportunities to bowl as she has proven it again and again. Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Kranti Gaur, Deepti Sharma, Shri Charani and Shefali Verma, the 6 bowlers that have been used by Captain Harmanpreet Kaur. Of course, this match is being played at the Edgbaston, which is an iconic cricket ground in Birmingham in England. It hosted its first ever first class game back in 1885, first test match in 1902 and first women's test match in 1963. Of course, has hosted some iconic matches like the Commonwealth Games of 2022, the 1999 World Cup semi-final. Remember Lance Klusner, Alan Donald, that run out? That match happened here. Brian Lara, who scored 501 not out during a first class game, that happened here. So it's been an iconic ground and looks like one more chapter will be added today when India beat Pakistan. Are we jumping the gun? No, we aren't, because this looks like an improbable climb, doesn't it, Ashish?
0: और इतिहास भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि शायद इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति इस संस्करण में भी करे। T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचा है T20 विश्व कप के मुकाबलों में, और 2024 में भी उन्होंने जो चार मैच खेले अपने ग्रुप में उसमें

0: एक जीता था। और उधर आप भारत की यदि बात करें तो भारत चार बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 2020 में भारत रनर्स अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पराजित किया था। और रैंकिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो भारत मीलों दूर है, मीलों आगे है पाकिस्तान से। 3 नंबर की पोजीशन पर भारत है T20 रैंकिंग में, जबकि 8वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो कागजों पर कोई मेल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि खेल के मैदान पर जो प्रदर्शन होता है नतीजे उसके हिसाब से आते हैं, लेकिन आज खेल के मैदान पर भी भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफी ज्यादा बेहतर अब तक नजर आया है।
1: However, there is something to play. There is something to play for, and that is net run rate. Remember, this group that India is in is called the group of death. India, Australia, South Africa, 3 contenders for the cup. Only 2 will make it to the semi-final, and therefore it could come down to net run rate at the business end, and therefore India would want to win by a big margin. Sri Charani will begin bowling what is the 15th over of the innings. Team gets a long stride forward too. She takes it on the full in front of the off stump and then bunts it towards, which takes Pakistan's score to 90 for 6 after 14.5. Shri Charani switches her angle, goes around the wicket for the right-handed Alia Riaz, and Alia Riaz steps out to this good length ball and chips it towards the right of Shri Charani. Shri Charani wanted to run towards her right and attempt a catch, however the non-striker was in the way.
0: Jiha. नॉन स्ट्राइकर की वजह से श्री चरणी उस कैच को लेने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान फिलहाल 91 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार ये गेंद ओवर द विकेट बाएं हाथ के बैटर को, और उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं और इस बार रन लेने का कोई अवसर भी नहीं बन पाया। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, तीसरी गेंद डॉट बॉल, 33 रनों में 80 रनों की आवश्यकता। समीकरण लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई और वहाँ पर आसानी से कवर क्षेत्र में लपक ली गई, और एक बार फिर से पाकिस्तान मुश्किलों में पड़ता हुआ। 7वें विकेट का पतन हो चुका है रमीन शमीम के रूप में। 4 रन उन्होंने बनाए 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और श्री चरणी को एक और सफलता यहां पर मिलती हुई। तो भारत अब काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है। ये गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद जैसे ही थोड़ी सी टर्न हुई अंदर की तरफ, उसको खेलने का प्रयास किया था ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ गेंद को डाइव करते हुए लपकने में कामयाबी हासिल की क्षेत्र रक्षक ने, और इस तरह से पारी का अंत कर दिया रमीन शमीम का। तो 7 विकेट का नुकसान। श्रियंका पाटिल वहां पर क्षेत्र रक्षक थी, उन्होंने ये शानदार कैच लपका और 91 रनों पर पाकिस्तान की टीम अब 7 अपने बल्लेबाज गवा चुकी है। मात्र 3 विकेटों की और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: Absolutely, they call it the game of glorious uncertainties. But Pakistan need more than a miracle if they are to win this. Nashra Sandhu is the new batter in. She's not in the side for her batting credentials. Shri Charani goes around the wicket for the right-handed batter, delivers this one on a drivable length on the stumps, and the batter will be able to work it towards mid-wicket and pick up a comfortable single that takes Pakistan's score to 92 for 7 with one ball remaining in the 15th over. Tried to step out and whack it, did Rameen Shamim on that occasion, ended up slicing it, and an excellent diving catch from Shreyanka Patil at backward point. Next delivery of the over, which is the final one of the 15th over, induces an outside edge and the ball goes trickling away to Deepti Sharma at backward point, and because it is Deepti, Alia Riaz doesn't even think of a single. They know what Deepti can do. They know what...
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और

0: जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: श्री चरनी के चार ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है और चार ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन दिए, 3 सफलताएं हासिल की और इकोनॉमी उनकी 5.25 रन की। शानदार प्रदर्शन श्री चरनी के द्वारा एक बार फिर से। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं और काफ़ी प्रभावित किया है 2025 के बाद से अपनी गेंदबाजी से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। शफाली दूसरी गेंद को खेल दिया था वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए वहां पर। एक अच्छा प्रयास वहां पर क्षेत्र रक्षण का, गेंद को रोकने के प्रयास में राधा के द्वारा और वहां पर रिले थ्रो के द्वारा गेंद अंततः पहुंची थी विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में, लेकिन तब तक दौड़कर 3 रन बना लिए थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आलिया इन 3 रनों के साथ 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और अब नाशरा संधु तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। शफाली वर्मा की ये गेंद ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को स्लॉग शिफ्ट करने के अंदाज में खेला। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी, लेकिन 1 रन का इजाफा इसी बीच ज़रूर हो जाएगा पाकिस्तान के योग में। नाशरा संधु इस 1 रन की मदद से 3 पर और आलिया रियाज अब तैयार हैं वहां पर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद को पूरी तरह से चूकी, पैड पर लगी लेकिन नेक्सम के बाहर जाकर गेंद पैड पर टकराई थी, जिसकी वजह से कोई अपील नहीं की वहां पर शफाली वर्मा ने। गेंद की रफ्तार इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी शफाली वर्मा की, लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की अपील जरूर की लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, अपने 91वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस समय अंपायरिंग कर रही हैं।
2: शफाली वर्मा आस्क ऋचा घोष, आवाज आई क्या? Richa Ghosh shaked her head. Then why were you appealing? Anyhow, next delivery outside the off stump, lofted over backward point, and the ball goes skipping away to the fence. 100 up for Pakistan with this boundary.
3: ये लगा Abha ka chauka.
1: अंतिम गेंद का आना बाकी है, 10 अतिरिक्त रन हैं इन 102 रनों में। गेंद शफाली वर्मा की बैकफुट पे जाकर कट किया, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन गेंद को वहां पर रोक लिया जाएगा क्रांति गोड के द्वारा। गेंद को फील्ड किया ऋचा घोष की तरफ थ्रो, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रनों के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104-7 विकेट के नुकसान पर। आलिया रियाज 18 रन बनाकर खेल रही हैं और नाशरा संधु ने अब तक 3 रन अपने बल्ले से योगदान के रूप में पाकिस्तान को दिए हैं।
2: Right, 4 overs remaining, and as we said, India will want to restrict Pakistan to as low a total as possible, because remember, net run rate could come into equation because Australia and South Africa are both the part of the same group. Yes, Pakistan not considered one of the contenders in women's cricket. They have shown a lot of improvement, but they are still far from being amongst the contenders. Netherlands and Bangladesh are also a part of this group, but those two teams are also lower ranked sides. So many believe that it is going to be between India, Australia and South Africa. Only two teams can progress. Anyhow, Deepti Sharma has now been given the ball in hand. She will be delivering what is her final over around the wicket to the right-handed Nashra Sandhu. She delivers. Short fine leg and makes a tumbling stop. Interestingly, Kranti Gaur has bowled only 1 over so far, and I would like Harmanpreet Kaur to give the youngster a couple of overs in the remaining 3. Anyhow, a single was taken off the first ball, and now Deepti Sharma halts in her delivery stride, looks at the non-striker and almost signals, mind you, do not leave the crease early because I won't spare you the next time. Deepti's done it before and she won't shy from doing it. Next delivery, toss. Where Jemima Rodrigues will make no mistake. She runs in from the boundary, settles underneath it. grabs it in her

0: है इन परिस्थितियों में, और ये देखते हुए कि अब उसके सिर्फ दो ही विकेट बाकी हैं, भारत को दो विकेटों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए ओवर की शुरुआत, बल्कि दीप्ति शर्मा अपने ओवर को जारी रखे हुए हैं और वहाँ पर तस्मिया इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी हैं। पहली गेंद को बैक टू द बॉलर खेला दीप्ति शर्मा ने, अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं अराउंड द विकेट आते हुए, और निश्चित रूप से कहना होगा कि यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने आज जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया एक बार फिर से हवा में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ तस्मिया ने, और जेमिमा रॉड्रिक्स वहां पर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने लपका और ऐसा लगा दर्पण एक क्षण के लिए कि मानो रिप्ले हो पिछले वाले विकेट का।
1: यस, absolutely the same thing happening again. Rodriguez taking the catch and Deepti Sharma with it has picked up her 4th wicket of the day, and with that she has drawn level with Tipacha Puttawong of Thailand, which means Deepti Sharma now has 165 wickets to her name, which is the joint most in women's T20 internationals. She's 1 wicket away from becoming the sole leading wicket taker, and she still has 2 deliveries remaining. This over reads 1 wicket, which means the last 3 deliveries read WOW. Wow, Deepti. Sadia Iqbal is the new batter in. 16.4 overs done, 105 for 9 Pakistan. Deepti Sharma around the wicket, no, beg your pardon, over the wicket to the left-handed Sadia Iqbal, who's definitely not in the side for her batting credentials, delivers this one on a full length at the off stump. 71.6 kilometers are the speed of that delivery, and that allowed Sadia Iqbal to get onto the front foot, dink it towards the cover of the mark. Pakistan moved to 106. 1 wicket left, 1 ball remaining for Deepti. Can she pick up a fifer? Here she runs in. Slog sweep straight to Harmanpreet Kaur, who holds on to the catch. Deepti has a fifer. She is the leading wicket taker in women's T20 internationals. With this breakthrough, her 166th alone at the top of the mountain. The player of the tournament from the 2025 ODI World Cup has begun the T20 World Cup campaign in style. India win by 64 runs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: तो भारत की शानदार सफलता इस T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से पराजित करने में कामयाब रही भारतीय टीम, और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये नवा मुकाबला था, और इन 9 मुकाबलों में अब तक 7 भारत के पक्ष में रहे और 2 पाकिस्तान के पक्ष में। भारत की शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से स्मृति मांधना ने, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 68 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। 34 रनों की एक बेहतरीन पारी की वजह से भारत 20 निर्धारित ओवर में 170 रन बनाने में कामयाब रहा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को 171 रनों की दरकार थी मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत उनकी अच्छी हुई, मुनीबा अली ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से, लेकिन खासतौर से मध्य क्रम में उनके विकेट एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ गिरते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। और भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने आज 5 विकेट हासिल किए, मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। एक शानदार सफलता, और श्री चरनी ने भी आज भरपूर योगदान दिया। शफाली वर्मा का भी प्रदर्शन गेंदबाजी से बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर जो स्पिन गेंदबाजी रही भारत की वो काफ़ी अच्छी रही, जिसकी बदौलत भारत ने

0: 17 ओवर में ही पारी को समेट दिया पाकिस्तान की 106 रनों पर और इस मुकाबले को 64 रनों से जीत लिया। तो मैं आशीष चरणगु, अपने साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। अब से थोड़ी ही देर में हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Player of the match।
5: जब इरादे चैंपियन जैसे हों तो शुरुआत भी चैंपियंस वाली ही होती है। बर्मिंघम के मैदान पर आज टीम इंडिया ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की बल्कि पूरे विश्व कप को एक संदेश दिया है, भारत यहां हिस्सा लेने नहीं इतिहास रचने आया है। बल्ले से दम, गेंद से धार और मैदान पर शानदार जज्बा, भारतीय खिलाड़ियों ने खेल के हर विभाग में पाकिस्तान को 64 रन से पीछे छोड़ते हुए विश्व कप अभियान का आगाज यादगार बना दिया है। लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे होता है एक ऐसा सितारा जिसने दबाव के क्षणों में टीम का रास्ता रोशन किया, जिसने अपने प्रदर्शन से मुकाबले की दिशा बदल दी। और इस कार्यक्रम यानी पोस्ट मैच शो का नाम ही है प्लेयर ऑफ द मैच। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल। साक्षी, स्वागत आपका।
6: थैंक यू। The ongoing ICC Women's T20 World Cup to have just defeated Pakistan in a very convincing manner by 64 runs. And what a feat over there for Deepthi Sharma today. A 5-wicket haul, thereby also becoming the only bowler, or should I say, taste that sweet victory of getting the most number of wickets. More to talk on this, I'm joined over here by Vaishali. Along with her, we have with us, of course, Colonel Bhupraj and Mona ji. Good evening, everybody.
7: Good evening.
8: Hi, good evening.
6: Now, quickly to start with you, Colonel Bhupraj, I'll come to you. A very good start for the Indian women in the T20 World Cup this season.
8: Oh, yes. It was a great match. There were some jitters, you know, in the first 6 overs. But thereafter, the way our spinners bowled, slightly slow in the air with that loop, and deceived the Pakistani batsman. It was a great display of spin bowling by Deepthi Sharma and Shri Charni.
5: जी बिल्कुल, 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट और T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। श्री चरणी ने 3 विकेट लिए, शेफाली वर्मा के नाम 1 विकेट। चर्चा थी मोना की पिच पर थोड़ा सा टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और विश्व कप के पहले मैच में बहुत कॉन्फिडेंस देखा हरमनप्रीत कौर को।
9: बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखा, और टॉस के समय हमने जैसे देखा था जब हरमनप्रीत ने बल्लेबाजी का चयन किया था तो यही उनका आकलन था कि शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी है पिच और बाद में स्पिनर का इसमें रोल होगा, और बिल्कुल सटीक आकलन था क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से, हम पहले भी बात करते, श्री चरणी ने जिस तरह गेंदबाजी की और दीप्ति शर्मा क्या कमाल की प्लेयर है। ऐसे लग रहा है कि जो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल जहां छोड़ा था वहीं से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच पकड़ लिया है, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि उसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दूसरे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में थी वो पहले ही मैच से इस जबरदस्त फॉर्म में है। और
5: प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा की तरफ जहां से बात हो रही है।
10: I like this kind of wickets, and I think it's all credit goes to the team. I'm grateful that Hanumanji is great, and I like ICC tournaments. I think because from there I finished, from there I started, so I like it. Yeah.
11: What was the key to bowling on?
10: So I vary my pace in every ball and every over. That helped me a lot. Yeah.
11: Slow or quick? As we look at your wickets here, you slowed it up quite nicely, especially to the left-handers.
10: Because it's turning, so I just have believed that I have to bowl a little bit slower.

0: just believing in myself and bowling in the right areas. That's what I was doing. Yeah.
1: How important is your experience in England? I know you've played international cricket, but you've played a lot of 100 cricket here as well. You know these
0: people are coming and supporting Indian team today, and that's what we want in every game. That's keep coming and keep supporting. And especially I wanted to mention about Smriti and Haridi's partnership. From there, we threw the momentum.
1: You went through that difficult phase. It's well documented. You went a few games without wickets. Are you a worrier, a fretter, or do you just know class is permanent?
0: Actually, I was not worried about when I didn't get wickets, but I always believe in myself that whenever the right time will come, I'll step up for the team, and that's how I play and bowl. Yeah.
1: Well, you definitely stepped up today. That was a magnificent performance. Well done, Deepti.
0: Thank you so much.
2: दीप्ति शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि यहां बड़ी तादाद में दर्शक आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किसी भी T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा दर्शक आज के मैच में आए थे। जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है वो 18,814 दर्शकों का आ रहा है। इससे पहले यह कीर्तिमान 6 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में ही बना था, जहां 15 पर हम बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कर्नल की किस तरीके से महिला क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी और टीम इंडिया का रुतबा कैसे बढ़ रहा है।
3: हाँ जी, ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया प्लेयर्स में, एंड वो आज दिखाई पड़ रहा है। एक टाइम पे तो लग रहा था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो अपने जज्बा है अपने प्लेयर्स का जीतने का, वो दिखाई पड़ा, एंड दैट टर्न द मैच इन अ फेवर।
4: Right, and also to let tell our listeners today, this is actually the 20 World Cups. Earlier, it was again the topmost is 114 versus England in Cape Town 2023, then 94 versus Australia in 2014, 68 versus England in Chennai versus England in Chennai in 2016, and 64 that was today against India in Birmingham. Vaishali, आपके पास आती हूँ। जब कोई भी देश एक सीजन की शुरुआत करता है या टूर्नामेंट की शुरुआत करता है, हारता है, तो मेंटली एंड मॉरली ये कितना डिप्लीटिंग हो सकता है उस देश के लिए टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करते वक्त। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पाकिस्तान की, खास तौर से।
5: पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन जिस तरह से वो हार, लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के कैप्टन पे बहुत, एक लीडर का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम देखें हमारी हरमनप्रीत कौर है, वो बॉलर को किस, तो वो उतना कॉन्फिडेंट थी, बट जैसे उनकी विकेट गई एंड द वे सी रिएक्टेड, वो और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम थोड़ा सा उनका मोरल डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि एक ये फाइनल मैच की तरह खेला जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए ये मैच जीतना भी, और जो वो उस वहाँ उस जगह तक नहीं पहुँच पाए हैं, बट सेकेंड मैच उनके पास होपफुली है, और वो वहाँ पे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मोरल डाउन हुआ नहीं है, बट हो सकता है और आगे सेकेंड मैच को देखते हुए।
2: जी हाँ, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच में हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका।
6: हाय, मैं

0: उठा रहे हैं। कर्नल, अगर आपसे बात करें तो पहले भी चर्चा हो रही थी कि यष्टिका खेलेंगी, भारती खेलेंगी, भारती मजूमदार को तय करना है कि
1: एंड उसने भी ये जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसको चांस मिलेगा।
2: राइट एंड अ गुड न्यूज फॉर ऑल आर थर्ड, माई अपोलॉजीज, आर द थर्ड बिगेस्ट विन दैट इंडिया हैज अचीव्ड। प्रायर टू दिस इट वाज 82 अगेंस्ट रिकॉर्ड। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली मोना, आई विल कम टू यू, आपके पास की दीप्ति शर्मा की थोड़ी और आज बात करना बनता है। 166 इज द नंबर ऑफ विकेट्स। आई रिमेंबर जब शो की शुरुआत हुई थी हमने तब ये बात करी थी कि आज अगर वो 5 विकेट्स ले लेती हैं तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, अगर हम बात करते हैं तो T20 के अंदर, तो बन जाएंगी 166। 165 पे पीछे थाईलैंड की थिपाचा पुत्तावोंग है और उनको भी आज वो आगे पीछे छोड़ के चली गई है, निकल गई है। क्या आपको लगता है ये सीजन उनका बेस्ट?
3: तो ये पहला मैच इस टूर्नामेंट का उन्होंने खेला है और इससे पीछे लगातार हम बात कर रहे थे, खबरें भी आ रही थी कि वो उस लय में दिख नहीं रही हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है या जो वर्ल्ड कप में थी। लेकिन मैच के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा, खुद पर इतना

0: नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सर।
0: जी, अपना परिचय दीजिए और क्या जानना चाहते हैं आप?
1: मैं गांव को ले आना है जी, मैं पंजाब में अपना, मैं कुलदीप टिंगड़ा बोल रहा हूँ।
2: Last 15 hours and after that we giving some extra runs and we one fielder is coming inside is also cost us at that time but we will try to improve in the next matches.
3: Yeah, why were you so slow? What few overs you were waving your arms around quite a bit in this big crowd, were players noticing you? You seem very slow to get round.
2: Yeah, I think it might be because of the lefty righty, but still the whole team is young, so they are coming in that situation, so they will know the exact situation in the next matches.
3: And fielding, Smriti Mandhana is an excellent player. If you give her one chance, that's too many. You gave her a couple. What about catching? How have you been generally, and what did you think of the fielding today?
2: Yeah, obviously, catches win, the matches win. But unfortunately, who dropped the catches is still a senior players. And I think we need to be improving the bowling and the fielding as well in the next matches, because if we collapse in the fielding side, so I think it cost the whole match.
3: Could you have done anything different for Risha Ghose? Because I know you had that extra fielder up. When you look at your depth,
2: execute plans, and we will try to as quick as possible.
3: On a positive, that was your best World Cup score in the power play, 52 for one. I know you want that intent against the new ball. That top three played really nicely.
2: Yeah, definitely. When you saw the power play in the bowling and the batting, we won that power play. But after that, we collapsed in the batting side. So I think we need to improve in the batting as well, so we will get the different results.
3: Well, bad luck today. Good luck the rest of the tournament, Fatima.
2: Thank you. Thank you.
3: If I could just have a word with the Indian captain now, Harmanpreet Kaur. Harmanpreet, well, convincing win in the end. You must be thrilled.
4: Yeah, definitely. Very happy. And firstly, they're for us. So, yeah, I really, really want to thank them.
3: Two senior players who at times recently have been a bit short of runs and wickets, Smriti Mandhana and Deepti Sharma. You can't keep class down for long. You must be thrilled with them as well.
4: Yeah, definitely. Whenever we need, they're always there to, you know, push the team. So really happy the way they both played today.
3: What did you make of the pitching conditions here?
4: Well, I think it was a decent pitch, but I think initially we unnecessarily put pressure on us. But after that, when Smriti and I was batting, we tried to control the game, and then we got what we wanted.
3: And Richa Ghose, she is a class hitter of a ball. She was arrive at the crease.
4: if it in my hand, I would love to send her on the first ball. But I think she has some role to play, and she's doing really well, and really happy the way she played today.
3: Just in the field there, it started a bit wobbly, but you must be thrilled at the end there. You were catching everything, especially yourself. The ball was following you and Smriti around.
4: Yeah, definitely. Cricket is game of, you know, if you catch every ball, if you take all the catches, you always win matches. And I think that's what happened while fielding. We wanted to, you know, give ourselves to every ball, and really happy the way we fielded and overall game.
3: And how aware are you when you are winning games of net run rate? Because you are in a group with South Africa and Australia. It could come down to that. So a win and a convincing win is important.
4: Yes, definitely. Every league game is important, and really happy, you know, how we win today, because that is something, you know, which is going to help us end of the league games.
3: Final question. Are you okay? I saw you hobbling around at the end.
4: Yeah, I'm fine. Thank you very much.
3: Well, well played. Great performance. Nice
4: Thank
3: short
4: you.
3: Answer there at the end. Harmanpreet Kaur, the winning captain.
0: जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी हरमनप्रीत कौर की बातचीत में, और उन्होंने साफ कहा कि ये एक टीम परफॉर्मेंस है। मुना, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जीत के बाद कई सारी कमियां थोड़ी छुप सी जाती हैं। अरुंधति रेड्डी 2 ओवर में 21 रन, क्रांति गौड़ 1 ओवर में 14 रन, क्या रेणुका सिंह ठाकुर को बाहर रखना का जो फैसला था उस पर विचार करेगी?
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरुंधति रेड्डी का सिर्फ गेंदबाजी नहीं, फील्ड में भी जो उनका प्रदर्शन था आज, बिल्कुल अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाई। और रेणुका इस कोर टीम का हिस्सा है जो हम बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड कप की टीम है और काफी समय से अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, तो मुझे लगता है खासतौर पे जबकि अमन ज्योत नहीं है, काश्री नहीं है, तो एक रेणुका का होना टीम में जरूरी है। मुझे लगता है अगले मैच में शायद हमें ये बदलाव देखने को मिलेगा।
6: जी, और इस वक्त हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो,
7: नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही है?
7: एक शायरी बोल देते हैं आपके लिए।
6: जी जरूर
7: जी। तारीफ कैसे करें आपके, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की। और मैं मैच के लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही पिछला मैच जीते थे वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, ऐसे ही ये मैच भी जीते हो। मैं जवाई माँ की बहुत बड़ी फैन हूँ।
6: जी शुक्रिया, थैंक यू।
7: शुभकामनाएं इनके साथ,
6: वैशाली में आपके पास आती हूँ क्विकली। हमने देखा एक तरफ भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर जो बहुत खुश नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी कप्तान की भी यहाँ पर बात करते थोड़ी सी, तो जो उन्होंने बातें रखी फातिमा सना ने, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका पावर प्ले किया था चेस के समय, 6 ओवर के अंदर 52 for the loss of 1 wicket, जो आज तक का पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल्स के अंदर सबसे अच्छा या उमदा पावर प्ले रहा है, उसके बाद भी वो कैपिटलाइज करके कन्वर्ट नहीं कर पाए कि चेज में हो सकते। आपको कहाँ लगता है ये पाकिस्तानी महिला टीम फंबल करती है चेज के अंदर या टारगेट्स को ऑन बोर्ड बनाने में भी?
8: देखिए, जब हम बैटिंग करते हैं तो हमें मेनली ये देखना होता है कि आप किस फील्डर के पास कैच दे रहे हैं। फिर आपको देखना होता है कि आप अगर लॉफ्टी शॉट खेल रहे हैं तो कैसे आप खेल रहे हैं, कितना बाहर निकल के खेल रहे हैं। और आज पाकिस्तान की टीम ने जितने भी कैचेस दिए हैं वो इंडियन टीम ने ग्रैब किए हैं। सिर्फ एक अरुणति रेड्डी के अलावा किसी और हमारे किसी भी इंडियन प्लेयर ने वो कैच ड्रॉप नहीं किए हैं। अभी उन्होंने बोला कैचेस विन मैचेस, सो हमारी टीम ने कैचेस किए और पाकिस्तान की टीम ने वो कैचेस ड्रॉप करे। जो हमारे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना दोनों के कैचेस ड्रॉप हुए थे, वहाँ पे गेम चेंज हो गया। एंड वैसे ही यहाँ अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग के बारे में बात करें, तो जब उनकी बैटर बैटिंग कर रहे थे तो जो वो कैच उनके उठे हैं वो हमने ग्रैब करे हैं। तो यही एक डिफरेंस मेन होता है, क्योंकि दोनों साइड से बॉलर अपना काम करते हैं, बैटर अपना काम करते हैं, लेकिन एक फील्डिंग ऐसी चीज़ है जहाँ से आप इन और आउट कर सकते हैं गेम को।
6: जी, आई वुड वॉन्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड टू कर्नल भूपराज। डू यू थिंक दैट समवेयर

0: the power of going into the chase had approach, because we also saw them making very lopsided shots or going for impulsive shots at times. Do you think that was required, that aggressive intent, without reading the room or the situation too well?
1: Actually, you know, they went for those big shots, and every player who was coming in tried to score big shots. It shows lack of experience on part of some of the players. I think half the team is new, and they learn from experience. This is a good learning experience for them.
2: वैशाली बात कर रही थी कैचेस की. पांच जितने भी मैच दिखाता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं. मोना, आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे. विश्व कप में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड ने 200 से ज्यादा टोटल बनाया, श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती नजर आई. कल एक तरफा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच. दक्षिण अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की कंटेंडर्स में से एक है, लेकिन वन साइडेड लॉस. इस विश्व कप के पिचेस पर बात करें, ओवरऑल क्या नजर आ रहा है अब तक?
3: जितने भी आपने बड़े स्कोर बनाए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, तो शुरुआत में जो टीम जो बैटर्स के लिए अच्छी पिच देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे उस पर वियर एंड टीयर आ रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो स्लो आर्म बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनकी पिछले कुछ सालों से टॉस जीत रही है, और उसके बाद जब गेंदबाजों की भूमिका आती है, तो रिलायंस जो है वो पे इंग्लैंड में हो रहा है टूर्नामेंट, और अभी सारा कुछ वहां बदला बदला सा नजर आ रहा है.
2: जी
0: जी वैशाली
2: जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं करना?
1: हाँ, एक्चुअली ये जो विकेट है, इसके ऊपर आज ये तीसरा मैच हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा विकेट जो सी है स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी. तो अब जब अगले ग्राउंड पे मैच होगा, तो इतना स्पिन को हेल्प नहीं करेंगी विकेट्स.
0: या बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर, एंड ऑफ कोर्स द यूज्ड पिच कमिंग इनटू प्ले अगेन अगेन. वैशाली, आपके पास आती हो, क्विकली आपसे पूछूंगी कि आज जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी करी है, उसमें दो नाम तो हमें पता है, स्मृति मानधना, और दूसरा हम बात करेंगे ऋचा घोष की. बट उसके अलावा किसी भी और भारतीय बल्लेबाज ने कोई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है. हम कह सकते हैं कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक साझेदारी निभाई सामने से स्मृति मानधना के साथ, लेकिन फिर भी उनका भी रन अ बॉल ही स्ट्राइक रेट रहा. आज तो ये पाकिस्तान है, आगे हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े देश आ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है हमारे ग्रुप के अंदर. क्या बैटिंग के भारतीय महिला भारतीय क्रिकेट टीम में
4: T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी इंडिया टीम खेल के आई है, एंड वहाँ पे उनका जो बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा अभी जो आज खेला उससे काफ़ी ही पुअर था, एंड आज बैटिंग काफ़ी बेटर हुई है. बट हर दिन एक जैसा नहीं होता, सो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट शिफाली वर्मा बेटर स्कोर करे, एंड जेमिमा रोजर्स जो हमेशा करती हुई आती हैं, बट उनका आज दिन नहीं था. लेकिन स्मृति मंदना की जो पार्टनरशिप हरमनप्रीत कौर के साथ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर वो नहीं होती तो 91 रन्स की जो पार्टनरशिप है वो नहीं था इससे. और मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर, अगर जितनी भी उन्होंने पिच पे खड़े होकर टाइम दिया है, वो उस टाइम पे उस जरूरी था, क्योंकि इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल था उनके बिना सपोर्ट के. उसके बाद ऋचा घोष की अगर मैं बात करूं, तो ऋचा घोष अगर 10 ओवर से पहले आती तो वो शायद उतना बेटर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाती जो हमने अभी देखी, एंड लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने जिस
2: कर्नल, अगर ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोनिल्यू आती हैं, जो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं, काफ़ी डेप्थ है बल्लेबाजी में. इंग्लैंड के लिए देखें तो सोफी एकल्स्टन तक वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारत की टेल थोड़ी लंबी नज़र आती है, चूँकि श्री चरणी है वहाँ पर नहीं खेली. लेकिन अगर हम बात करें क्रांति गौड़ की, तो एक 3-4 बैट्समैन लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जिनसे आप बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते. T20 आजकल हाई डिमांड है, टेलेंडर्स से भी आप बड़े शॉट्स की उम्मीद करते हैं. क्या जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, भारत के लिए ये मुश्किल का सबब हो सकता है?
1: देखिए ये प्रॉब्लम तो आ सकती है, हमारी टीम है जो फर्स्ट सिक्स बैट्स

0: प्रेजेंट विमेंस क्रिकेट टीम में, इंडिया भारतीय टीम में आपको दिखते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि काम की ज़रूरत है, तो वो क्या होंगे?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लगातार बात हो रही थी कि अच्छी ओपनिंग की भारत को बहुत ज़रूरत है, और बहुत कुछ रिलाय करेगा कि किस तरीके से शेफाली और स्मृति मांधना पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। आज पावर प्ले में हमने 2 विकेट गंवाए, रन भी 38 ही बने, तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ आप पावर प्ले को यूँ ज़ाया नहीं कर सकते। आपको अच्छा रन, अच्छा, आज आप देखिए पावर प्ले में पाकिस्तान हमसे बेटर खेला है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि आपको पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, शेफाली वर्मा स्ट्रोक प्लेयर हैं, कुदरती वो बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगा के खेलती है, थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा उनको। मैच अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर उनको क्या शॉट खेलना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टीम के लिए। को खिलाना है या यास्तिका भाटिया को, तो मुझे लगता है कि यास्तिका भाटिया को अगले मैच में जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है, यहाँ आप प्रयोग करने के लिए नहीं आए, आपको यहाँ एक सेट टीम, एक मैच विनिंग टीम उतारनी। मुझे लगता है अरुंधति जाना चाहिए अगले मैच में।
2: वैशाली, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, T20 विश्व कप जो पुरुषों का हुआ, जहां अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं थी, सूर्य कुमार यादव से चर्चा चल रही यास्तिका भाटिया को टीम में लाने के लिए, वो नंबर 3 खेलती हैं, तो क्या हम इस विश्व कप में अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा तब अगर यास्तिका टीम में आती है?
3: यास्तिका अभी तक देखी गई है कि वो 4 या 5 नंबर पे ही खेलती हुई नजर आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जैमिमा की बारी को हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि लाइनअप के बाद अगर ओपनर हम देखते हैं तो उसके ऐसी बैटर है जो वहाँ पे स्टे भी कर सकती है और आपको स्टे के साथ रन भी दे सकती है। स्कोरबोर्ड चलना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द मैच, और वो यास्तिका भाटिया आफ्टर 10 ओवर्स जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब बॉल 6 ओवर के अंदर हम कोई सामने से हमें कोई बॉलर मीडियम पेस स्पेशली बॉल डाल रहा होता है, तो वो बॉल स्विंग होती है तो उसको खेलना उतना ईजी नहीं होता है। तो यास्तिका भाटिया को अगर हम देखें तो उनको स्पिनर खेलना ईजी होगा खेलने के लिए, एंड मीडियम पेसर को उतना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी।
0: Right, okay, we've spoken a lot about the Indian women's cricket team. Let's also slightly talk about the Pakistani women's cricket team. From that angle, if we now say very quickly, I want your take on that, Colonel Bhupraj. How difficult is the road ahead for the Pakistani team?
4: Well, in this tournament, I see a very bleak future for them, because they've lost to us, and then they... And, South Africa in this, Australia, and for them to qualify for the semi-final.
2: तो बर्मिंघम के इस शाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी ही नहीं, बड़ी टीमें भी अपना चरित्र दिखाती हैं। भारत ने विश्व कप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन ये सिर्फ 2 अंक हासिल करने की कहानी नहीं है, ये आत्मविश्वास, तैयारी और उस विश्वास की कहानी है जो किसी भी टीम को चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ाता है। आज बल्ले ने दम दिखाया, गेंद ने कमाल किया, और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने वो जज्बा दिखाया जिसे करोड़ों भारतीय अपने दिलों में लेकर चलते हैं। वैशाली आपका, कर्नल आपका, और मोना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम

0: air of the match of the T20 cricket match played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
1: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Arun Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय में 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु प्रवर्तन कार्यों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर
2: भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान है. को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की. विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई. सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया. केंद्रीय मंत्री अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है. ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है. ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई. इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है. इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे. बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए. बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज

0: opting to bat first, India posted 170 for 6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10:13 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। हम आपको बता दें, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे FM गोल्ड दिल्ली के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि, जय हिंद।